अलग शत्रु से संघर्ष कहाँ सुनी हो जाना नीचा देखना दाई नेत्र का दाया कोना कहाँ सुनी में नीचा देखना बाई नेत्र का नाक वाला शुभ संकेत पुत्र प्राप्ति शिष्य या कम आयु के प्रियजन से भेंट यदि दाई आँख फड़कती है तो शुभ परंतु स्त्री के लिए अशुभ यदि बाई आँख फड़कती है अशुभ है परंतु स्त्री के लिए शुभ है दोनों एक साथ फड़कती हैं तो स्त्री को भय चिंता शोक हो जाता है बायां नेत्र नीचे को शुभ होता है बायां नेत्र ऊपर को चिंता भय शोक लड़ाई वाला होता है। सुनने वालों अभी आप लोगों ने सुना नेत्रों का फड़कना यानी जब हमारी आंखें फड़कती हैं तो उसका क्या परिणाम होता है कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है।

सुनने वालों, स्वप्न विज्ञान बताता है कि हमारे शरीर में से सारे अंग ही फड़क सकते हैं, चाहे आँख हो, चाहे हमारा तालुआ हो, चाहे कंठ हो, चाहे कंधे हो, अब मूछें भी हो सकती हैं सुनने वालों। समूची मूछ, शुभ धन धान्य दूध दही सवारी ऐश्वर्य। दायां भाग शुभ विजय, बायां भाग कहा सुनी झगड़ा। सुनने वालों, आप सबने सुना कि मूछें फड़कने से भी लाभ हो सकता है और परेशानी भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है। ये संदेश जो आप सबने सुना, ये स्वप्न विज्ञान से निकाला गया है सुनने वालों।

तालू का फड़कना, कंठी की कंठी, आर्थिक दृष्टि से शुभ भोगों की प्राप्ति, तालू का दायां भाग रोग से परेशानी, तालू का बायां भाग किसी अपराध में बंधी, दाढ़ी फड़के अपशकुन, लड़ाई मुकदमे में हार, दाढ़ी का दायां भाग सुख की प्राप्ति, दाढ़ी का बायां भाग अधिक अच्छे धन यश दोनों मिले।

सुनने वालों, हमारा अगला संदेश है कंठ का फड़कना। पुरुष का इच्छित भोजन मिले, स्त्री का कंठहार आदि मिले, कंठ का बायां भाग अच्छी उपलब्धि, कंठ का बायां निचला भाग अल्प मूल्य के आभूषण मिले, कंठ का ऊपरी भाग स्वर्णमाल मिलने की संभावना, कंठ का निचला भाग शस्त्र पीड़ा। सुनने वालों, ये संदेश रखा गया कंठ के बारे में जो हमने निकाला स्वपन विज्ञान से। सुनने वालों, आप सबको तो मालूम है कंठ किसे कहते हैं। कंठ कहते हैं गले को, और कहते नहीं कि गले के लिए हार भी चाहिए, कंठ हार।

सुनने वालों, अब मैं आपको बताऊंगी कि स्वप्न में देखे गए रंगों का फल, कि अगर हमें सपने आते हैं उसमें हमें रंग दिखाई देते हैं तो उन सपनों का क्या मतलब है। लाल रंग, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु। हरा रंग, धन कमाने की योग्यता। नीला रंग, सुखी पारिवारिक जीवन। सफ़ेद रंग, अपने समाज में प्रतिष्ठित स्थान की प्राप्ति। नारंगी रंग, अपना निजी मकान होना। पीला रंग, दूसरों की ईर्ष्या का शिकार होना। भूरा रंग, बेईमानी का दोष लगाना। काला रंग, दुर्भाग्य। सुनने वालों, ये है स्वप्न में रंगों के बारे में स्वप्न, कि जब हमें सपने आए उसमें रंग दिखाई दे तो उन सब का क्या मतलब होता है। सुनने वालों, आप सबने सुना कि सपन में देखे गए रंगों का क्या महत्व होता है और उनका क्या मतलब होता है। जैसे कि लाल रंग दिखाई दे तो उसमें अच्छा स्वास्थ्य होगा और आयु हमारी बढ़ेगी। और जैसे कि आपने सुना कि हरे रंग का क्या मतलब होता है, हरा रंग धन कमाने की योग्यता, कि अगर हरा रंग दिखाई देगा सपने में तो हमें धन कमाने की योग्यता प्राप्त होगी। नीला रंग, सुखी पारिवारिक जीवन, कि अगर हमें सपने में नीला रंग दिखाई दे तो उससे हमारा परिवार सुखी होगा। सफ़ेद रंग दिखाई दे तो अपने समाज में प्रतिष्ठित स्थान की प्राप्ति, कि हम समाज में एक अच्छा सा स्थान प्राप्त करेंगे। नारंगी रंग, अपना निजी मकान होना, कि हमें अपना मकान हो जाएगा, अपना घर मिल जाएगा। पीला रंग, दूसरों की ईर्ष्या का शिकार होना, यदि सपने में हम लोगों को पीला रंग दिखाई दे तो उसका मतलब है कि हम दूसरों की नफरत के शिकार बनेंगे, दूसरे हमसे जलेंगे। भूरा रंग, बेईमानी का दोष लगाना, कि अगर हमें सपने में भूरा रंग यानी ब्राउन रंग दिखाई दे तो दूसरे लोग हम पे दोष लगाएंगे कि तुमने हमसे बेईमानी की है। काला रंग, दुर्भाग्य, वो तो आप सब जानते हैं कि काला रंग हमेशा दुर्भाग्य का ही होता है।

स्वप्न में देखी गई धातुओं का फल, सोना, अनेक कठिनाइयां, रोग, धन संपत्ति की हानि, चांदी, प्रेम में निराशा तथा विश्वासघात, तांबा, यात्रा में दुर्घटना, लोहा, अपने परिश्रम। सुनने वालों, सपने में जब हमें धातुएं दिखाई दें, यानी कि सोना चांदी जिससे बनता है, तो उसके क्या क्या परिणाम होता है? सुनने वालों, जैसे कि धातुओं के से क्या क्या परिणाम होता है, जैसे सोना खाउट हमें अगर दिखाई दे सपने में, तो उससे हमें अनेक कठिनाइयाँ होती हैं, रोग होता है, धन संपत्ति की हानि। हमारी नानी और दादी भी कहते होते थे कि सोना मिलना भी मुश्किल है और खोना भी मुश्किल है। अगर मिल जाए तब भी उसका अच्छा परिणाम नहीं होता, अगर खो जाए उसका भी अच्छा परिणाम नहीं होता। चांदी, प्रेम में निराशा तथा विश्वासघात। अगर सपने में हमें चांदी दिखाई दे तो उससे हमें प्रेम में निराशा होती है और कोई हमारे साथ विश्वासघात करता है। सुनने वालों, तांबा, अगर तांबा हमें सपने में दिखाई दे तो यात्रा में दुर्घटना हो सकती है। सुनने वालों, अगर सपने में हमें धातु में लोहा दिखाई दे तो उसका मतलब है अपने परिश्रम, कि हमें बहुत ज़्यादा परिश्रम यानी मेहनत करनी पड़ेगी। सुनने वालों,

सुनने वालों, बुरे सपनों से बचाव, यानी कि अगर हमें बुरे सपने आए तो उसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं। सोते समय व्यक्ति का हाथ उसके सीने पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाथ से निकलने वाली विद्युत से हृदय की स्वाभाविक क्रिया अधिक होती है। सोते समय विष्णु, कृष्ण, माधव, महामुनि, कपिल, आस्तिक का स्मरण कर लें। सोते समय व्यक्ति यह शावर मंत्र 3 बार बोलकर बाएं घुटने पर 3 बार हाथ मारकर शिव का स्मरण करके सो जाए। शिव की कूची, बजर का ताला, ई देही का बजरंग रखवाला, शिव गौरख, शिव गौरख, शिव गौरख। सोने से पूर्व स्वास्थ्य प्रसन्नचित हो तथा सोते समय उत्तर की तरफ सिर नहीं करना चाहिए।

सपने में अंक देखना, यानी सुनने वालों, अगर हमें सपने में साइफर्स दिखाई दें तो उसका क्या मतलब होता है? स्वप्न में 8 का अंक देखना दुर्भाग्य सूचक होता है। हमारा निजी विचार है कि शुक्र के तुला 7 या वृषभ 2 लगन वालों को 8 शनि का अंक दुर्भाग्य सूचक नहीं होगा। 18 का मंगल अंक देखना जातक को विपत्ति में डाल सकता है, परंतु मेष वृश्चिक लगन वालों को कोई हानि नहीं, उसको कोई हानि नहीं पहुंचती। 11 का अंक देखना सौभाग्य सूचक है। सुनने वालों, अब आपको अगर सपने आए और उसमें आपको साइफर्स दिखाई दें

सुनने वालों, अगर आप सपनों में खुद को अस्वस्थ यानी रोगी देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? अपने सिवाय किसी अन्य को अस्वस्थ देखने से कष्ट विपत्ति होती है, रोगी भी होता है, परंतु स्वयं को यानी अपने को अस्वस्थ देखने से प्रसन्नता सुख शांति मिलती है, परिवार के साथ मिलाप बढ़ता है।

विभिन्न देशों में छींक संबंधी मनोरंजक मान्यताएं, यानी सुनने वालों अलग अलग देशों में कि छींक आने पर कैसे लोग उनका उनके बारे में सोचते हैं। ब्रिटिश न्यू गियाना के प्योटा जाति के लोग शयन कक्ष यानी स्लाब कमर में छींक को इस बात का सूचक मानते हैं कि आत्मा इस शरीर में वापस आ गई है। गुल्लू जाति के लोग छींक आने के बाद ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। टोंगा जाति के लोग यात्रा आरंभ के समय छींक आने को अपशकुन मानते हैं। जमैका के नीग्रो जाति के लोग मानते हैं कि यदि नाक में खुजली का अनुभव हो तो लोग जातक की बुराई सोच रहे हैं। एस्टोनिया के निवासी यह मानते हैं कि यदि दो गर्भवती स्त्रियां, यानी दो स्वांगर औरतें एक साथ छींकें तो वह कन्या को जन्म देंगी, और यदि दो पतियों को एक साथ छींक आए तो लड़कों का जन्म होगा। जर्मनी में ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि जूता पहनते समय छींक आ जाए तो उसका अत्यंत शुभ लाभ मिलता है। पर्शिया के लोग छींक आने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शैतान से उनकी रक्षा की जाए। यूनानी लोग छींक को देवी कृपा का संकेत मानते हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं तिथियों के अनुसार स्वपन फल, यानी कि जो डेट है, तारीख है, 1, 2, 3 महीने में आती है, अगर उसके अनुसार सपना आए तो उसका क्या फल प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 1 का स्वपन विलंब से फल देता है, 2 तारीख का स्वपन विपरीत फल देता है, 3 तारीख का स्वपन विपरीत तथा विलंब से फल देता है, 4-5 तारीख का स्वपन 2 मास से 2 वर्ष में फल देता है, 6, 7, 8, 9, 10 तारीख का स्वपन शीघ्र सत्य फल देता है, 11-12 तारीख का स्वपन विलंब से फल देता है, 13-14 का स्वपन फल मिथ्या देता है, पूर्णिमा का स्वपन फल अवश्य देता है, कृष्ण पक्ष की 1 तारीख का स्वपन फल मिथ्या, 2 तारीख का स्वपन फल सार्थक परंतु विलंब से, 3-4 तारीख का स्वपन फल मिथ्या, 5-6 तारीख का स्वपन फल 2 मास से 3 वर्ष में, 7 तारीख का स्वपन फल शीघ्र मिलता है, 8-9 का स्वपन फल विपरीत देता है, 10-11-12-13 तारीख का स्वपन फल मिथ्या होता है, 14 तारीख का स्वपन फल सत्य तथा शीघ्र होता है, अमावस्या का स्वपन फल मिथ्या देता है। सुनने वालों, ये सब थे कि तिथियों के अनुसार अगर हमें सपना आए तो उसका क्या फल मिलता है।

सुनने वालों, हम कुछ बातों को अच्छा भी मानते हैं, शुभ मानते हैं, ऐसे ही जैसे हथेली का शगुन। यदि प्रातःकाल जागने पर हाथों की हथेलियों पर दृष्टि पड़ जाए तथा हाथ में कलश, ध्वजा और छत्र हो, तो समझो कि 7 माह तक यानी 7 महीने तक धन का लाभ होता है तथा भावी उन्नति भी होती है यानी तरक्की भी होती है। सुनने वालों,

यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।

भक्तों, ऐसी धारणा है कि पुण्य करने से सुख प्राप्त होता है और पाप करने से दुख मिलते हैं। लेकिन पाप क्या है, पुण्य क्या है, सुख क्या, दुख क्या है, इस भजन में इस बात

ऐ प्राणी, संसार में सुख दुख, भाव अभाव, होना न होना, लाभ हानि और जीवन मरण, ये सब सभी प्राणियों को

बारी बारी से प्राप्त होते हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारी सुबह शाम की पूजा तभी स्वीकार करता हूँ जब तुम्हारे दिन के काम काज में एक भी झूठ नहीं होता।

मित्रों, जो लोग कहते कुछ है और करते कुछ और है, उनसे मेरा जी घबराता, क्योंकि उनके कहने और करने का कुछ ठिकाना नहीं है।

संसार की तरफ चलने वाले का कोई भी साथी नहीं होता, पर भगवान की तरफ चलने वाले के सब साथी हो जाते हैं।

भाइयों और बहनों, जहां साहस और परमात्मा साथ है, वहां कठिनाइयां वे समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। यह मेरा और मेरी पत्नी राधा

पैसे को तिजोरी में बंद करके रखा जा सकता है, पर समय को बंद करके नहीं रखा जा सकता। अपने अनमोल समय को व्यर्थ के कामों में खर्च नहीं करना चाहिए।

मेरे मन की हो जाए, इसी को कामना कहते हैं। ये कामना ही दुख का कारण है, इसका त्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता।

धन किसी को भी अपना गुलाम नहीं बनाता, मनुष्य खुद ही धन का गुलाम बनकर अपना पतन कर लेता है।

मित्रों, हमने अपने पिछले जन्म के साथ साथ वर्तमान जन्म में भी बड़ी संख्या में आत्माओं के साथ बुरे कर्मों को जाल बुना है। इसीलिए हमारे अच्छे कर्म बुरे कर्म दिखाई देते हैं। अच्छे कर्म के सभी विचारों और कार्यों में अच्छाई के साथ अच्छे अच्छे बात हो, इस पर आप ध्यान दें, क्योंकि कर्म के अनुसार आपका भविष्य या अगला जन्म तय होगा और वो आप ही करते हैं।

पैसे को तिजोरी में बंद करके रखा जा सकता है, पर समय को बंद करके नहीं रखा जा सकता। अपने अनमोल समय को व्यर्थ के कामों में खर्च नहीं करना चाहिए।

भाई बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, हमेशा इनके लिए प्रार्थना करें। आंखें जो लोगों में सर्वश्रेष्ठ दिखती है, एक दिल जो सबसे बुरे को माफ कर देता है, एक दिमाग जो बुरी बातों को भूल जाता है मित्रों, और एक आत्मा जो ईश्वर में विश्वास कभी नहीं खोती है, भगवान को कभी नहीं भूलते हैं। आप भी ऐसे हो या सिर्फ बोलते रहते हो? हम भगवान भगवान के प्रार्थना ये है, भगवान के प्रार्थना करो सच्चे मन से, साफ दिल से और विश्वास के साथ मित्रों।

मित्रों, प्यार वास्तव में सबसे बड़ी शक्ति है। प्यार हमें बहुत महान बना सकता है और मन को हल्का प्रभावित कर सकता है और खुश कर सकता है मन को। फिर भी इस शक्ति का सबसे अधिक दुरुपयोग होता है मित्रों, दुरुपयोग होता है। इस प्यार की शर्तें पूरी दुनिया में प्यार के नाम पर स्वीकार की जाती है। प्रेम का सच्चा समाज जरूरी प्यार भावनाओं पर नहीं मित्रों, भावनाओं पर नहीं बल्कि विवेक और आपसी विश्वास पर आधारित होता है। आप भी प्यार को इसी तरह से देखते हैं? जरा सोचिए, सोचिए।

मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। ये तीन बातों शीघ्र उद्धार करने वाली है। पिता पुत्र प्रभु से कहते हैं,

यारों, प्यार का शरीर से कोई विशेष संबंध नहीं है। प्यार का संबंध आत्मा से है। प्यार को हमारे अंदर प्रवाहित होने दें और पूर्ण समर्पण को स्पर्श करें और हम प्रेम के लुप्त हुए बिना हमेशा तेरो ताजा, आकर्षिक और स्वस्थ रहे। मित्रों, जीवन के सारे खजाने हमारी दृष्टि अनुभव से प्यार ही उन्हें वापस पाने की एकमात्र उपाय है। इतना शक्ति है प्यार में। प्यार को ऐसा वैसा ना चीज समझो है।

मित्रों, क्या करना था, क्या कर रहे हैं, क्या हो गया? पैसा कमाना ठीक है, मगर पैसों के बस में मत हो जाना। सब कुछ यही रह जाएगा, सिर्फ तुम नहीं रहोगे। क्या छोड़ कर जाना है? इज्जत, इज्जत और ये कमाना है। मित्रों, इस गीत के माध्यम से

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोठी संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सुनने वालों, सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं संजय, जो आपके साथ जुड़ गए हैं, कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करूंगा और कुछ सुंदर सुंदर भजनों के साथ।

जो बीमार है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिसके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत सा हैप्पी बर्थडे। जो अपने तैयारी कर रहे हैं कुछ शिक्षा दीक्षा लेने और देने को, तो उनको भी माता सरस्वती को ओर से शुभकामनाएं प्रस्तुत है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी के ओर, तो उनको ओर से ये कहना चाहूंगा, हर बार की तरह की गांधी जी को भूलना नहीं। ये मत सोचना कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सोच जा आपको रहेंगे तो ये, अगर मैं आपसे ज्यादा ना कह दूं तो ये जरूर स्पर्श है कि आप अपना समय पे पेंशन को प्राप्त कर सकेंगे।

सुनो लो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सा दोहा हम सबके लिए लिख गए हैं। और तुलसीदास कह गए हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान।

इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, अहंकार और लालच भरे हुए है, तब तक एक ज्ञानी पंडित और एक मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों समान होते हैं।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं और एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

स्वस्ति माहौल के हवास में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हमारे सभी कर्मचारियों जो हमारे सभी कोलीग खास होते हैं उनके ओर से एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे। भजन का बोल दो तीन है जिंदगी।

आई जगत में काई करो, यानी कहने के तात्पर्य ये है, हम जगत में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाए जिसे हमें कोई बाद में कुछ बातचीत करके, ऐसा ना हो कि हमारा जो कर्म किए हमने वो कर्म ऐसा है जिसके बारे में लोग नेगेटिव बात करते रहे। दोस्तों सुन लो, बातचीत, बातचीत ये दो शब्द ही है पर की जाए तो दिलों को कई मैल धुल जाते हैं। एक सुंदर सा भजन और हम चलाने वाले हैं जो हमारे स्टूडियो यानी फाउन रेडियो का सभी कोलेखास की ओर से।

स्वस्ति मिश्रा के आवाज में ये सुंदर सा भजन कि तेरी शुक्रिया है सुबह की पहली प्रणाम कि हे ईश्वर आपकी कृपा से एक नया सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। आपकी आभार हूँ मेरे सभी मित्रों और सभी संबंधियों, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु को प्राप्त करे। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं सुनने वालों, और ये भजन भी सभी को लेकर खास हमारे डायरेक्टर कुमार घिराव जी के ओर से, जॉनी सुरजबाली जी के ओर से, शांता खेमाई, रजेश बदलू, राजन द्वारका, प्रदीप फेराई, विजंती नाथू, रोसिता गिरजा सिंह, सुरेन भगवान दीन, बबली आसरा, रोमियो हाउस, संजय भगवंत, गंगा चंद्र जी और यूसुफ सितु, बीबी साहिबा रहीम बख्श जी, श्याम पूरन, अनुराधा चंद्र जी और राजेंद्र सिंह हैन और अनिल सरजुग जी के ओर से ये सुंदर सा भजन।

जब कुछ समझ में ना आए तो सीताराम गाइए, और यही संदेश, जो सुंदर सा संदेश हमारे फाहुन का सभी कोलेखास की ओर से रखा गया। और एक मैसेज जो उत्तम नगर भारत से आया है, ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है, और संदेश ये है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। तो ये सुंदर सा संदेश भाई ईश्वर जी जो उत्तम नगर भारत से और ये संदेश को भेजे है, एक बार और उसे दोहरा दिया जाता है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। एक और सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

होगा वही जो राम ने लिखा है। ये सुंदर सा भजन हम सब सुने अजय तिवारी के आवाज में। सुन वालों, हमारे पास मोहन गार्डन भारत से भी एक और मैसेज आए है कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। ये सुंदर सा मैसेज श्रीमती सुनील जी जो मोहन गार्डन से भेजे है। बहुत खुशी की कार्यक्रम को अन्य और स्थानों पे भी सुना जाता है। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और एक और सुंदर सा भजन के ओर बढ़ रहे हैं।

जय किशोरी और सोनू निगम के आवाज़ में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने जो हमारे देश में सफ़र करने को आए हैं। हार्दिक से स्वागत किया जाता है और कहना ये चाहूँगा कि हमारे देश में हॉलैंड में कितने मंदिरों हैं, जैसे कि डेन हाग में राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर जो हर रविवार को और लगाया जाता है शाम में 2 बजे से 5 बजे तक, मंगलवार को राधे कृष्ण मंदिर जो 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, सेवाधाम मंदिर जो डेन हाग शहर में वो भी शाम को लगाया जाता है हर रविवार को, और इसी प्रकार से सुतमेर शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि हर मंगलवार को लगाया जाता है 6 बजे से 8 बजे तक। दमेरन शहर उत्तराखंड में गणेश मंदिर जो भी हर मंगलवार को 4 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है। इसी तरह से अलमेर में विष्णु मंदिर जिसे हम गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं वो भी हर रविवार को 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। ऐसे भी हम लोग के देश में जो सुंदर सुंदर मंदिरों का स्थान है जहाँ पर हम सब जाकर के सत्संग आदि कर सकते हैं और कथन वहाँ हर अलग मंदिर दिन पे कथा को और जो व्यास भगवान का प्रार्थना पूजन आराधना किया जाता है संदेश को रखा जाता है। रोटरडम शहर में शिव मंदिर और शिव मंदिर अर्नहेम में भी हर रविवार को जो सुबह में रोटरडम में और सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, और अर्नहेम में जो कि 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। हम एक और भजन की ओर बढ़ेंगे, राधा रानी का चरण जो कि चित्रलेखा जी के आवाज़ में रखने वाले हैं।

राधा रानी के चरण प्यारी प्यारी चित्रलेखा जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम एक और मैसेज जो प्रदीप जी जो उत्तम नगर से हमारे लिए भेजे हैं, और ये मैसेज का बोल ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव और समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। तो भाई प्रदीप जी को बहुत सा और नमन करता हूँ, और ये सुंदर सा संदेश रेडियो पर रख दिया गया। हम एक और सुंदर से भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों। जया किशोरी जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन।

जय किशोरी जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। मेरे श्याम तेरा नाम ही काफ़ी है मेरी हर मुस्कान के लिए। यहाँ तक जो सुबह का भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, मैं आपका सेवक संजय आशा यही रखता हूँ कि कुछ न कुछ आपको जरूर अच्छा लगे होंगे। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, रूह कुछ बदल दिया जाएगा। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत है।

सुनने वालों, मैं संजय आपके साथ जुड़े हुए और ये दावा के साथ कह रहा हूं कि आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं। एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं संजय, क्योंकि पुलिंग स्त्रीलिंग में तो कभी गलती भी हो जाता है। विश यू अ वेरी गुड डे।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुनाह है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी, ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यश में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं। तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुन

स्टूडियो में तो थोड़ा बटन ज्यादा लेफ्ट की ओर घुमा दिया था या राइट की ओर पता नहीं, पर लाल जल रहा था। आप अपना रेडियो का बटन किस ओर घुमा रहे हैं, बस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।

सुंदर संगीत जो निकाला गया एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे सुनने वालों, और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम 6 दर्शन स्थापन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फाहुन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे।

0: वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया, ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सूरीनामी हमारे सूरीनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

वापस आऊंगा। कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला सा प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है।

अग्रीत सॉन्ग हल्लो, जिसमें काम किए रामचरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं।

आर्यन खान और राश्मिका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से और रहे, और दूसरा जो अटूट विश्वास।

तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर ने ये फिल्म में काम किए। दोस्तों सुनने वालों, मैं आपके साथ कुछ समय तक और व्यतीत करूंगा। एक और सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है, क्यों ना उस ओर बढ़ते हैं कि मुझको तुमसे प्यार हुआ।

इमरान हाशमी ने फिल्म में काम किए। दोस्तों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, 2400 घंटा आपके साथ, जो हम सब जुड़े रहते हैं, हमारे सभी कोलेखा साथी अपने अपने समय पे और यहाँ उपस्थित होकर के कार्यक्रम को रखते हैं। किसी ने मेरे पास ये संदेश को भेजा है कि हद से ज़्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। तो आप खुद समझदार हो, समझ जाना क्या संदेश देना चाहते हैं। जो व्यक्ति ने हमें हमारे पास ये संदेश को भेजा है, एम फी नाम है उनका, हमें कहो सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।

सुनाएं आपको लता और रफ़ी जी एक बार फिर, और वही मशहूर फिल्म मैं चुप रहूंगी से निकाला गया यह सुंदर सा गीत। और सुनने वालों, आप हो जो गीत और संगीत के प्रेमी, तो यहाँ से फ़ौन हिंदुस्तानी आपके लिए ये सुंदर सुंदर सा गीत जो सेलेक्ट करके रखी है

कितना प्यार भरे ये सुंदर सा गीत है जो आपने सुने। जी चाहता है कि बस सुनते ही जाए, सुनते ही जाए, सुनते ही जाए, जी नहीं भरता ऐसे ही सदाबहार गीतों जो आपके लिए यहाँ से सिलेक्ट करके रखी गई है, आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल एकदम से तैयार करते। हे संगीत और संगीत के प्रेमी, तो यहाँ से लेकर चलते हैं एक बार फिर ऐसे ही सुंदर गीत, और इस बार है मन्ना दे लता जी के साथ में।

सुनाए आपको मन्ना दे और साथ दे रही थी लता जी, बिल्कुल आपने सुने सही। आज ही जी लो, आज ही जी लो खुल कर यारो, आज ही जी लो खुल कर यारो, कौन जाने कल की क्या कहानी, हंसो मुस्कुराओ, हंसो मुस्कुराओ, फिर न होगी ये दिन सुहानी।

सुन चंपा और सुन तारा, लता और किशोर जी ने सुनाए, फिल्म का नाम है अपना देश। जी हाँ, जीवन की कहानी प्यार से लिखते चलो। जी हाँ सुनने वालों, जीवन की कहानी प्यार से लिखते चलो, मीठे बोल बोलते रहो, रिश्ते नए बनाते चलो, रिश्ते नए बनाते चलो। जीवन की कहानी को रंगीन बनाते, सजाते और संवारते चलो। क्या लाए थे सुनने वालों, हम क्या लाए थे जो हम लेके जाएंगे।

जीवन के दो पहलू है। हाँ, जीवन है दो पहलू से बने हुए, जैसे रात और दिन, आज और कल। और कह रहा है कि मुझे नहीं मतलब कौन किसके साथ कैसा है, मुझे नहीं मतलब कौन किसके साथ कैसा है, जो मेरे साथ अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा ही है।

कहते हैं कि जिंदगी में ना जाने कौन सा बात आखिरी होगी, जिंदगी में ना जाने कौन सा बात आखिरी होगी, ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी। मिलते जुलते बातें करते रहो यारो एक दूसरे से, मिलते जुलते बात करते रहो एक दूसरे से, ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी।

जाने ना। लता जी से आपने सुने फिल्म का नाम इम्तिहान। इम्तिहान सुने वालों, हाँ इसमें हेलन भी अपना खूब कमाल की है।

0: खुशी एक एहसास है, खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है। जी हाँ, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, मगर जिंदगी तो वो ही जीते हैं जिसको खुद पर खुद विश्वास है। द बेस्ट रेडियो स्टेशन इन टाउन, हाँ सुनने वालों, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो जनता के नाम। अजो देन हाग न्यूटन स्ट्रीट नंबर 25 पर है। देन हाग न्यूटन स्ट्रीट 25 पर जो इनका स्थान है, So viel Dingen kommen von selbst gut. Sorg dat je leeft. Denk er niet te veel na. Word niet ziek door jezelf te veroordelen. Verteer jezelf niet. De dingen die niet kunnen veranderen. Mensen niet kunnen veranderen. Je maakt jezelf kapot. Je dagen, je kansen, je leven, de mensen om je heen. Zoveel dingen komen vanzelf goed. Zorg dat je leeft.
1: Kom maar.

यस मोनिका, ओ माय डार्लिंग, जिसका नाम मोनिका है तो ये गीत उनके लिए भी पेश किया गया है। साथ ही साथ जिसका नाम मोनिका भी नहीं है तो ये सुंदर सा गीत भी आपके लिए है जो यहाँ से नशर किया गया है। देखो तो फिल्म का नाम है कारवाने खतिन ए नसीफ तक, ये सदाबहार गीत जो आपके लिए पेश किया जाता है। शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द में एक नहीं हाथ नहीं, शब्द के नहीं हाथ नहीं पाँव, शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के ना तो हाथ है ना तो पाँव, एक शब्द है औषधि और एक शब्द है घाव। आप बातों से लोगों को जी जीत सकते हैं और बातों से ही लोगों को भी घायल कर सकते हैं। ऐसा भी है कि terwijl we dingen uitstellen, terwijl we dingen uitstellen, gaat het leven voorbij. कुछ नहीं अर्जताल करना सुनने वालों, अगर हो सके तो आज ही कर दो। जो कहते कि जो कल करना है तो आज करो, जो आज करना तो अभी कर डालो, क्योंकि कल का पता किसी को नहीं है। और ये भी आपको भी एक शक्ति भी देगा अगर आप ये कहेंगे कि हम कहते हैं कि हाउ देश सेन आल्टेट इन खदाख्तन, हाउ देश सेन आल्टेट इन खदाख्तन, एंड दैट सेन एक वेल है या एक वेल है एक कान है लुक्त में। एक चाबी है, पॉजिटिव चाबी है आपके वास्ते। अगर आप कहीं ऐसे हैं जहाँ पर आप कुछ करना चाहते हो और लुक नहीं होते, तो आप ये जरूर से कहना कि एक वेल है एक कान है लुक में। और इसके साथ सुनने वालों, हम आपको लेकर चलते हैं फिल्म शोले की तरफ।

महबूबा महबूबा सुनाई आपको, हम आपसे बता दें आर डे बर्मन, जी हाँ आर डे बर्मन ये गीत को गाए हैं और म्यूजिक भी डायरेक्ट तक की है आर डे बर्मन, जी हाँ सुनने वालों। और जैसे कहा कि फिल्म का नाम है शोले, शोले नहीं खाती फैफन से फंत, वही मशहूर वही है तक फिल्म

हाँ सुनने वालों, दिल के सहारा आज आप प्यार करें, और ज़रूर से प्यार होना चाहिए, क्योंकि प्यार ही ज़िंदगी है, प्यार ही सब कुछ है, प्यार से आप है, प्यार से हम है, प्यार से ये सब सारा जहान है। आप आए तो बहारों ने लाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आए खुशबू।

चलेते साथ मिलकर और चलेंगे साथ मिलकर, फिल्म का नाम हसीना मान जाएगी, ज़रूर से हसीना मान जाएगी।

देवेंद्र कपूर जी के मीठी आवाज में नीले गगन के चले फिल्म हमारा से निकाला गया ये सुंदर सा गीत सुनने वालों। कहते कि आज सोचा कि क्यों तेरे सिवा सोचूं, आज सोचा कि कुछ तेरे सिवा सोचूं, अभी तक इसी सोच में हूँ कि क्या सोचूं। एक बार फिर यहाँ से हम सुनेंगे महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में।

होता है कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। हम देखे तो किस फिल्म का है ये सुंदर सा गीत, जब जब फूल खिले। हाँ, जब जब फूल खिले फिल्म से निकाला गया है, और यहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं लता जी की आवाज़ में। सुनेंगे सुनने वालों आज इस खूबसूरत तारीख जो है यहाँ पर हम मिलकर और सुनते हैं चलते हैं। मोहब्बत खुद बतलाती है, मोहब्बत खुद बतलाती है कहाँ किसका ठिकाना है, किसके आँखों में रहना है या किसके दिल में बसना है।

रास्ता सावन होगा। लता जी की आवाज़ में यहाँ से हमने मिलकर और श्रवण किए। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, जी हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना भी खुशियाँ छीन लेता है।

so romantis, so romantis. दिल छू जाते हैं ये लफ्ज़े, रफ़ी जी की आवाज़ में हमने यहाँ सुने। सुने वालों, फिल्म का नाम शबनम।

राज राज दिल का दिल में छुपाते हैं वो, राज दिल का दिल में छुपाते हैं वो, सामने आते ही नजर झुकाते हैं वो। इस बार हम सुनेंगे अम्मू केस जी की आवाज़ में।

हाँ जी, धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। फिल्म का नाम तो यहाँ पर नहीं लिखा है, फिर भी आपसे बतला दे, आपने सुने, हमने सुने लता और मुकेश जी की आवाज़ में कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले।

नाम था, ये दोनों का फिल्म में, अब फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा। किशोरदा और लता जी की आवाज़ में यहाँ से हमने और सुने। दोस्ती कभी स्पेशल लोग से नहीं होता है, दोस्ती कभी स्पेशल लोग से नहीं होती, जिससे दोस्ती होती है बस वही स्पेशल हो जाता है। दोस्त के दोस्ती में कभी कोई रूल नहीं होता, दोस्त के दोस्ती में कभी रूल नहीं होता है, और ये सीखने के लिए कोई स्कूल नहीं होता।

फिल्म आई मिलन की बेला से ये सुंदर सा गीत यहाँ लता और रफी जी की आवाज में हमने सुने हैं। दोस्ती नजरों से हो तो उसे खुदरत कहते हैं, दोस्ती नजरों से हो तो उसे खुदरत कहते हैं, चांद सितारों से हो तो जन्नत कहते हैं, हसीनों से हो तो मोहब्बत कहते हैं, और आप से हो तो उसे किस्मत कहते हैं।

अजनबी हूँ रफ़ीजी की आवाज़ में हमने सुने सुने वालों फिल्म का नाम जब जब फूल खिले। दोस्ती का रिश्ता दो अनजानों को जोड़ देता है, हर कदम पर जिंदगी को नया मोड़ देता है। तुम सदा मुस्कुराते रहना ये तमन्ना है हमारी।

के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजंती नाथू का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नई मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है, ये तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस आव में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी।

अभी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुम मेरी आवाज लो में आ गया, फ्रॉम द मूवी बेताब से हमने पेश किए हैं। और

अनिल भीम जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। एक बहुत सा सुंदर गीत हम चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते, और सरा सा हम देखें तो मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी ठोकर से आप सुनेंगे द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में।

फ्रॉम द मूवी ठोकर से हमने पेश किए हैं मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों और म्यूजिक दिए हैं श्याम जी घनश्याम जी कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे फ्रॉम द मूवी पूरब और पश्चिम से हम पेश करते हैं।

फिल्म का नाम है पूर्व और पश्चिम। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, यू हसरतों के राह मोहब्बत में धो लिए। लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी अदालत से हम पेश करते हैं

अभी आप सुन रहे थे लता जी की आवाज में यू हसरतों के दाग फ्रॉम द मूवी अदालत से हमने पेश किए हैं और म्यूजिक डायरेक्टर है मदन मोहन जी। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते फ्रॉम द मूवी दिल ने पुकारा। क्षमा करना सुनने वालों, फ्रॉम द मूवी दिल ने पुकारा इसी फिल्म से हम पेश करते हैं द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में।

अंदमायती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे वक्त कर ताज वफा आप हमारे होते, फ्रॉम द मूवी दिल ने पुकारा से हमने पेश किए हैं। हम चल रहे थे, वो चल रहे थे, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे।

अभी आप सुन रहे थे हम चल रहे थे वो चल रहे थे मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे फ्रॉम द मूवी दुनिया ना माने। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं और म्यूजिक डायरेक्टर हैं मदन मोहन जी। बंगले के पीछे मेरी बेड़ी के नीचे

अभी आप सुन रहे थे बंगले के पीछे मेरी बेड़ी के नीचे, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी समाधि से हमने पेश किए हैं और लता जी आपको सुनाने वाले थे। द टाइटल फ्रॉम द मूवी आया सावन झूमके हम पेश करते हैं लता जी के साथ में, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

0: टाइटल फ्रॉम द मूवी आया सावन झूमके। अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे लता जी के साथ में, और म्यूजिक डायरेक्टर है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी। किशोर डा के साथ में लता जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं सुन चंपा सुन तारा।
1: Details, echt van jou.

शो डा के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी अपना देश। वह जब पलटता है तो सब कुछ पलट के रख देता है, वह जब पलटता है तो सब कुछ पलट के रख देता है, इसलिए अच्छे वक्त में गुरूर ना करो और बुरे वक्त में उम्मीद ना करो।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी क्रांति से हमने पेश किया है चना जोर गरम मोहम्मद रफ़ी किशोर डालता जी और नितिन मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। एक और गीत हो जाए इसी फिल्म से हम पेश करते हैं लुई शमाशा लुई।

लता जी के साथ में नितिन मुकेश आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी क्रांति से भी आपने सुने हैं लुई शमाशा लुई। हमेशा खुश रहा करो क्योंकि परेशान होने से मुश्किल दूर नहीं होती बल्कि सुकून भी चला जाता है। दिल लगीने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा।

अभी आप सुन रहे थे दिल लगी ने दी हवा फ्रॉम द मूवी दोस्ताना से हमने पेश की है। आशा भोसले जी के साथ में किशोर डा आपको सुनाने वाले थे। कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले फ्रॉम द मूवी लवारिस से हम पेश करते हैं।

आशा भोसले के साथ में किशोर दा आपको सुनाने वाले थे कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। अदालत है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं वो तुमसे दूर रह के हमने जाना प्यार क्या है, दिल ने माना यार क्या है।

तुमसे दूर रह के हमने जाना प्यार क्या है, दिल ने माना यार क्या है। भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी अदालत से हमने पेश किए हैं, और आपको सुनाने वाले थे लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी। पहली पहली प्यार की मुलाकातें क्या आपको भी याद है?

द ग्रेट गैम्बलर है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं पहली पहली प्यार की मुलाकातें याद है, कभी कभी है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती नज़ारे हम क्या देखे। किशोर डा के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं।

चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखे, फ्रॉम द मूवी कभी कभी से हमने पेश किए हैं। किशोरदा के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे गपुची गपुची गम गम।

गपुची गपुची गम गम अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी त्रिशूल से हमने पेश किए हैं। जानी मन तुम कमाल करती हो।

0: रहती डरती हो, दिल में मरती हो, जाने मन तुम कमाल करते हो। लता जी के साथ में किशोर डा आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी त्रिशूल, दोस्ताना है फिल्म का नाम। और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं बहुत खूबसूरत जवां एक लड़की।
1: अरे भाई विजय, तुम यहाँ खड़े हो, उधर तुम्हारी सख्त जरूरत पड़ गई है।
2: मेरी जरूरत?
3: अरे भाई विजय, तुम्हारे गाने की बड़ी ही जबरदस्त फरमाइश हो रही है।
4: हाँ, मजाक कर रहे हैं, एक पुलिस ऑफिसर और गाना,
1: आप सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी।
4: मगर ये इस ऑर्केस्ट्रा पर गाएंगे कैसे? इनके लिए तो पुलिस बैंड मंगवाना होगा।
1: That's a nice one.
3: अरे यार चलो
1: यार, चलो
3: सोचने की क्या बात
1: है भाई, देर हो।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुनी है हमारी हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को ज़रूर पसंद आए हुए होंगे। अगर ज़िंदगी बाकी रहा तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए हमारी प्यार भरी राम राम नमस्कार खुदा हाफिज। Have a nice Sunday and take care of yourself. Till next time.

तमाम रेडियो फाहुन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरिया नाम सस्तीय काले। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारे मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

दोस्तों आज है और आज भी आप लोग को हम समाचार सुनाएंगे। तो आज भी हम फेसबुक के माध्यम से आज भी हम लाइव है हमारे यारो। अगर हमारे प्रोग्राम को आप फेसबुक के माध्यम से और यानी कि देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, श्रवण करना चाहते हैं, तो जाइए रॉय सूरज वाली भी नहीं जॉनी नंबर वन भी हमारा फेसबुक है हमारी जनता।

0: तो दोस्तों बहुत गर्मा गर्म खबर है सूरीनाम की और धर्मेंद्रा आएंगे भैया स्त्री तो धर्मेंद्र वेलकम ब्रदर आ गया है राज राम लगन भी आकर जुट गया हमारा प्रोग्राम में आप सबके हमारा प्यार भरी स्वागत है हमारा प्रोग्राम में जुड़ने को। आप लोग को पता दोस्तों इस समय पे और यानी कि सोशल मीडिया पे सूरीनाम देश में गम्मच मचा हुआ है कारण कि वहां पर भैया यहां हॉलैंड में एक आदमी का नाम बा पॉक्स गजराज एक बिजनेसमैन है भैया साकमान है पैसा वाला आदमी है और ओके राजस्थान फर्स्ट इंटरव्यू करी से और राम राम भाई राज राम लगन तो ओके इंटरव्यू करी से तो इंटरव्यू पे इपॉक्स गजराज का बोली से छोटा रूप में आप लोग को हम सुना दे है हमारे जनता
1: And that was 4 weeks later. You know, eventually, when both I and the project received approval that it could proceed in Suriname, people were willing to buy land. We weren't going to ask if we could, state land or whatever. The people just wanted to buy. They said, we'll buy it.
0: तो दोस्तों ये नीदरलैंड्स अफेयर से भी है इसमें और बताए गए है कि ये आदमी सूरीनाम गए थे और ये है पॉक्स गजरा

पंच और वहां पर मांगत रहा एक जबरदस्त ने यानी कि दिल बनावे देशवा खातीन 2000 घर मांगत्रा बनावे पॉक्स गजराज वहां पर दोस्तों रेडियो स्थान फास्ट पे ये जा करे और बताई है और क्या क्या बताई है बोले जब गैल है वहां पे तब बोले जब गैल है तब संतोखी के बोले बैलकरी से कि हम अंगेला 2000 घर बनावे सूरीनाम देश में। हाँ दोस्तों सूरीनाम देश में तो संतोखी बोले वही समैया पे बोले वही समैया बोले हम ले रहली कहा बोले है अने अने अने देशवा ले रहली हम तो ओके समय न रहा तो एन आंद्र अने मनीर पे बोले उपठा दे से का बोले हेगा ब्रुंसवाइक लगे जब ब्रुंसवाइक लगे गैल है तो बोले है कि हम कई मिलियार्ड के बोले हम मांगे लहिया इन्वेस्टेर करे और वो बोले हेगा दो सौ हजार की कितना बोले मांगे है यहाँ पे बोले है घर बनवावे और वो बोले हेगा तुलन का मांगे तो ब्रुंसवाइक बोले बोली से कि 2% उबद रखवा के बोले हमारे रिकनिंग वहां पे तू पठा दे हवड़ा कर दे तो बोले तो के हम जितना है बोले हम तो के बोले हैगा सफर खनिंग रिकल करे मिया स्टॉक पांचवी प्रोसेस स्टॉक 200% ऑफ मे रिकने द रिकल एक आले फॉर खनिंगन ई अदमिया बोले है और बोले है ने कौ द रिकनिंग बेन तो नहीं सीक अदमिया बोले हम थोड़ा बीमार बाटी कि हम जाबे ई चीज कर 3.5 मिलियार्ड एरो के बातचीत है और ब्रेंसवेक बोले 2% बोले हमारा रिकनिंग वहां पे तू धर दे तब बोले कुछ हो ही पाएगा तो ये रमिया बोले हैगा बोले एक फर्टेल ये ही सो मेर ओवर बॉक्स कैट की ब्रेंसवेक बोले है ओके उका झुका सब पुलिस भैया बड़ी गाड़ी आ रही दे से रमिया बोले ऐसे बोले तो लो मांगे देश चलाए बोले श्री नामक बोले यूलिसन बनाने बोले बनाने रिपब्लिक है भैया बोले तुन द रेक्टर और अनफंकलिक दस्कुंद द क्यूरेटर के बारे में बताई से बोले जो एगो अने होटल एगो रहा लियोंस बैरक बोले जो हम किल्ली बाटी तब बोले 9 हेक्टार जमीन भी ऊपर रहा 9 हेक्टार जमीन में से बोले नोतार 3 हेक्टार बोले जगहिया बेच दे जो वारफान बोले हम ऊपर 2 लाख कर ले रही बोले 2 लाख चीज पे बोले सरनाम में बोले हमार 9 हेक्टार जगह जो हम किने रही होटल वा हमें स्टारजेस्ट रहा लियोंस बैरक पे आप लोग के पता है बोले ओमा से 3 हेक्टार बोले नोतारस ले लीजिएगा बोले हैगा बेच दे इसे तो बोले के बेची से तो बोले कि ओके बेची से का बोले है अने कॉम्बी मार्क के बोले उस समय पे तू जाने बड़का स्पॉन्सर के रहा बहुता के कॉम्बी मार्क रहा तो बोले तू नालिस नकल बोले अते से बनाने रिपब्लिक इन सूरीनाम बोले हैगा सर नाम में बोले सब कुछ हुआ बिकाऊ है बहुत इस एनिट में नहीं मार हेड ब्लेव वे एनडीपी यहां लिखल है भैया geplunderd what fault en nog te verdienen in Suriname Jeremia boli ze badi baat bole we hebben nu een regering en jaar hoe kijk je terug naar het echte jaar die wat we hebben NDP is ja maar je kan het kijken naar haar to ye sab baat bhali ik er bare mein bhaiya aur Ronnie Brunswick badi naraaj hai aur Brunswick ka bole hai over pox bole niet alle Hindustan en hebben die lelijke manieren vroeger zouden we het in de Offerbach hebben gegooid. Bolle ab bolle uchi jua hamna karab. Ekar mare me Brunswick ke juka uka. MMP ke gari deise. Bolle bandar under sab banai se bhaiya. To i discriminasi se worto na chahi gebruik kare ke. Wij zijn multicultureel. Je mag niet dit soort dingen gaan zeggen. En op bepaalde bevolkings als mensen ons koelie ook noemen vinden we ook niet leuk. Hoe kan je zeggen dat juka AP dit en dat is. Dat mag meneer. En een gajaraatje niet zeggen zo en zo mensen. Ja, wat we hebben. Bolle hega. Uitspraken die Pochse gajaraat tijdens een interview bij de Standvaste Radio over hem deed. Hoewel Brunswick de uitlating zeer ernstig noemt, roept hij zijn achterban op rustig te blijven en zich niet te
laten meeslepen door een boosheid. Orbetaiga je heegaan volgens Brunswijk mogen de uitspraken van één persoon niet worden geteend als er gedrag of de mening van de hele bevolking was op Hindustan niet rokker is gegaan. De ikkerbare mee, bahut lamba chowna bhaiya, de Brunswijk barin raj hai, ki ee adamia bolie go saakaman hai, a saakaman gaila Suriname investeer kere, a usa mangatra ikker upper se 2%, dat zegt meneer Gajraj, wat de waarheid, dat weten we niet. Dat is het. Tot Chitra Autar bhi aakar 7B se hamara program mein jut gaye hai. Bhaiya dil buddhu bhi aa gaya hai. Aur yahan par kitne log hai jo jud gaya hai hamara samachar. Aap log bas sunte raho. Hamare pyare pyare janta Suriname ka samachar hai. देखो भैया क्यूबाने सूरीनाम में बहुत ढेर है भाई बड़ी क्यूबाने हैं जो आदमी सूरीनाम में है आपके तो पता होगा कि कितना ढेर क्यूबाने सूरीनाम देश में है हम भी सूरीनाम देश में गरीब भैया एक ब्रोमफिस क्यूबान के न जाने फरकेर के लाइक हमारो तो मार के पेल भागल भाई गैली सिपाही में नालिश कर ली सिपाही बोले कहे दौराई के पकड़ ले हम बोली ओके पकड़ अब छोड़ी फोड़ी भोग दे भैया हम हुए रह जावे बेतरे हम कुछ ना बोली जो सो इस सूरीनाम में से अनफेलकाई आज तक कुछ ना भले भैया अन किफ्त कर लिए वो तो बस कादक हो गए हमार बौरख औरख सब लाश हो गए भैया जो हीरो तोरा मार एक वॉस हेलमाल हेलमाल क्लार में से एन क्यूबाने हैप्पी हिल फिन इन सूरीनाम जोन सबन हुआ परे तने ब्रोमफिस चलावे सुंदर एनख एरफारे बाकी हिया बातचीत हो रहा है एगो एक्ट पार के भैया क्यूबान एक्ट पार मतलब दुई परानी के बातचीत यहाँ हो रहा है चित्रा तो दिलप अब देख का भैले क्यूबान के दोंदर दाख के बातचीत है कटली से काटी से ओके कोनो तो बैनाद पांडे राइश्री भी आ गया है तो आपको राइश्री भी हम प्यार देते हैं यहाँ से हमारा प्रोग्राम में जुड़ने को तो अब देखो एक क्यूबान के का भैले राइश्री क्यूबान के बुधवार के ना दोंदर दाख के भैया और बुधवार के रात के क्यूबान के समन कटली से काटी से ही बातचीत होएगा मोंगो स्त्रात में और खवापन द रोफर्स में कटली से काटी से भैया और कमोड़ी पे दुनिया ने कपाशों त्रय धल ले रहा कटली से रहा भैया ब्राउन फिश ओकर चोरी करके लेके भग गए क्वाटा में तो भैया है स्वाइड आल और दोस्तों असाई तो सोशल मीडिया पे जइयो तीर खेरेंगे के बड़ी आदमी गरियावे भैया पे आज सोशल मीडिया पे गर्मी तुरक में रहा और गरियावे है और मैं सूरीनाम इस नी बेहतर खोर द लातो दार इरलक सैन आलस वोर दूर तो हमारा भैया फतिंगन रामराज भी आ गया है सुतमीर से तो भैया फतिंगन आप तो बहुत बड़का फैन है फिर यहाँ पे के आपको तो मालूम होगा कि इस वक्त सूरीनाम देश में बोले है सिमोंस बोले है कि हम कुर्सुआ स्टाबिल कर देली बाटी मा कुर्सुआ तो भैया फतिंगर संतोखी स्टाबिल कर ले रहा तो कौन ची तू स्टाबिल कर ले ऐसे ऐसे बात अदमी बोले है और बाकी दुकनिया के प्राइसुआ खड़खड़ खड़खड़ चढ़े भैया खड़खड़ खड़खड़ चढ़े और जो ची चढ़ जाए उना उतरे जाने हैं ये सब बात है सूरीनाम देश के तो बोलिए जोन तू वही बतिया हर हाल करे दोस्तों यानी सच्चाई कहना हमारा काम है हाँ twee verdachten voor vermoedelijke schiet in de zusters project ego bhaiya Suriname mein kahin ego sister project hai Paramaribo mein ta yahan bataye gaye bhaiya wahan par dui admi di twee tal word erfan farda mans personen din dupare bhaiya pistol leke dagi se दुई गो दागी भैया जेकर पेट में लगल है और जेकर पेट में लगल तो अब तू जाने जितना और खान है तो वही बा ओके ले आई कि समन सीकन हिस में धरी से और फॉर लोप को ऑंडरसुक फन पॉलिसी इस नार फोरन के कोमन दैट द ट्वी फरदाख्तन इन इट फलीदर फरमुडलक साकन दीने में द स्लाख ओवर तू जनता ये सब बात है क्यूबान के और ना खाली क्यूबान के दोस्तों और समाचार आप लोग को हम बताएंगे अब देखो फुटबॉल वही का होई भाई सब कोई लोबी करे है वही का
Maar WK mensen van bolle he, jogi bolle he. Regering wa, bhaiya. 500,000 dala bhari se. Aur ka bolle he ka televisi ke aishend ke ka bolle he rekht kine ke baare. Bolle bolle paiswa kahan milal bolle isab na batawe he. To ab Gregory Ruslan ekar baare mein batai se batawe yahan pe ki toriya kaise hai dosto. Gregory Ruslan yahan batawe ki toriya kaise hai yani ki ujon 450 yani ki FIFA ke paiswa bhare ke regering betaal the hell of a FIFA licensi for week ka uitsending via de en bole aada hai te je pura rahat tab to ho jaat bhaiya na fir tab to 1 million dala ho jaat bhaiya 1405 tak batawe hiya regering sal STFA bole financiële ondersteuning debe volledig FIFA licensi ke bare mein aur bole hai vice president George Ruslan bole hai op openbare vergadering met Nationale Assemblée mee. Volgens hem zal de overheid de helft van de kosten voor haar rekening nemen terwijl STVS het resterende bedrag via sponsoring moet zien op te brengen. Toen ik er waren met Jogi bolle raha kahen sponsors het toen verwaarwe he. Toen ab jai ke Rusland hier betawe he. Ki aadha paisa STVS zelf sponsors se khojiga aur aadha paisa regering bhariga. Toen hier betawe hij gaf aan dat de kosten van de uitzendrechten dit jaar naar verluid ongeveer $450,000 bedragen. De regering heeft volgens hem besloten STVS opnieuw te ondersteunen. Tussen naam me paisa na hai kas me bhaiya aur ka bole hai ga aadmi jarun mangi football dekhe bhai dat is ook een recht op alle burgers die een voetbal mangen dekhe to ye kaam to chahi ho ek lekin probeer dit via de sponsoren te halen mensen niet Hamelijke staatskas is al heel erg dagmang, bhaiya. Aur elke centjes, elke dubbeltjes moeten omgedraaid worden. Kijk, kahan hum dee, aur kahan na dee. We weten allemaal hoe die dingen van elkaar zitten, bhai. Tulun to jano ekar bare mein. Ab janta hum jai aur aage. Aur aage jai Cubaanse leerlingen op school ab Cuba ke baat aaj hoi ge hai te yehu batai ki Cuba ke ladkan aaj kal Suriname mein Nederlands ja sikhe bhaiya ha het onderwijs in Suriname is niet voorbereid op de komst van Cubaanse kinderen die grotendeels zonder verblijfdocumenten in Suriname wonen en thuis uitsluiten Spaans spreken sinds 2020 kwamen netto uiteraard heel ladkan aail hai और घरे सवन स्पांस पड़े हैं और इस सबके चाहिए जाए के सुरिनाम के स्कूल में भैया लेकिन उस सबके घरे पढ़े और सब एली खाल होले भैया तो कैसे जाइए यहां बताए गए हैं यहां बताए गए हैगा स्पांस तालक केंद्रन और बोले हैगा ऑन द स्ट्रीट Hoogdorp leerkracht op de basis van bestuursleer van de vakbond Wisa Stree. Ke bare mein hai तो हमारे प्यारे प्यारे जनता आप लोग को हम और आगे अपना प्रोग्राम को बताते हैं अब देखो भैया यहां पे हम बोले तेरी कुछ बैतलान के बारे में बताए चलो जानो रोमानिया में भैया ड्रोन गिरल है जहां आदमी रहे हैं कुमार शिवलाल आपको हम स्वागत करते हैं तो ड्रोन गिरल है रुसलान दागत रहा ड्रोन उक्राइन पे जाए के गिर गए है एगो फ्लैट पे और है रोमानिया में और रोमानिया कौन के भैया उन्नाफो लंत के आदमी है अब एकर बारे में बड़ा जुगु जुगु होवे अब रोमानियो बोले हैगा कि हम लोग के नाफो लंत चाहे बस कादक करे के बाकी रसला न गेले और लोग आउटपुट करे रोमानिया से उजाई के गिर गए है एगो ड्रोन जो उदागर बांगत रहा जाए के उक्रेन पे तो एकर बारे में क्रेमलिन मॉस्को से और बोले हैगा बैतलान से साका मारिया सागारूफा रुसलान के रोमानिया फरक्लार दे सुख के रुसलान के कंसुल में तो पर्सोना नॉन ग्राता एंड स्लोट एंड कंसुलात Nadat een volgende Roemeense Russische drone had geleid tot brand in het vlak
nabij de grens met Oekraïne. Obolehega drone incident als een ernstige en roekeloze escalatie van het Kremlin. Het land zelf kondigt aan nog vrijdag te investeren in betere droneafweer. Daarvoor wil het geld gebruiken van een Europese zeefonds leningen. Dus Roemenië of Rusland via Tolonja, Roemenië of Polen Tolonja de grens behega. En dat zijn de risicowekker maar mee. De Rusland zegt snel met tegenmaatregelen tegen Roemenië te komen. De opkomende maatregelen laiga op ikerbare mee. Jaisir hega aanplukkohum. Bataenge Zelensky beschuldigt Rusland van drone incident van Roemenië. Ke bare mee. Hamare janta ab dekho bhaiya hum jai hai Japan ke. Suriname mein bhaiya Japan ke auto bhar ge chalo na pare jaane hain. Kai rakam auto sab Japan ke auto chale hai. Ek rahi self ko Japan se auto mein se hai steve ko motor. Bolie Johnny reclame kare nahi maar dat is ook zo dat weten wij allemaal. Ab hua ke janta Japan ke bole hai ye afgelopen 5 baris mein bitte hue 5 baris mein 2,5% bole hega afgenomen bevolking van Japan is afgelopen 5 jaar met 2,5% afgenomen. Janta komt hier hoge 2,5%. Op bole dat komt erop neer ki vorig jaar 3,1 miljoen minder mensen woonden in 2020 en grootste daling sinds Japan met volste stelling begon in 1920 toen janu India halker dus Japan ke bhaiya India mein aur zyada aadmi hoge hain. Japan ke bevolking bole hega 128 miljoen mensen na 2008 mein yahan bataye gaye hai aur bole ilsaka hue aadmiyan hua pe aur tulun jano ho bhaiya baby jo hai vorig jaar 705809 baby's geboren bhai la aur 1,6 miljoen aadmi maral ha. तो ज्यादा आदमी मरे दाना बेबी खबर हुए तो बढ़ंती जोन देश के उसका हुई uit het onderzoek blijkt dat Japan 2023 voor een derde uit 65 plussers bestond. Daarnaast was er ook een 10 mensen 80 jaar of ouder. Dan wil ik iets Japan के बारे में आप लोग को हम बताई दी कि तोरिया कैसे है भैया कि जापान में आदमी कैसे कितना जनता हुआ रहे अब भैया तमाशा देखो तुलन जानो है ईद उल फितर और का बोले ऑफर फेस्ट रहा आप सबको बधाई हो मुबारकबाद देते हैं हम यहां से लेकिन ऑफर फेस्ट भी भैले पूरा दुनिया में जहां हमारा मुस्लिम भाई बहन रहते हैं और जब वहां पे अब ये बात हो रहा बांग्लादेश में तो बांग्लादेश में भैया सब एक भूल के लेकर बेफल के लेके गईल और ओके स्राक्ति करे मांगी भैया तो वो बेफल हुआ से भागल है भैया वहां से वो बेफल भागल है और बेफलवा बहुत मोई लगे बेफलवा देकर भैया ओकर बार और जितना है कि आपने सोशल मीडिया पे ये तो देखिए ओकर नाम सबन धरे से का दोनाल ट्रेंक मन लगे भैया ओकर बार और सब बगलिया मई से झारल है हाथ दी मार ए फ कैकर और ओकर नाम अल्बिनो बेफल बांग्लादेश में और वो भाग्य है तो इतना मोई लगे वो बेफलवा मतलब वो बुल जोन है हम उनका बोले लोग के भैंसा बोले ना मेरे ख्याल से तो ओके सबन बोले ओकर गटई ना काटीगा तो ओके ले जाए के को धीरन तैन में धर दे से बोले दा दौर से ब्लोंदा हार डोनाल्ड ट्रंप वर्थ खनुम ओकर नाम वे फलवा के धर दे सबन डोनाल्ड ट्रंप भैया प्रेसिडेंट जो हम लोग के अमेरिका के वन ओकर बरवा परसीस ओ इसने लाल लाल बगड़िया ऐसे छारल है तो कुमार शमी भी आ गया है आपको हम स्वागत करें चांदनी जितन भी आ गया है मतलब कि राकेश आ गया है हाँ तो राकेश जी आपको हम स्वागत करते हैं उत्तराखंड शहर से मेरे ख्याल से हाँ तो यहाँ बताए गए है कि ओकर गटई ना काटिस अब बांग्लादेश के रखेरिंग का करी से ई भैंसा के ले जाए के दीरन तैन में धरिस की तुलन एके काबुल है अने पोसो Volkert Mirdha heeft het dier een bijzonder zachtaardige karakter. De broer van de Miranda bedacht de bijnaam Donald Trump
omdat zijn kapsel erg lijkt op dat van Amerikaanse president. Een 680 kilo kebab wegende buffel werd eerder deze week verkocht om donderdag geofferd te worden tijdens zijn offerfeest. Het is moeilijk om afscheid van hem te nemen, maar een offerdier is voor de offerfeest. We zullen Donald Trump voor altijd herinneren, zei Mirda tegen de krant. Maar op het laatste moment werd het dier gered van de slag. Volgens de Bangladese minister, wanneer donderdag tijdens offerfeest zoveel mensen op de buffel afkwamen, dat het niet meer veilig was. De Bangladese overheid heeft de koper van Donald Trump terugbetaald en het dier is momenteel in de dierentuin van hoofdstad Dhaka. Ja, aanploontje joh, ja. Dhaka, te jeroertje joh. Ane, jane, Bangladeske. Donald Trumpke, dikke. Je baat hai, hamare pyare, pyare janta. हम और आगे को अपना समाचार लेकर चलते हैं ताजा ताजा ताजा ताजा खबर भैया घर में सुखना है सुरिनाम देश में घर बैठे सब तो के मार पीट के लूट लेवे भैया लूट लेवे है यहां पे देखो एगो जगह के नाम है बेला दोना स्ट्रात सुरिनाम देश में है और वहां पर कौन चिलेगे भैया चर चर लुटेड़ा हाँ रात के और गैल 1000 एसर दी लूटी से भैया तो चार मिला कि कई मिला रहा कैसे बंटिए पैसा और एगो में मोबाइल टेलीफोन और बोले हैगा अदमिया बोले फॉल्कन्स एमका हाथ है नेट्स एंड एरबल जैसे वो घरे गैल है उतरे में चार आदमी के अनफाल करी से पिस्तौल लेके बदरेक करी से और करतास लेके स्पिलर है ओए मैं खाली 1000 रुपया पैसा रहा भैया 1000 रुपया में तो हुआ का बोले हैगा कौन ची पहिए भाई बाकी उतरा बड़का ओवर फॉल्स बन करी से पिस्तौल लेके तो ये बात है हमारी जनता तो एगो बहुत जबर बोमा मिलल आना कोंदा ना लावलाव चीज हैगा बुद्धू चांदनी जबर जस्त तू जाने सरनाम में बूढ़ा भाई पानी इतना बरसल है चारों बगल बूढ़ा है तो जनावर अजगर जितना चीज है सब अपन होल छोड़ छोड़ ऊंचा भगे है तो यहाँ बताए गए है सुरिनाम में बरखा से गो वो वही है वहां पर जहां आदमी रहे है जबरदस्त बोमा हुआ गैल है भैया और इतना भारी बोमा हुआ गैल है रेप्टिलन खान तैने स्वार रेखा फाक ऑफ द सुकना रूख एंड फेल का प्लेकन यहां लिखल है अपना लड़का के बचाई के रखियो भैया औरतियों के पकड़ के बैठियो वन बोमा ना देखे ती लड़का है कि कौन ची है मुर्गी है के डुक्सी है ओके जब महकल तब ऊ तो के लपेटी एगो खराफ मशीन से जे के सब बोले है पकलेन ओसे सब टांगी से हम खुद इतना बड़का बोमा ना देख ली भैया बहुत जबरदस्त बोमा है और बताए गए है द साम लीफन वर्ड आर्टिफिशियल अलर्ट ब्लाइफन मेंस फन दिस सोर्ट अन रेप्टाइल बेस्ट मेंस आप लोग को ले जाए तेरी कालम की ओर हां कालम के संगे भैया 12 छिछा के लेदर है नानी ओ छिछा के लेदर है भैया कभी देखियो तो कहले में आए तब उस सब के सुरिनाम में सांदराई पे देखिए फरकेस लेदे न जाई के कायन में उतरे तो गायना में अब दूसर चकलस भइल है नानी दूसर चकलस भइल है और वो बताए गए है कि कालम के बोले तेलवे न पाई सरनाम में भरे के केरोसिन तो बोले वो उड़ के गइल है फ्रांस गुयाना में भरिस तब नीदरलैंड खाइल इसके बोल पे भैया ये बात बतावे है कालम अब सुरिनाम के हुआ पे सब संदराई कर्मी ऑन द सुख कर की चीजुआ कैसे है
तो बोले कालम बोले झूठ बोले है बोले अब दैलक आहित आइले ब्रांस्ट ऑफ क्वेस्टी रोंड कालम जो योहान अदोल्फ फेंगल इंटरनेशनल लुखाफन सुरिनाम में बा मंगलवार के कालम जाए के फ्रांस गुयाना में भरी से तेल तब उजाई के उड़ल है और मेल पे बोले सन्ना में बोले तेल ना है तो यहाँ बताए गए हैं फोल्कस वार्निंग मस्तास ओली डायरेक्टर एडी फ्रांकल बोले ये बतिया नकलोप होएगा और बताए हुए हैं कि चीजों ऐसे ना बोले कालम बोले पैसा ना भरी से द क्वेस्टी ड्राइव फोल्कल फ्रांकल और मन बताले खस्किल तो से कालम एंड गो टू द डॉन द डॉक्टर मास्कपे फन स्टास ओली वार द फ्लिक maatschappij brandstof afneemt van GoTo, bolle bij het betaling van de brandstofrekening ook een fee namens de luchthaven en draagt het bedrag vervolgens af aan de luchthaven. De paisana bharera bhaiya, kono feise to i KLM etara jhoot bolis bhaiya, lekin sachai kaise hai, KLM heeft GoTo inmiddels in kort geding gedagvaard de zaak dient vrijdag 29 mei door te gaan. To betalen KLM zou die fee al langer tijd niet betalen. Daardoor heeft GoTo het bedrag volgens Frankel meer dan een jaar voorgeschoten. Inmiddels zou de achterstand flink zijn opgelopen en wil GoTo dat KLM eerst betaalt voordat het brandstof wordt geleverd. Maar zo is het, mensen. Toen mangen he kabole hega paisana bhare te kamua thoro bani KLM to hum log ke price chadhai se te kahe na jai ke Suriname ke tel ke paisa bhare aur janta pe laaye aap लोग के साइन मालूम है भैया हम कालम के बेइज्जती ना करेला मार एक बस सेल्फ मी खमा मिस्किन है वो यूली ओक मी खमा जब तू कालम में बैठियो भाई और वहां पे तरी से इसके फॉल पे जो फरतराखें होइए तरी से लाती होइए जैसे कि ओके उड़े के 12 बजे मान लिया जाए अब 12 बज गए ट्विन तक मनीतन ऊपर होइए तब वो जाने का बोलेगा बोली पासा चिरवा कोफरवा भीतर हम आइए म पासा चिरवा पता ना कहां दिस वाज एन बेसिक द कोफर ट्रक तलाद एक हैपन पार कर मेकअप ऑफ दैट waar is mensen, dat weten wij niet. Maar als ik de situatie lees over de kerosineprobleem van KLM, John Ulkaliski zijn naam getelen hij, waarvan de situatie dat KLM niet betaald had, dan geloof ik KLM heel minder nu mensen. KLM gaat elke keer draaien diezelfde plaatje. Die persoon is nog buiten, die koffer is ingeladen en die koffers worden weer teruggezet, waardoor wij nu een beetje laat zijn met KLM. Dit heb ik niet één diverse keren dezelfde bandje draait daar mensen. To Ursula Bagus Samuj bhi aa gaya hai. Aur yani Rakesh Samuj ke niche Ursula Bagus Samuj bhi aa gaya hai. Ta aapko hum Pandit Tilak Dhari Vek se swagat karte hai yahan Den Haag se aapko. जनता और अब जाएला चिनैनी की ओर नानी छाउमांग छाउमांग छाउमांग चिनैनी की ओर जाएला भैया चिनैनी की ओर हम जाते बोलिए जॉनी चिनैनिया नासी बनाइस की बामी बनाई से ई चिनवा चिनैनी 40 बरिस के चिनैनी भैया बांचित हो रहा है वोल्फ्राम स्ट्रैंड के बांचित हो रहा है वोल्फ्राम स्ट्रैंड के बांचित हो रहा है और बताए गए है बोले एगो टिप क्रिक द चिनई से फ्रोन Per betreffende adres onder dwang werden ingezet voor protestueel bhaiya ego tip sipahi ke milal hai ki wahan par protestueel ke kaam chinaini kare hai ye baat ho raha hai Wolfram Straat mein bhaiya lo na jaiyo bara ech hoy ge sarnam mein जूता पहन के जइयो हमारा भैया लोन सुरिनाम में बहुत जबर हाईवे वायरस हो गए हैं हमें याद हुई कि हम बताएल बीते हुए दिनों में इसका न्यूज हम पठारी बुद्धू कान खोल के सुन ले ना जइयो जाची रही लगे हम अदर सुहाइया डेरा वोल्फ्राम स्ट्रैट में भैया वहां पे मेंशन हैंडल हो अतरा चिनुआ के तत्प मिले है तो बोले अब बत्रे फंदा अंदर ऑन द डोंग वेयर देन इन हसन फॉर प्रोटेस्ट
2 naar aanleiding voor dit informatie werd een inval uitgevoerd waarbij 2 vermoedelijke slachtoffers werden gevonden. Bijate doei mila huape doei go ouchaurike natuurlijk paisui. Op basis van de aangetroffen bewijzen, verklaring van de 2 slachtoffers werden verdachten en afstemming Surinaamse sipahi ook gelegen heeft. Abgeile deke kikke ook is mokkel kerke laise aro kaise toria bhail hai. Hamare janta हम सुचित लोग के को गनवा सुनाई दे ना तो गनवा जो सुनाई दे वे तब अभी हम तुरंत आ जाएंगे।

और दोस्तों ये गीत बहुत लंबा है, इसीलिए हमें इसको तरीके से रोक कर अपना समाचार को आगे लेकर चलना है। तो टोनी श्री आपको भी हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। मालूम नहीं कार में है कि बस में है, लेकिन है रेडियो फाउन पे। तो दोस्तों हम चलती है यहाँ बातचीत हो रहा भैया, सब कोई बोले पड़ोसी नैली रघुनंदन महावीर आ भी आ गए हैं। तो नैली सब कोई बोले हमारे पड़ोसी भैया, अच्छा पड़ोसी बोले बहुत खुश नसीब वाल को मिलता है। हाँ जेके खड़े के वही मोई बिरमान पाई बिरफराव पाई पाई के करो खच्चड़ भैया एंट वे दरी लगी दर बैल दबावे। लेकिन यहाँ बातचीत श्री नाम के हुए है, यहाँ बातचीत हो रहा है श्री नाम के लुका स्त्रात के बातचीत हो रहा है। यहाँ पर जब तू बाजा जोर बजाइयो भैया देर बैल दबाई पकड़ ले रहेगा भाई ये कुछ रही डायरेक्ट क्लाक्त। तो मोतर फिट्स पे लोग जा रहा है, फिर भी रेडियो फाहन को सुन रहा है, दोनों हाथ से स्थिर को पकड़ना जोर से। हाँ और यहाँ बताए गए हैं एक 25 साल के 520 तक यारक क्लेरेंस है। बतावे गए सुरेना में भैया एक सिपाही पकड़ी सी का कर ले रहा भैया ये का करेला लुकास्त्रांत में। बताए गए है ना एक नाई कई बार भैया वार है फोकस ऑन की हेयर हाल दल फॉर एनस्ट को ओवर लॉस एंड बदरेकिंग हीफ को सौरख पाए सुरेनाम देश के बात है। बोलिए डमिया दुर्ग फॉर सलाफ वीर मनवा हमारा बा तब तो और गड़बड़ भैया जब तू दुर्क्ष पीयू के नशान रही है तब बताए से फरकलाल आल खरोई में तेरे हिंदर तो उन्दर फिंदर फनहार भीरमान क्लारेंस फोल्कस हार ऐसे दुर्क्ष फरस्लाफ्त। और बताए है सो इर्दर है बन खदरेग थार वोने इन ब्रांत स्टेकन दरना सो है यार एन हार खसीन स्टेलसल मातक है बन लास्टक फालन एन बद्रेग्ट मेंसे। तो ये बात है ये जिनकी जाए के अपन बिरमान के बद्रेग करत रहा भैया कई बेर बद्रेग करी से और लड़त रहा उसे जो कर सलाब कमरा में भैया जाए के और रुका बोले एस्कालेर करी से इसे होर्द फरदाख्त तकीर खान वरना से इसलिए सलाब की आमर में घुस गए भैया। तो जिनकी तोर बगल में है कोई ना मांगे ऐसन बिरमान भाई सब कोई मांगे हमारे बिरमान नेचस रहे। बोलब की बीर फ्रॉ हमें शुक्रू लेनी कर दिए तो के बोले के कमवे नोलाए के तो के मीठा मीठा शुक्रू रे अगर देखो चुम्मा भी दे दे मीठा मीठा दोस्तों ऐसन बीर फ्रॉ चाही। और बिरमान हमार पेड़वा झुक गए तेरी काट दिए ना बिरमान बोली बोली तो के बोले के काम है ये ना हम अपन काम छोड़ के आयला करे तो ऐसन बिरमान ना चाहेगा टोनी। तो ऐसन बिरमान नसीब वाला के मिले भैया ऐसे थोड़ो मिल जाए। देखो शाया का बोले है ई मेक्सोन शाया हाइटियान है भैया माओ का बोले है मिनिस्टर फॉर यूजीसी एंड पॉलिसी के और मनोरथ के हनीस मनोरथ के बोले आज फिर है और एक कोई मंगबे ना करे भैया वहां पर जेन शाया मेक्सोन का बोले है बोले 10 गो पिकअप बोले हम देती लांटी के सीकर उही के मारे पिकअपुआ खातीन के माता आशीषेर बनावे। तो हाइटियान के बोले रहा बोले 10 गो बोले 10 गो बोले पिकअप हम ले फर करती आंसरी नाम से ओवर हेड के सो दैट वेरक साम ही इन बेटर आउट को फूड कॉर्नर वार्डन एंड अ खमीस कब दारफान ओक सो कुन प्रोफिटेरन निश्चित है दारफान अन दारफान अफ वनवेख द नेगेटिव आउटलाते रिखतन हम ना दैट बतेकन बकेंट वेयर दैट है आफिशियल इरफान यस पॉल मिनिस्टर हरीश मनोरथ बोले कि अब बोले हम पिकअप ना देवे अमदाद जहाँ आफिशियल ना बाटे आदमी लोग क्लाक करे तो बोले हम ना देवे 10 को पिकअप हुआ तो हनीश मनोरथ कैसे बोली थे तो लालिस देसी भैया हनीश मनोरथ के कि तो कहे हम 5 को पिकअप देवे हमें तो बना ले अपन आफिशियल। तो जनता वहाँ पे बहुत क्रिटिक लीफ तो बोले हम पिकअप हुआ ना देवे हेड सोर्थ स्टोर द फॉर्माल यहाँ पे स्पॉन्सर फॉर ऑल दैट है इन देना स्वार इस बर किस देर और बोले तरवेल है यस इट्स गुड फॉर हेड लंग विल डू मींस। तो बिना भैया चारा के मछली ना मिले है भैया सोमार पिकअप हुआ तो थोड़ी है
पांच गोपी क्यूब दी है तो तुम मंगिए ओकर दस गुना लांटी से लेवे। और ना ऐसे जमाना है ना भैया बुद्धू, सो सो में कोई एक झांपड़ ना मांगे मारे तो पांच पिकअप दिए साया, तू सोचा हथियार हम लोग बाटी का, ना ना ना ना। बोले आलस हीफ आलस हीफ एंड रीड मेंशंस ऑन द मिनिस्टर हैड वेट एक एफ सेशन 20 पिकअप जी ऑन द वैक्सीन एंड एक सौ दरफन 10 पिकअप aanleveren. Bullen ze mochten ze nemen en wanneer het geld er is, konden ze me betalen. Ook al is het na 5 jaar, maar door die jugu jugu ga ik je eerlijk zeggen, dan mi abik kanami ede, zei Shaya in de interview. Bullen hem na debe. To je baat is Shaya ke baatjit ho raha hai. Haitian ke bhaiya hi kahan itra paisa paise. Ab ekar batia chahi on the suk kare ke to. Lekin hamar Suriname me kahan hai fiat bhaiya. Glat hai. Baki koi obdraag na debe hai. Ki isam mani yen ke tu jatari on the suk kar ki tu. इतना दिन से दसवां बाटे, कहाँ तू इतना पैसा पहले है, कैसे तू इतना मोनी मांग हो गए, ना खाली एके ना खाली एके मैं और तो के चाहे अंदर सुख करे के चीजवा कैसे है। तो ये बात है हमारा प्रेसिडेंट सुरीनाम के जेनिफर सिमोंस अपन पूरा दिल खासी ले के ब्रासिलिया में गए भैया, अपन आदमी के भी ले गए हैगा। बोले ब्रासिलिया से लुख मार अफगरेज ना ब्रासिलिया फॉर ऑफिस bezoek. Het Surinaamse stadshoofd zal aansluiten eveneens een officieel bezoek brengen aan de Dominicaanse Republiek. Toen wahap jijga Glenn Geerlings ook aan het Mibigail he, delegatie leke opbouwde in welke hoedanigheid hij aan de reis deelneem is vooralsnog onduidelijk. Waarvan Simons Bollera, bolle ook aan het Mibigail he, ik kom een regering met deelnemen nakker he, maar toch ook aan zijn ja he, maar ook aan het Mibigail he, ketiker bhare ke na bhare he, ek er baare me कुछ पता ना है। आप लोग जानो भैया एगो हिंदुस्तानी भैया एगो हिंदुस्तानी बस शफेर है, स्कूल के लड़कन जन मोई ना रहा बेमरिया तरी लड़कर रहा ओके जाय के बतस्त करत रहा, एगो ड्रीम फाइव तक या रखे हिंदुस्तानी बस शफेर है और एक के भैया होफ में गईल है, एक के मांगत रहा ने छोड़वावे और ई अफका चंद्रा अलगू बोले दारमी ब्लेव द एडबस लीसिंग वार में अन होल्डिंग एंड फॉरसेकिंग स्टेल van de verdachte rechtmatig werden verklaard volledig in stand. Obole hega bis dat ik meike ook iets om een pakkerie ze jema een kind in zijn bus zou hebben betast. Het verzoek op basis van artikel 54a wetboek strafvordering was eerder al door de rechtercommissaris afgewezen. Daarna stelde de raadsvrouw hoger beroep in tegen de buskicking. तो ये सब बात है हमारी जनता। तो हम एक दो समाचार और आपको सुनाएंगे। अब देखो भैया फोरख रखे रहे लेंड एक बार रखे रहे लेन कल रहा पांच बरिस में 2.2 मिलियार्ड अमेरिकन डॉलर और एक बरिस के भीतर में 1.8 मिलियार्ड लेनी दस महीना में करी से भैया फोरख रखे तो की 2.2 मिलियार्ड लेनी कल रहा पांच बरिस में और यहाँ सिमोंस के रखेरिंग और रुसलान के रखेरिंग 10 महीना में 1.8 मिलियार्ड लेनी कर चुकल है। एक बारे में मिनिस्टर आदलिन वेमर मान फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग सो यस कमेल इन द नेशनल असेंबली टेंस द बहांडलिंग फॉर द वेसिंग फॉर द कंपटेबिलिटी विद 2024 में मिनिस्टर वेनर मान गिंग फर्दर इन द ओपन ऑफ द लीनिंग एंड द डोर दिस रखेरिंग सेइंग गनोमन। तो ये सब बात है दोस्तों। और यहाँ पे बताया द स्टिक्टिंग सिंगल मॉडल प्रोजेक्ट सुरीनाम ओवर द मेंस्ट्रुएशन के बारे में बोले हैं। मेंस्ट्रुएशन प्रोडक्टर फॉर मिंद्रन स्कूल एंड वर्क फॉर सेम ऑन द फ्रॉवन एंड मेजर्स इन सुरीनाम। तो भैया रंजीत लक्ष्मी नारायण सिंह भी आ गया, सीता दिहाल भी आ गया है, टोनी इस्त्री आ गया है। इसी प्रोग्राम्स एक गिर के से आज हम अपना प्रोग्राम को खत्म करेगा। नली रघुनंदन भी आ गए हैं,
धर्मेन स्त्री राजराम लगन चित्रा अवतार दिल बुद्धू यफतिंगन राम राज रंजीत राजा अयोध्या तोनी स्त्री चांदनी जितन कुमार शिवलाल, ये सब हमारा प्रोग्राम में आए हैं। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में भाग लेने को। आने हुआ हफ्ता में हमारा तुम्हारा मुलाकात होगा। बाय बाय, नमस्कार।

हर काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl।

0: Ja, beste luisteraars, wat een prachtig lied, hè? Ik ben echt dol op dit nummer, zeg ik heel eerlijk. Ja.
1: दोस्तों कार्यक्रम का शुरुआत तो मैं सदियों से करते आ रहा हूँ, वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ। एड फिल्म ललकार कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी की। आज गा लो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा। जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं यारो कि हेप्त्युनास्त लीफ है, कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे सरनामी संगीत, एक से एक बेहतरीन

जाने वाले हमारे सुरिनाम देश हॉलैंड देश का बात में कुछ छोटे छोटे बच्चे के सुपरहिट सॉन्ग्स आप सुनेंगे फंसीफ ततमत फिर तीन यार डायरेक्ट फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री भारत का शान आप सुनेंगे और भारत के आने वाले संगीत के भविष्य आप सुनेंगे। बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं शेर शायरी भी है तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना मजे लेते रहना जहां पर भी हो जिस साल में हो। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो आप सभी को याद करते हैं अपना ढेर सारे प्यार मोहब्बत आप सभी तक भेजते रहते हैं रफी साहब।

एक हमारे सूरीनाम देश का उस्तादों का उस्ताद डिग्रेड श्री रॉबी उदित राम जी। अगला बयान एक नौजवान कलाकार हमारे सूरीनाम देश का जो काफी नाम कमा चुका है सूरीनाम देश में और कुछ दिनों से हॉलैंड देश में आकर बस गया है। टैलेंटेड कलाकार सभी साज बजा लेता है और साथ ही साथ बड़े प्यार से गाता है भी। द ग्रेट सुजल उमराव बरसतिया में

एकदम शाबाश शाबाश शाबाश लाइव रिकॉर्डिंग पंडित श्री क्रीस राम खेलावन जी के ब्यूटीफुल आवाज में जी चंद्र बयान आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया और ये कार्यक्रम आप सभी के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है डायरेक्ट फ्रॉम फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के बड़े स्टूडियो धनहा शहर से। अगला बयान एक और जबरदस्त नौजवान कलाकार हमारे हॉलैंडीज का डेग्रेट शिवम राजाराम की मुद्दत से यही अरमान

सुंदर बयान है श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया नौजवान कलाकार हमारे ऑल इंडिया का शिवम राजाराम। पावन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है यार जोर तोर से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं। कुछ हमारे सुरीनाम देश के कलाकार और कुछ हॉलैंड देश के कलाकार और ये प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है देन हाँ शहर से पावन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से। एक और अति सुंदर बयान आप सुनने वाले हैं और लाते हैं हमारे सुरीनाम देश का द बैठक गाना चटनी क्वीन उस्तादिन मोती माला भोला सिंह अपन अंद्र तूर म्यूजिक बाय वन एंड ओनली मैस्त्रो ज्वाला।

Dan shabai shabai shabai shi ustar ka ustar and the lion of bait gana mare den aksher hollandish ka champion singer the great Davinder Singh Siuna ji found in the stani radio pe aap chun hai yaro jor tor se saptahik program aap sun rahe hai hamare Suriname desh hollandish ka baithak gana agla गाने वाली एक और महान गाने वाली है हमारे सूरीनाम देश के आईडीआर 70-80 चंद्रवती कंधाई जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे तू जाओ कहां मोरे राजा

एकदम टप बैठक गाना सॉन्ग आइडिया र तख्तक और ये मशहूर गाने वाली आइडिया र सही हूँ तख्तक बहुत ही टॉप संगरेस था हमारे सूरीनाम जमाने का सूरीनाम देश में। शादी करेंगे तो चलो ना शादी करें, ये कह रहा है उस्तादों का उस्ताद किंग ऑफ बैठक गाना द ग्रेट संदीप।

बैठक गाना मैस्रो संदीप बदलू जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं यही तक था आज का इस पहला अध्याय हमारे सर्वनामी संगीत का। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन आप ही का, तो ये रेडियो स्टेशन है, आप ही का आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। आफ्टर द ब्रेक कीप लिसनिंग।

Stani Radio Kakari Grim a Pesrutan Kisior Me Live Broadcast He. Abtoen He Daplus Radio Per en natuurlijk ook te beluisteren via internet Killer Dwara FoundFM.nl Per je Kari Grim Aplook Soen Rehe He. Amare Full Team Ktrupse Absrutan Kwekbaar 4-6 Shwa Getam Kari Grim Me. हमारे तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम है नतुलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंत होर तो जो भी रेडियो का काम हो दें कन्फा हो हिंदुस्तानी रेडियो खास फरमाइशें हो जरूरी खबरें इश्तिहारे तो जरूर यानी कि आप अगर आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर या तो आप इवेंट ऑर्गेनाइजर हो ऑर्गामन हो ऑर्गावुमन हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो तो देखना हो सकता है कि आपका धंधा चटपट से चलना शुरू कर दे ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं तो आपको आपका जो कमर्शियल है ना तमाम लोग भी सुनेंगे किफायत सस्ते दाम सिर्फ इस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो कमर्शियल हो जरूरी खबरें हो अपमान पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में तो सदियों से यही आप सभी से कहते आ रहा हूं यारो कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो आप आजमा कर तो देख बेलेटेनेंस कंटोर यूरो फनाफ मांडाग टॉट फ्रेडाग ऑफ 073-562-2747 ja तो आप तार करें 073-262-2077 पर आप तार करके इसके बारे में सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हो तो जो भी रेडियो का काम हो देंक आन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यारो चर्चा करते रहना हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू कोटि कोटि धन्यवाद इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से die nog geen lid van Fahun Hindustani Radio te Guzaris Binti Nibedan kia ja raha hai ki aap bhi jald se jald Fahun Hindustani Radio ka member bane aur o ko bhi banaye aapko to dher sare fayda hi fayda hai sabhi jankari iske bare mein aap taar kare vanaf maandag tot vrijdag van 9 tot 5 op 070-362-2047 ja to op 070-362-2077 per ek dan badhte hai program ki taraf hamare priy shrotaon aur dusra adhyay mein to hamesha ki tarah kuch sarnami indian pop music aap sunenge ek aur mahaan gayak hamare hollandish ka jo khabur hua tha pakistan mein aur kitne baar hamare suriname desh mein gaya shows wagaira diya aur logo ko ye mahaan gayak behad pasand aaya रोजाना सुरिनाम देश में रेडियो पे ये महान सिंगर के गाने लोग चलाते रहते हैं और बेहद पसंद भी करते हैं मैस्ट्रो नदीम खान मेट सेन लीफुंस लित जब तक मैंने समझा जीवन क्या है अ मास्टरपीस ऑफ रीअरेंजमेंट बाय शरीफ वाहिद हुसैन

0: सुनने वालों, यहाँ जो कि रविवार के शाम है और रविवार के शाम में हम सब रेडियो में उपस्थित है, एक गीत चला रहा हूँ, एक गीत जो यूट्यूब से निकाल करके रखा हुआ हूँ। जॉनी भाई, आपको पता ये किसका आवाज है?
1: अभी तो सुना नहीं तो आवाज कैसे होगा भैया?
0: अभी सुना नहीं तो आवाज कैसे होगा? क्यों ना हम सुनने वालों को भी सुना देते कि ये आवाज किसका है। अगर जो कोई जानत हो तो जरूर फोन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे देश का एक कलाकार

चक्कर में पड़ गए। नहीं सांता जी का आवाज नहीं है, ये सांता जी की आवाज नहीं है। हमारे कलाकारों में एक कलाकार अभी जो हवाम में काफी दिनों से है और

0: अपना बला बना लो मुझे बलमा। और जॉनी भाई अभी सोच में पड़ा हुआ है, एक जॉनी भाई संगीतकारों में हॉलैंड में जब देखा जाए तो आप किसको नहीं पहचानते हैं?
1: आवाज से लोग को जो बोलते हैं और गीत में बहुत फर्क होता है,
0: यानी कि आवाज गीत में बदल जाता है।
1: बदल जाता है जब कोई किसी, आपको शायद मालूम होगा भाई ने, ने, भाई संजय, कितने लोग जो तुतलाते हैं,
0: कितने लोग हैं जो तुतलाते हैं,
1: तुतलाते हैं यानी स्तोत्र करते नहीं,
0: स्तोत्र हाँ।
1: लेकिन अब सोचो कि वो ये कैसे गाना गाएगा, लेकिन जो जो गाना गाते हैं तो एक बार नहीं स्तोत्र करते, वो गाना वो इसने चलाते। देख लिया जाए एक मशहूर कलाकार जो हमारे सूरीनाम को जो यहाँ रहते हैं, गोपाल नॉर्मल हैं, गोपाल जब आपसे बातचीत करेगा तो वो स्तोत्र करते हैं, लेकिन जब वो किशोर कुमार के गाना गाते या और भी गाना गाते वो कभी एक बार स्तोत्र नहीं करते और दूसरा आवाज़ से गाते, इसीलिए गाना पे आवाज़ बदल जाता है यार।
0: पर सुनो लो, आप भी सुनिए ये किसका आवाज़ है।

0: अपना बना लो मेरा बलमा, और ये सुंदर सा गीत जो लिखा गया कि अपना बना लो मोरी बलमा, एक और गीत उसी का चलाता है, क्यों ना शायद अभी आ जाए जॉनी भाई आपके।
1: नहीं आएगा। आवाज वही है तो नहीं आएगा।
0: नहीं, शायद धुन कुछ और होगा, देखते हैं।

दोस्तों सुनने वालों, भाई जॉनी भी आश्चर्य में पड़ गए हैं। तो इसे बता देता हूँ जॉनी भाई कि हमारे गायकों में से मशहूर गायक जो सिरुनामक है, जो सबसे ज़्यादा गाना गाए से उनका भाई, बहुत सा गाना गाए हैं। अगर जब नाम चैतू कह लेऊ तो उनकर बहन, कितने बहनों उसकर गीत का गाना गाए हैं।

0: Sătia ce-ai tu? Sătia tribeni ce-ai tu? YouTube se nicala gaya ye geet aur unkar gaye hue geet hai. Unhone bada mandiron mein aur bahut sa jahan gaate rehte hai aur unhi ka awaaz mein ye sundar geet hai, par bilkul jaise unse baat karenge aapko to ye awaaz nahi hai.
1: Lekin har ek log jo geet ko gaate hai bhai Sanjay, तो उसका आवाज बदल जाता है.
0: आवाज बदल जाता है,
1: वो कुछ और आवाज जो बात करते हैं वो आवाज और गीत के आवाज वो दो हो जाते हैं. आप भी तो कराओगे करते हैं.
0: अब कुछ कुछ वहाँ भी कोशिश कर जा सीखे के
1: भाई क्या फरकलाप. तो भैया संजय भी कराओगे गीत गाते हैं तो उसका आवाज भी वहाँ पर कुछ और है. मैं कुछ बताऊं भाई ने संजय, आपकी रामलीला के बारे में कैसे बातचीत है?
0: भाई रामलीला तो यहाँ हॉलैंड में बिल्कुल बंद हो गया था ना. ये लास्ट यार लास्ट ये अफलोप दिशा नियम तो हो ही नहीं कुछ, और अभी यहाँ फिर स्टार्ट किया गया है. और जैसे कि सूरीनाम में अभी भी, सूरीनाम भी कम हो गया है, पर भारत में जो नवरात्रि से पहले तो जनवरी में शुरू हो जाता रिहर्सल करने लगते हैं, क्योंकि नवरात्रि में पहला नवरात्रि में जो मार्च अप्रैल में होता है तो वहाँ पर सभन अपना नवरोज के लिए अपने हर एक स्थानों पे, दिल्ली में हर एक स्थान पे और जा कर के रामलीला होता है. और ख़ास करके त्वेदा रामलीला जो जहाँ पर का बोले है दशहरा होता है, जहाँ पर रावण का और पुतला बना करके जलाया जाता है, तो वो तो हॉलैंड में वो 9 दिन तक यहाँ करना बड़ा मुश्किल हो गया है. पर अगर हम लोग सोचेंगे कि मुश्किल हो गया है तो मैं इस पर नहीं मानता हूँ. मैं इस पर नहीं मानता हूँ क्योंकि ये कार्यक्रम कुछ लोग भी इस समय सुन रहे हैं हम लोग के साथ, और मैं ये आशा रखता हूँ कि जिस देश में जॉनी सुरजबाली है वहाँ तो रामलीला ही करवाई के रखेगा.
1: पंडित साथ है. लेकिन भाई संजय जी ने एक बात और है, सूरीनाम में तो चलते हैं नवरोज, चलते हैं वहाँ रामलीला, और भारत में कैसे है वहाँ?
0: भारत में हर देखो अब जहाँ मेरा परिवार रहते हैं ना दिल्ली में, तो वहाँ पर अब दशहरा वाला जो दूसरा नवरात्रि है वहाँ पर तो ये जूनी मई में गर्मी होता है, तो जूनी में गर्मी अभी होता है और जुलाई में तो बरसात आ जाता है. जब बरसात आ जाता है तो गर्मी जो कट करके 40 से ऊपर रहता है और हो जाता है 32-35, धीरे धीरे अगस्त तक गर्मी और थोड़ा 30 तक पहुंच जाता है, और जुलाई के बाद में वहाँ रिहर्सल शुरू हो जाता है, सब अपना ओपनिंग शुरू करने लगते हैं. और ख़ास करके जहाँ हमारे परिवार रहते हैं वहाँ छत पे,
1: और छत पे होता है
0: हाँ दुसैन
1: ओपनिंग होता है
0: हाँ डाक पे, और लोग आ करके रिहर्सल करते हैं खूब. वहाँ मैंने बैठा था और मैं सुन रहा था, बातचीत हो रहा कि भीड़ भाड़, वैसे तो उतना भीड़ भाड़ नहीं, तो इस बात को पता चला कि वहाँ आप रामलीला का रिया जो हर साल करते हैं फिर भी हाँ. और ये है कि एक ही आदमी नहीं, उसमें वो है कि उसमें है कि दत्तर दो लोग पेश जो इस साल हाँ इस साल नहीं खेले, उसे मौका मिला तो अगले साल मिलेगा, और उसमें एक दूसरे को जोश देते हैं.
1: लेकिन वहाँ पर सब कहाँ खेलते हैं?
0: यहाँ वहाँ जो अपना परिवार है, क्योंकि वहाँ दिल्ली में एक रामलीला मैदान कहते हैं अनहेल ओप प्लेक, जहाँ पर यहाँ के लोग भी जा करके वहाँ पर सम्मान को प्राप्त किए हैं कि यहाँ जो भाई बालादीन लोग जो नाटक आदि खेले हैं और वहाँ पर जा करके क्या कहते हैं सम्मान को प्राप्ति किए वहाँ पर, सम्मान खूब सम्मान किए है होलांद से, क्योंकि भारत ये चाहते हैं कि हमारा सभ्यता संस्कृति और संस्कार ये बढ़ते जाए। अब देखा जाए मोदी जी आए होलांद में तो सब बात सबको नहीं पता है, पर कुछ बातें हैं कि जो हम लोग सुन लेला कि हम लोग के हिंदी स्कूल जो यहाँ पर है 5 सनातन धर्म स्कूल और फाहोन के लेकर के 6 और शोन और फाहोन भी, तो वो इतना प्रशंसा हो रहा कि होलांद में हो करके और ये सब कार्य को करते हैं इट्स ट्रोट्स हमारे हिंदुत्व के लिए
1: क्लोट,
0: और वो फिश्नु स्कूल के और प्रस्थान डाले, पर कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल होने के कारण मीडिया में ना आवे सब और इसी प्रकार से अभी जब ग्वेलनी हेलमाल अफवाई का फन जो प्रश्न रखे आपकी हम रामलीला क्या करते हैं, क्योंकि इस बार हम लोग रामलीला खेलने वाले हैं जो अगले 5 आ रहा है, तो कोनिंग लकसखाउबर्ग में यहाँ हम लोग को अवसर मिला है तो वहाँ पर रामलीला का कार्यक्रम होगा, तो ऐसा है कि वहाँ कुछ कार्यक्रम एरस्ट खदेलता जो खरातस है तो इधर खदेलता में जो जिसके खाने पीने के साथ तो कुछ एंट्री भी लगेगा
1: जरूर लगेगा,
0: पर ख़ास करके हम लोग के अच्छे संविश्वंदर है दच दत हम लोग की हम अपना कार्यक्रम कौन इंकल कस्खाउबर्ग में देख सकते हैं, तो खूब मन तन से काम किया जाए और हमारे जो कलाकार है फाहोन स्कूल से जुड़े हुए वो लोग भी दिखाएंगे कि उसमें रामायण बहुत बड़का महासागर एक ग्रंथ है जो हम लोग के कितने ग्रंथ है पर महासागर है और उसमें से एक छोटा सा झलक हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे।
1: अच्छा भाई ने एक और सवाल है, आप तो यानी कि बखलाइदर हुए और सब करते हैं, मुझे एक डायलॉग सुना दो, आप तो सबके डायलॉग जानते हैं सबके, एक जबरदस्त डायलॉग आपके जो रामायण में है या मतलब कि रामलीला में है आप हमें और हमारे जनता तक ही सुना दो।
0: उसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा दिलचस्प लगता है क्योंकि हम लोग कर रहे हैं वो टुकड़ा रामलीला का जिसमें हमारा लक्ष्य ये है कि राम और सीता का धनुष यज्ञ से उनका और कैसे सीता को प्राप्त किया उसमें ये संदेश रखा जाता है कि हमारे बच्चों ओंस केंद्र वे इतफाक ओंस द फरहाल फन ओंसनी और वे खान फाक साम वो उन्हें क्या कहते हैं बच्चे हो जाते हैं और उसके बाद में हम चाहते हैं कि अपने बच्चा का मुड़न संस्कार जरूर कराए, पर कुछ चीज है जो हमारे धर्म से जैसे कि भी हमने कहा कि सभ्यता संस्कृति और संस्कार इन तीनों चीज़ों पे पहले हमारे ओंस दखीन राजसी सखमार जो भारत को अख्तिंद्रियन सैफन तक में छोड़ करके और भारत से गए सूरीनाम, तो सूरीनाम में जा कर के संस्कार को पकड़े रहे पहले और जा कर के विवाह भी होते थे एक दूसरे के साथ, तो जिसे हम जानते ब्रह्म विवाह से और वत ओंस जो हम लोग का संदेश है ये धनुष यज्ञ से कि संदेश ये हम लोग रखना चाहते हैं कि हमारे बच्चों हमारे कहानी जाने अपना जो फ्रिंद या फ्रिंदेन को जब वो वनेरसो फेर इस दन बोव्यस किस्त फनो हमारा विवाह हुई और हमारा विवाह किस प्रकार से हुई ब्रह्म विवाह होने से लव कुश जैसा पुत्र को जन्म होता है और उसी कारण से फेल अख्तर है मुद्नित खान खलाइक ऑफ द नाम में हमारा धर्म भी रहेगा, धर्म रहेगा इस कारण कि हमारा धर्म में हम लोग के कोई भी कार हम लोग के जो कुछ संस्कार है 16 संस्कार हैं, तो 16 संस्कार में सब देखा जाए कि 4 को पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देला, पहला वाला है जो मुड़न संस्कार, जबकि अभी तक होलांद में हम लोगन गोरे लोग जो गर्भधान संस्कार ये सब कराते हैं
1: कराते रहे
0: अभी तक।
1: अच्छा अच्छा
0: वही माकन में ही, पर हम लोग हिंदुस्तानी उस पर ध्यान नहीं देते
1: नहीं।
0: और गर्भधान संस्कार उसके बाद में और भी करण संस्कार सब कान छेदाई वाला संस्कार सब हुए हैं, जनेव संस्कार विवाह संस्कार और लास्ट वाला संस्कार हुए हैं जब हमारा वो हाँ, पर फाक वो वाला जाना वाला तब बड़ा देर हो जाए जब हम अपना जीवन में सोचते हैं हम जीवन को समझ लिए पर जब समझने को आने लगता है तब जाने का वक्त हो जाता
1: है करना हाँ, हाँ,
0: तो दौरो खोजो पंडित।
1: लेकिन और आप एक डायलॉग सुनाते हैं
0: अब मैं अब आप वही में से हम घुमा रहे थे आपको पर फिर आप हमें लेकर उसी ओर ले जा रहे हैं। उसमें से एक डायलॉग नहीं एक एक एक एक, एक खदेल था जो हमें बहुत पसंद है।
1: अच्छा सुना दो।
0: जहां पर परशुराम जी जो जा करके जब धनुष को टूट जाता है तो वो अंदर आते हैं बड़ा क्रोधित होकर के, मैं क्रोधी हूँ परशुराम के आवास और परशुराम के आवास में आते हैं। और आप नाटक रामलीला वाला आदमी हो
1: नहीं, नहीं।
0: आप वो करवाना चाहते हो मुझ में वो है ही नहीं,
1: नहीं
0: पर परशुराम बड़ा क्रोधित होकर के आता कि किसने ये धनुष को किसने ये दुशासन किया है, ये धनुष जो शिव का धनुष है किसने ये तोड़ा है। तो उसमें बड़ा टड़क भड़क दिखाते हैं राजा जनक जी जो अपने ओर से कहते कि ये ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी है और लेकर के अयोध्या सुपुत्र राम लक्ष्मण को लेकर के यहाँ आए हैं उपस्थित हुए हैं।
1: तो लक्ष्मण भी कुछ बोला था
0: तो लक्ष्मण भी
1: तो
0: अपना
1: कौन से डायलॉग बोला था।
0: लक्ष्मण कहते कि कि बड़ा आप में बचपन में तो मैंने ऐसा ऐसा कितने सारे और धनुष को तोड़ दिए तब आप नहीं आए थे तो आज क्यों आए। और इस प्रकार से छोटा छोटा बातें हैं पर सबसे मूल्य हमें सबसे अच्छा लगता है इसमें से जब ब्रह्म ऋषि जी जो उसे राम को आदेश देते हैं कि जाओ और भगवान परशुराम को प्रणाम करो तो राम जा करके भगवान परशुराम को प्रणाम करते हैं और नमन करते हैं तब परशुराम जी कहते कि अरे वाह मीठी मीठी बातों करके और मुझे भी अपमान भी कर रहे हैं। तो ये अब मैं भी थोड़ा गर्म होने लगा
1: हाँ।
0: पर काफी
1: इतना
0: कि संदेश बड़ा अच्छा लगता है
1: अच्छा,
0: वो
1: जरूर, जरूर।
0: और देखने वाला चीज है।
1: देखो जब रामायण चलते या महाभारत चलता है जो लोग जानते हैं और उसके बारे में आप बताते हैं तो सब
0: हाँ
1: रामायणर होता है तुरख वहाँ ये ऐसे था ऐसे था ऐसे था। कारण कि जो इतिहास है पंडित जी भाई संजय इतिहास लोग बदल नहीं सकता।
0: पर ये हमारे कथाएं जो है ना
1: वो बदला नहीं सकता
0: पर वो ऐतिहासिक रकम से शायद लिखा हुआ है पर इतिहास नहीं है अतः जीती जागता कथा
1: कथा और उसको
0: और
1: बदल नहीं पाए
0: हाँ उसमें बदलाव नहीं आएगा कभी।
1: क्योंकि एक नाटक जो हम सब लिखते हैं या एक फिल्म बनाते हैं या एक गीत को हम गाते हैं भजन छोड़ाकर तो उसमें आप कहीं पे थोड़ा लहसुन डाल देते हैं कहीं प्याज डाल देते हैं कहीं मसाला डाल देते हैं कहीं मिर्चा डाल सकते हैं। लेकिन जो इतिहास है जो हमारा वेद के है या कोई भजन के गीत है उसमें आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते। जो है आपको वही बताना पड़ेगा।
0: शायद धुन उसमें कुछ बदल सकता है आवाज किसी का बदल सकता है पर संदेश वही
1: संदेश आप बदल नहीं सकते हैं। हम सब जो कीर्तन भजन करते हैं तो एक एक भजन भजन होता है। बीते हुए दिनों में हमने गए थे रुद्र मंदिर में
0: रुद्रधाम
1: में वहाँ पर हमने शिव चालीसा को गाए। जब शिव चालीसा हमने गाए तो उसके बाद में अब वहाँ कथा होने लगा तो एक स्वामी जी व्यास पर बैठे थे तो वही शिव चालीसा के कुछ कथाओं बताने लगा। तो जो जो वर्थ स्वामी जी बताने लगा वो सब वर्थ वो शिव चालीसा में मुझे मिला कि देखो इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। कारण कि हर एक भजन में, हर एक गीत में जो जो जो इतिहास का है वो सब में बहुत वजन है भाई। और जो नहीं समझेंगे तो सोते तो होने
0: गीत
1: है, ये गीत है,
0: पर उसमें से जो गहराई है, हाँ। जो उसमें
1: हाँ।
0: क्या कहते उसमें से जो निकालते हो, देखो कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु बिना तो कुछ नहीं,
1: कुछ नहीं।
0: तो गुरु जब संदेश उसी में से इतना गहराई निकाल दी एक ही, अब जैसे आप कहे कि शिव चालीसा, शिव चालीसा में से एक ओर से संत, क्योंकि स्वामी ऐसा ही नहीं बन जाता, टीका ऐसा ही नहीं लग जाता,
1: नहीं, नहीं।
0: जरूर कुछ है, कुछ लोग है जो ऐसा ऐसा आदमी पर उसको हम नहीं जाएंगे, पर संत मुनियों जो अपना दृष्टि डालते हैं तो उसमें बड़ा बड़ा सुंदरता मिलता
1: है,
0: बड़ा
1: है, और बहुत गहराई है, बहुत
0: आनंद उसी से हम
1: बहुत बहुत बहुत। आप बस सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो और उसका अंत नहीं भाई,
0: ना ना।
1: अब हनुमान चालीसा जब हम सब गाते हैं भजन कीर्तन के, तो हनुमान चालीसा में हर एक वर्ड जो है हनुमान जी के बहुत मूल्य है कि वो क्या क्या किया है, छोटे से लेकर जन्म से लेकर कहाँ तक वो गया, उसका 40 लीला उसमें बताई गई है, उसके गहराई बहुत। कितने लोग जो हनुमान चालीसा गाते हैं ऐसे थूक जाते हैं, लेकिन उसके गहराई में कभी जाओ तब देखो उसमें क्या क्या हनुमान जी किया,
0: वर्णन किया,
1: हाँ, वर्णन किया, हाँ। अच्छा ठीक है, तो कुछ हो गया है हम सबका आज रामायण के बारे में। आप बताओ रामायण तो आप, रामलीला तो आप करते हैं, और आगे के प्रोग्राम क्या करेंगे, उसके बढ़ंती तो होना चाहिए ना।
0: नहीं बात ये है कि देखो भाई, अब शायद ये बात लाइफ हम लोग को करना चाहिए था, क्योंकि कुछ लॉयस्टरार्थ से भी जो सुन रहे हैं, और इस पे जरूर मैं ये धरना चाहता हूँ कि कहीं भी जाओ रामलीला का बात होए तो उसमें से सबसे पहले होए है कि जॉनी के का हाल है, जॉनी का करे है ईसाई। तब इसमें अब ये सवाल ही आप किए तो, और ये मत समझना कि ये हम जानबूझ के छोड़ रहे हैं, पर ये मेरा बात नहीं है। अब पिछले शुक्रवार को हम लोग यहाँ उपस्थित थे, तो आप इस बात को भी समझ गए होंगे कि हम और हैन जो हमारा टेक्नीशियन है बार बार एक ही ओर आपके घींच के ले जा रहे थे, और आप हम लोग से छोड़ छोड़ करके दूसरा ओर निकल रहे थे, पर नहीं हमारे
1: बात नहीं करूं घुमा फिरा कर तो ही के लपेटे। संजय भाई बताओ फाहुन क्या क्या करते हैं इसमें?
0: फाहुन रेडियो के बात बोल रहे हैं या फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो? इस समय जो देखो अब सुबह से आज रेडियो लगे हुए हैं, फाहुन जो हमारे कोलेखास, उसमें से मुझे कभी कभी कुछ वक्त मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को सबसे यंगस्टर कहलाता हूँ, तो उसे सबसे अच्छा लगता है बस वही बार। पर हम सभी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और देखो फाहुन रेडियो का करो का ग्रुप जो है अभी एक बार लाइफ नहीं आया, इस पे काम करना है, और सब इंस्ट्रूमेंट जो हो चुके हैं स्टूडियो के जो करो का लाइफ लाना है, पर हमारे जो सभापति है करो का ग्रुप का भाई गंगा जी, जो रविवार को अभी आने वाला मेरे ख्याल से, क्योंकि आज सुरेन जी जो आज हाँ तो अभी आने वाले, पर उनके ओर से मैं देख रहा था व्हाट्सएप पे कि कौन कौन आ रहा है, और फुल हर बार फुल होते हैं, तो हर बृहस्पतिवार को यहाँ हमारे समय पे जो हम हमारा ज्योति का प्रकाश के समय पे स्टूडियो बंद करना पड़ता है, क्योंकि वो दूसरा और स्टूडियो में हमारे सभी को कलाकारों जो करो को करते हैं। दूसरा बात ये है कि हमारे देखो हम लोगों में ये है, जितना हमारे कोलेखा से सब कुछ न कुछ और करते हैं। हम लोग कैसे बोले, दो प्रकार के लोग होते हैं ना, एक इनर लोग होते हैं जो सिर्फ अपना परिवार, अपना घर में अपना सब कुछ बढ़िया से चलाते हैं, जाते हैं नौकरी पे, वो फिर वापस आकर के अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे को साइकिल में हवा भरते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने सिर्फ उसके लिए जीते। पर ये फाहन वाला को अवतर कहते हैं, ये अपने लिए नहीं जीते, ये जीते हैं औरों के लिए, उसमें मजा लेते हैं उसमें। अब देखा जाए जॉनी सुरजवाली के जो हमारे सामने बैठे हुए, पर खोलांत में कई मंदिर में जो भजन गाते हैं, ना कि भजन सिर्फ कहां खरोता अक्तिफिताइत होते हैं, तो आप जब वहां ना हो तो थोड़ा अधूरा पड़ जाए। अब देखा जाए अमारा में पिछले साल जो 8000 लोगों, 8000 हिंदुस्तानी जो वहां पर आए, और उसमें आपके कार्यक्रम कितना सुंदर रहा
1: भैया, अरुण
0: ब्रिजमोहन का कार्यक्रम रहा,
1: कार्यक्रम रहा, सबको मिलजुल के किया। आप भी बहुत काम किया है।
0: नहीं, हम लोग भी अपना काम करते, पर कहते कहने की हम लोग सब कोई कुछ ना कुछ में लगा,
1: अपने अपने अपने अपने काम सब किया है। और ऊपर में जो मंदिर आप लोग बनाए थे अमारा में, वो तो हमने देख के दंग हो गया भाई, वो जो इतना बड़ा शिवलिंग थे।
0: हाँ ना,
1: आप शौक पहिर के शौक में कोसू में और पूरा अमारा आपने चल कर और छान दिए।
0: अरे बस साथे
1: साथ
0: मस्ती मस्ती होता,
1: साथे साथ शंकर भगवान के विवाह के भी कार्य आप बना दिए।
0: हाँ, बस हो जाता है,
1: आप बहुत महान है भाई।
0: नहीं नहीं, हमें नहीं, पर जो होना है देखा जाए। पिछले साल हम लोगों ने, आप भी थे वहाँ, कि दिवाली का कार्यक्रम पॉल क्रिकोलान पे, भाई हेमंत लक्ष्मण का कार्यक्रम, तो उन्होंने भी देखा जाए कि खूब मन तन से कितना बढ़िया कार्यक्रम बनाए, और जा करके वहाँ हम लोग भी सहयोग दिए खूब मन तन से। और ऐसे हम लोग के हिंदू का कार्यक्रम कहीं ना कहीं देश में पिछले साल, देखो आप तो उस समय सूरीनाम में थे, पर सभी ये आशा रखते थे कि आप यहाँ होते। दमेरन में मूर्ति स्थापना हुआ, 5 रोज का यज्ञ,
1: जानते हैं उस समय पर सूरीनाम में रहे, वहाँ से हमने लाइव देखा आपको।
0: हाँ,
1: और मंदिर को कैसे वहाँ कारोबार होता है,
0: तो देखो हम लोग ने
1: कितने रोज के प्रोग्राम वहाँ, 4-5 रोज चला था ना,
0: 5 रोज का यज्ञ था।
1: यज्ञ वहाँ में बुलाए थे भैया हैंक फोर्सितर, वो चाहते थे कि जो दिन स्थापना है वहाँ पर हमें कीर्तन करी, मैं क्या करूँ, ये दो जहाँ तो नहीं जा सकते भाई, लेकिन अब आने वाला अब साल में हम सब लोग को बता देते हैं कि राजू फाहन के फाहन, राजू फाहन जो रेडियो चलते हैं, हम सब अपका रूह का खुर बना दिए हैं, और अब हम सब बनाएंगे चौथा ग्रुप टीम फाहुन का। तो आने वाला साल में होगा भाई संजय के साथ में, हो सकते शायद कृष्ण मंदिर के साथ में।
0: नहीं, वो बात भी हो गया, आज हुआ सभापति से कृष्ण मंदिर से, मैंने उसके कानों में डाल दिया है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि भाई बाबू जो सभापति है वहाँ का, और उन्होंने कह दिया कि ठीक है, हम तो सहमत है, और हम वो तो और भी कुछ करना चाहते हैं,
1: ठीक है,
0: पर अभी उसके बारे में बातचीत होगा क्योंकि
1: अभी बहुत फ्रूक।
0: हाँ,
1: तो अब आने वाला साल में, बीते हुए साल में तो हम सूरीनाम देश में थे, यानी इस साल में तो हम सूरीनाम में थे, तो यही आशा है जब भगवान चाहेगा तंदुरुस्ती ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, तो अब की होली हम जोर तोर से मनाएंगे, और चौताल ग्रुप भी हम सब स्थिति करेंगे, आप भी हैं, और गंगा भैया है फाहौन चौताल ग्रुप, साथ ही साथ होलका भी जलेंगे, और जनता को अल्फाज कान में हमने डाल दिया कि तैयार रखना।
0: हाँ, पर ठंडा होगा ना
1: भाई, यार बोले जहाँ बसे वहीं सुंदर देशु,
0: और मिर्च और यास पहन ले तो बस
1: सब हो जाएगा,
0: तो कैक डॉय में जलावल जाइए खूब मन तन से। और इसमें थोड़ा से मैं और दार देना चाहता हूँ, कि मेयर दान 40 हज़ार से वो फॉरगिविंग को मांगा जाता है और मिलता है भी सरकार. अभी पिछले साल जो फॉरगिविंग हमने मांग किए तो थोड़ा देर से हो गया था, तो जो फॉरगिविंग देते हैं तो वो कहा कि ये तो हर साल ना मांगता है. कहने के तात्पर्य वो जानते हैं कि ये कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है. अभी हम लोग चला रहे तो अब से अगले साल कुछ ज़्यादा तादाद में वहाँ पर ठंडा में खड़ा होकर के और कुछ व्यवस्था करेंगे कैक डोर में. और ये जो भाई महेंद्र गुदर के रखा हुआ उनकर मामा लोग के, शुरू शुरू में तो ये कार्यक्रम होता था मालीफेल्ट पे, तो फिर उसके बाद में दिया गया कैक डोर, और तभी से 40 साल से ज़्यादा हो गया कैक डोर का जो कार्यक्रम होता है. तो अगले साल खूब जोर
1: से टेन भी हम सब रख सकते हैं.
0: नहीं, टेन तो रखना पड़ेगा क्योंकि टेन का भी व्यवस्था करना पड़ेगा.
1: तो देखो क्या होगा, और सोचते हैं कि अच्छा चलेंगे. और आप भी अब देखो मंदिर में भी बतिया चुका है, और अब देखो नवंबर से हम सब शुरू करेंगे यानी कि ओपनिंग.
0: पर उस और जरूर वो तो नवंबर से शुरू करेंगे.
1: नहीं, नवंबर से शुरू करेंगे.
0: पर आप ये जवाब नहीं देते जॉनी भाई कि आप रामलीला के क्या करा रहे हैं.
1: वो आपके क्षेत्र पंडित जी.
0: नहीं नहीं, हम लोग तो काम करना चाहते हैं क्योंकि वो एक ऐसा चीज है जहां पर आप जो उसमें हाथ धर देंगे तो वो हो जाएगा.
1: भाई संजय, ये रामलीला जो है जरूर चलाना चाहिए, लेकिन काम बहुत बड़ा है, उसमें एक दो आदमी का संयोग से नहीं हो पाएगा. अगर ये बड़ा हम करना चाहते हैं जैसे सूरीनाम में लोग करते हैं, फेल्ट पे करना चाहते हैं, या कोई बड़ा साल में करना चाहते हैं, बड़का हॉल में, तब ये बात जानो कि पूरा हॉलैंड के लोग आएंगे, ओनाक्सी सिर्फ दनहाक के लोग आएंगे. आप करते हैं आपको थिएटर भर जाते हैं, लेकिन जब और बड़ा करेंगे, दो हफ्ता चलेंगे, शुक्र शनिचर रतवार और हर चोमर में करना पड़ेगा. कारण कि जब बाहर आप रामलीला करेंगे जैसे सूरीनाम में या भारत देश में लोग करते हैं, तो गर्मी चाहिए, फैल चाहिए, कपड़ा चाहिए, डेकोरासी चाहिए, काम बड़ा. ओम दिल अलमाल तेरे अली शेर मुँह तो खुद स्टीफ और खालिस्तान से पाकिस्तान, यानी कि आप जानते हैं काम बांटना पड़ेगा. काम नहीं बांटेगा तो काम नहीं होगा. अल अफदीलिंग मुचिया फरदील, कि तुम्हारा क्षेत्र, ये तुम्हारा है. तो 10 लोग को आप जब काम बांट देना तो काम हल्का हो जाएगा. एक दो आदमी हो फरसों अंदर फरदील, तब हो पाएगा भाई. और जो सी आदमी चाहिए, ना कि जैसे 7 बजे स्प्रा करे तो 9 बजे आए, नहीं में करे, आप तो जानते हैं वो लोग भी होता है. तो ये सब बांध बहुत लंबा है, बड़ा है भाई. इसके बारे में जो अगर करना है तो मिलजुल के हो सकता है, कौन नहीं हो सकता. जब भगवान चाहते हैं, जनता के आशीर्वाद है, लोग चाहते तो हो सकता है, लेकिन इसका और खानी सासी जबर होना चाहिए.
0: जरूर और खानी सासी जबर होना चाहिए, बगैर और खानी सासी कुछ नहीं हो पाता. पर छोटा सा, छोटे मुंह बड़े बात, छोटा सा एक ही व्यक्ति और शुरू किया तो 8,000 लोग को अमारों में धल लिया. तो कहने के तात्पर्य यह है, हम लोग का अक्तिफिताई था जो मिलन होता है साल में सैन इन द मोय पेरियोद, और जरूर शायद हम लोगन जो नवरात्रि होना चाहिए, रामलीला होना चाहिए दूसरा नवरात्रि से पहले, पर वो ठंडा समय है पब्लिक, क्योंकि देखा जाए कि ब्रसल, बेल्जिया, इंग्लैंड, डॉयचलैंड, यहाँ भी हमारे हिंदुत्व है,
1: बहुत
0: एम्बेसी से जुड़े हुए हैं. और अगर जो हम लोगों ने वो मोई प्रोखामा लेकर एम्बेसी के पास जाए तो वो लोग हम लोग के मदद करने के लिए तैयार है.
1: ठीक है,
0: पर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हनुमान बनकर सब पार करा रहे. अब वो मैं हॉलैंड में तो नहीं देख रहा हूँ कोई और के.
1: नहीं, ये बात नहीं है भाई संजय, बहुत लोग है, आप भी तो है, कितने कितने प्रोग्राम करके
0: चाहिए। देखो कहने के तात्पर ये है, हम लोग यहाँ बैठ करके बात कर लेते हैं, पर बात करने से नहीं, ये मुद इक्वालिटी तो है भाई। ये जैसे कि अभी आपने कहा रिसफेल वर्क, और चलो 9 दिन के ना सही, हम तो 45 मिनट वाला, और वो ही 45 मिनट वाला हम लोग के चाहिए 5 मिनट में अफरौंद करेंगे, मैंने बोला 5 तक 10 तक मिनट में, क्योंकि यहाँ जो कार्यक्रम बनाते हैं गोरे लोग, तो वो लोग अपना प्लानिंग बहुत स्ट्रक पकड़ते हैं। हमारा प्रोग्राम जो 45 मिनट के है, तो उसे हमें 30 मिनट में प्रेजेंटेयर करना है, प्रभाव भी पड़ना चाहिए ना, प्रभाव हम जल्दी जल्दी आकर के काम करेगा तब प्रभाव नहीं पड़ेगा,
1: आदमी समझ नहीं पाएंगे
0: कुछ, और प्रभाव होना, प्रभाव तो डालना है, वही तो संदेश है हमारा, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पर हमें उसका मतलब नहीं वो हमें समय नहीं दे रहा तो हम ना करूं, हमें तो आगे बढ़ना है,
1: सही बात,
0: क्योंकि हम है आज है, पता नहीं कब रहेंगे, करना
1: कल तो किसने देखा,
0: कल
1: है?
0: किसने देखा है
1: भाई संजय, क्वाट फोर हो गया है 7 बजने में,
0: क्वाट फोर हो गया है 7 बजने
1: में, 1 घंटा हमने 3 बजे आया, कुछ लोग कुछ सुना दे, कुछ
0: एक गीत चला देते हैं।

मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। दोस्तों सुनने वालों, अभी हम भाई जॉनी जी के साथ कुछ संदेश को रखे और देखा जाए कि रामलीला जो हॉलैंड में होने वाले है और अत्यंत सुंदर है जो कि हम लोग कोशिश करने को जा रहे हैं। कोशिश भी ये है कि फाहुन भी अपने ओर से जो रामलीला शायद 9 दिन ना सही पर 2-3 दिन के लिए भी कुछ और लिखा जाए और हम लोग भी प्रस्तुत कर सके। और भी गीतों जो हमारे प्लेयर पे रखे हुए हैं, देखते हैं कौन सा गीत इस बार हमारे कंप्यूटर ने ट्यून करके रखे हैं।

0: सुन वालो, और यहाँ पर हमारे जो कुलेखा साथी सीतू दत्वा तो चमके है भाई यूसुफ जी, जो अपना कार्यक्रम के लिए लोगन भाई तनी से 8 बजे से आप लोग के कार्यक्रम हम लोग के थोड़ा अवसर छोड़ देवल करो, कुछ सुना दो अपने लॉय सरास के कि अभी क्या लेकर आने वाले हैं आप सब।
1: जैसा सबको के मालूम है कि हर सोमवार के हम लोग 8 बजे से 10 बजे रात तक गीत गजल कर रहा हम भाई गंगा।
0: और सोमवार के हिंदुस्तानी में कैसे बोला जाए?
1: रविवार।
0: दोस्तों सुनने वालों, हम लोग एक दूसरे के देख लेते हैं तो बस इतना मगन हो जाते हैं और इतना खुश हो जाते हैं। अभी कार्यक्रम जो कि अब बेल प्रोग्रामा होते हैं ना आप लोग का, अब बेल प्रोग्रामा जो, हाँ अब बेल प्रोग्रामा होगा। और भाई यूसुफ जी जो आ गया है अभी तैयारी में लगे हुए हैं, मिक्रोफोन लेने वाले हैं।

0: भाई यूसुफ जी, हम लोग अपना कार्यक्रम के और जो हम लोग के खदेलता जो हम लोग कुछ कह रहे थे यहाँ से समाप्ति के सीमा पे आकर पहुँचे हैं। पर आज रात्रि में कोई ख़ास गीत है, हमने देखा एक पर्चा कि आजकल अमिताभ बच्चन का गीत को ज़्यादा चलाया जाता है, ऐसा क्यों?
1: वजह हमने यानी क्या है भाई?
0: पर तेईमा उसे धरा गया,
1: हम लोग
0: ओ खून लगातार रहेगा।
1: सब कोई बैल करी ना उसे चॉइस हम लोग के है और आदमी लोग बैल करे, हम लोग सबके गाना ड्राई कर देगा
0: ऐसा। तो दोस्तों सुनने वालों, यहाँ तक हमने आपके साथ सहयोग दिए, आशा ये है कि आप सुनते रहना। यूसुफ जी और गंगा जी का कार्यक्रम अभी स्टार्ट होने वाले है। सभी को नमस्कार, जय गोविंद।

सुनने वालों, मैं संजय आपके साथ जुड़े हुए और ये दावा के साथ कह रहा हूं कि आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे।

अगर आपका दिन एक शुभ दिन हो, यही आशा लेकर हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जुड़ गए हैं।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुनाह है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी, ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यश में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं। तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। एन हेले फ्रेगदग एन गेलुकिगे दाग टूगेवेंस्ड।

जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज किले इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों का सेवा में सादर सा प्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है www.faunfm.nl पर, वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। घड़ी पर देखा जाए तो 8 का वक्त है। जी हाँ, 8 का वक्त है, आखिर क्लॉक स्लॉक। अब ये कार्यक्रम देनहाग शहर से प्रसारित हो रहा है। जो बीमार लाचार है, तंदुरुस्ती दुआ की प्रार्थना है। जिनके घर में कोई शादी विवाह, कोई भी उत्सव हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश है। मुझसे पहले आप कार्यक्रम सुन रहे थे हमारे सहयोगियों द्वारा। यहाँ से मैं हूँ आपका सेवक गंगा और रहूँगा करीबन 10 बजे तक। मेरा साथ दे रहा है भैया यौ साहब, जो मेरे सामने बैठा हुआ है। अभी उनकी आवाज़ आप सुनोगे ज़रूर। सोंदा खाफत है यानि रविवार है और 31 तारीख मई है। ये महीना फिर गया। 12 बजे रात्रि से 1 जून हो जाएगा। आप सबका हृदय से स्वागत है। उम्मीद है कार्यक्रम आप सुन रहे होंगे, और नहीं सुन रहे होंगे तो अपने हिती प्रेमी जान पहचान ग्राम निवासी से बता देना परिवार से कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इस वक्त तत्पर है और भैया यू सब भी यहाँ बैठा हुआ है और मैं भी बैठा हुआ हूँ। और तो आप चून कर सकते हैं www.faunfm.nl पर, या तो वीफी रेडियो या तो इंटरनेट रेडियो पर। जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, आपका हृदय से स्वागत है। अपने तरफ से, यूसेफ की तरफ से, अपने सहयोगियों की तरफ से, और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के डायरेक्टर की तरफ से। तो गीत गजल के कार्यक्रम यहाँ से हम आरंभ करने जा रहे हैं। तार का नंबर अभी से आपको दे देते हैं, 9 से 5 तक 3 5 7 तक 2 2 तक 7 4 तक, या तो 9 से 5 तक 3 2 7 तक 2 तक 7 तक। तार ढूंढ लीजिए, एक पेन ले लीजिए, कागज पर लिख डालिए और गीत गजल के कार्यक्रम में आप भाग ले सकते हैं। ऐसा ना हो, क्योंकि कभी कभी होता है लोग शुरू में तार नहीं करते हैं, लेकिन जब 20 मिनट रह जाता कार्यक्रम समाप्त करने में तो बहुत सारे लोग तार करते हैं, तो दिक्कत होती है, समय नहीं रह जाता है। तो आपसे निवेदन है, अगर आप तार करना चाहें तो अभी से कर सकते हैं। एक तार इस वक्त बसैत है और दूसरा अभी फ्री है, तो आप तार कीजिए। इस वक्त बसैत है 2 तक 7 फेर तक, और खाली है 2 तक 7 सेकंड। तो लीजिए, पहला सिलेक्शन मैं पेश कर रहा हूँ इस तरह से। लता जी आपको सुना रही है फिल्म पतिता में से निकली द्री फेफ तक का ये गीत है। बहुत पुरानी नहीं है और शायद आपको साल पुराना लग रहा होगा। तो लता जी की आवाज़ का ये गीत आप सुनिए, क्योंकि इस गीत से आप अवश्य वाकिफ होंगे।

0: लता जी आपको सुनाए हैं सोंदाख 31 मार्च के कार्यक्रम, सॉरी मई 31 मई के कार्यक्रम में। और ये गीत चलाने के दिन ड्रीम फेफ का ये गीत फिल्म पतिता में से निकाले हैं और हम आपको सुनाए हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा शंकर जय किशन के साज पर, जहाँ तक मेरा ख्याल है। जी नहीं भैया यूसुफ अपनी आवाज़ पहले सुना दे भाई। अच्छा भैया यूसुफ अपनी आवाज़ सुना दो, कैसे समाचार हैं?
1: बस सब चीज़ ठीक ठाक है भाई।
0: कौन दिन तो बड़ा बरखा बरस ही यार, कैसे है? बड़ा जबर बरखा, हमके डर लगा था ताके एक बार वहाँ कितना जोर बरसे, खाली सुनत रहे। हाँ बहुत जोर से बरसल, गर्जल है, टड़पल है, जैसे बाघ टड़पल है मेरे व्यूर्थ में।
1: ये भाव गर्जत रहा
0: ना,
1: ये मंत्र भागी घरे में।
0: हाँ नहीं
1: नहीं इधर ही होता है एंड मैं से नॉर्मल बेलीली मसाल वन वो हैव अ बैलेंस नो द फी पार वेल बेल मास दर्फ नहीं तो बेल व्हाट द रेंज इज वे टेक्निक बेल एंड देन हम लोग तुलक के तनी समार लबे हैं बोल बतिया के
0: एर्स्ट के मुतख द एर्स्ट एन ब्रेकर साइन
1: फील फाइव मैन से हैव अ नेट हैप या वो लॉयस्टर मार वो खानी बेल व्हाट इज द रेंज दे विल वेट
0: Ja, inderdaad. Nee, dat is een goede vraag. Kan je niet naar bel krijgen? Maar zoenen we niet wel, Joost?
1: Ja, maar ik heb ook al eens voorbeurig gegeven, reiswijk gegeven, zoetermeer gegeven.
0: Maar ze hebben een vrees. Nou, mag je bel krijgen. Doe je schok maar een keer bel krijgen.
1: Ik heb ook al eens bel krijgen, dan ik had wel een generaal restaurant.
0: Hey Joost, dank je wel. Ja. Dus dit was bijna Jozef. बता दिए हैं कि आप तार कर सकते हैं 0735 या तो 0735 जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई लाइन पर है। फाउनिस्तानी रेडियो खुदनाफंद सीला कैसे रही सीला?
2: या खुद और भाई खत खुद
0: सब कुछ मोई
2: या
0: ओक मैथ इपन बुरख
2: या और खत प्रीमा
0: मोई सीला
2: या
0: कुछ धल्ले
2: दुईगो छोटी छोटी
0: अरे ये तो बड़ा मोई है वैसा बनी उतना बोल
2: या द अर्ल इज वेस मार द मिस वेट वर हैड ब्रोट ले
0: नहीं दैट इज हु ये इनदरदात
2: या
0: एंड
2: नोख एन एंड द अदर
0: एन
2: वोगल सोंदर नेस ब्लेव ऑलवेज ऑफ सुक नार एन टाइस
0: दैट इज इनदरदात सो क्लॉक हेलमाल गलेक नौ दत्त से खुया लिख लिख सीला तू हरदम ना बोले बाकी जो बोले है एकदम ये राग प्रसिद्ध सिंधे रोज लिख के सब धल्ले रही है एन्ना दरी मान दो मुझे दत्वेर है रहा ला
2: इस खुद
0: या द सोस में सेक बखेन बैठ बखेन
2: या इस खुद भाई सालिक से एक दुनिया
0: ओ क्या मफ़ोंस में ही फ़ोंस में ही बे ये बेने कोर्ट यार क्लॉप्ट दत
2: या
0: एंड व्हेन इयर इज दत
2: 3 juni
0: या ओ तो तू हमार स्टेर बिल थे इंद्रदात हाँ क्लॉप्ड तू हमार स्टेर बिल थे एंड व्हाट
2: लिफ मैन से है भाई
0: सॉरी
2: सेक्स लिफ मैन से है
0: से सही है लिफ मैन से या मार स्टेक है नितान
2: या क्लॉप्ड हेल माउ
0: दा खान से ओवर हिन रोये
2: या दैट इज व्हाई
0: से खान नित मकलक ओवर हिन रोये
2: या
0: मार जे चल गए तो चल गए जैसे चूंटा के मान तो चूंटा के मान जो तो के चौंक दे ले देन हैव बीन प्रॉब्लम
2: या या
0: अंदर सेंस रस तक
2: यस
0: एंड द हैव बीन अ कोर्ट ऑफ वैकेंसी हम यहां पोर्ट पे ताकिला
2: मा कहां बैठे नी तोर भाई
0: ओ नहीं दत मुझे ओग नहीं सख मत चोरवन भी सुने तो
2: ना जाने कहां जाबे
0: ओ एते से फर्रा सिंह
2: या
0: ना मोय सीला एक वेंजो Heel veel plezier op je vakantie straks.
2: Ja,
0: en van harte gefeliciteerd woensdag.

0: थैंक यू बेल भाई।
1: हाँ मसीला, अब बताओ कौन गाना से मांगत रही है तू अपने की फर्रास करे।
0: अतिशा फिल्म मेरे अरमान मेरे सपने, आंखें हमारे हूँ सपने तुम्हारे।
1: सॉरी सॉरी, एक दाएं फिर, एक दाएं यार, हम नखस के
0: नखस के
1: या आहा का
0: गनवा भाई।
1: हाँ हाँ हाँ गनवा।
0: आंखें हमारे हो सपने तुम्हारे हो,
1: हमारे हो सपने तुम्हारे ना,
0: सपने तुम्हारे हो।
1: रेखल उपेंद्र
0: या
1: नहीं प्रिया
0: भाई,
1: वेलक फिल्म चाहिए सीला।
0: फिल्म मेरे अरमान मेरे सपने,
1: मेरे अरमान मेरे सपने, एम आर एम सपने तो पा जावे।
0: Yeah,
1: thank you well. Heel veel luisterplezier.
0: U ook een fijne uitzending en tot de volgende keer.
1: Sila, dank je wel. Fijne avond.
0: Ja hoor, bye. U ook. Dag, bye.
1: Je is Sila ji, Ipenburg ke rehne wali. Sila ji, yani maashuka. Sila ji ne taar ki. Haan, chali, line pe koi hai. Faan Hindustani Radio, khudanavant.
2: Assalamu alaikum, ram ram aur namaskar, sastriyakar.
1: वालेकुम अस्सलाम भैया, नमस्कार, कैसे समाचार है?
2: अरे धीरे धीरे, कैसे आपके और सब सभी खैरियत के?
1: बस सब कुछ डोले धीरे धीरे ऊपर वाला के दया से। सुबह होती है, शाम होता है, रात होती है, फिर सुबह होता है,
2: फिर सुबह होती है।
1: तो सवेरे जागी रहे तो ताकि लो हम तुम देखे ओ ना, हमारा ही प्लेटफॉर्म तो है, दूसरा प्लेटफॉर्म ना है। नहीं तभी देखिए कोनो एगो एगो तलवार लेके खड़ा है। जान जावे कि हम ना बाटी अब।
2: हाँ,
1: अपने आदर्श
2: बात माँ भी हो सके दूसरा। अच्छा भाई, हो सके तो के सपना में बुलाएगा, बोली अब तो वक्त नक चाहे
1: तो चाहे आधा स्केर कर ले रही है जाए पाई। तू ना बोल सके एक हम दी कॉफी मार हाल खुद रहोगे एक वेलम और माँ के ना बोल सके।
2: वासी तू बोलिए हम कॉफी आप पे बोल सके तो वक्त कम रहेगा, तू कुछ शराब पी सके
1: नहीं
2: तो चाहिए साथे चले के खलाई तक को जवाब तू दे सके।
1: तब पहुंचब तो देखब का करी ले तो हम बोलब कहम को फुरकू बुला ले।
2: अच्छा,
1: हमार मेसी अबे ना आफरा
2: ता ओही से ओही से बोल जब तक बोलीला
1: हिया हम लोग बतियाइल बगे जे हुआ पहुंचे तो बाजा बंद हो जाई।
2: बाजा पर वो जारी ला वो जारा मला खाली उना खाली वहां बाजा बंद।
1: हां,
2: वासी तो पर कब्र में भी वहां भी बाजा बंद रहेगा भी। अच्छा,
1: हां हुआ ये सब हवा निकल जाई, टायर पंचर हो जाई।
2: वो तो सही है
1: भैया मोहम्मद, बताओ कौन जी रख ले
2: एगो पहली। मेरे दिल का दर्द किसी ने देखा है, हम तो मरता सिर्फ खुदा ने देखा, देखना है। मैं तन्हाई में बैठ कर अस्कर रोते हूँ, लोग ने तो सिर्फ मुझे मुस्कुराते देखा है।
1: बहुत बहुत हेल मोई
2: शुक्रिया,
1: बहुत अच्छा बात है। अच्छा भैया मोहम्मद, अब बताओ कौन गाना मांगत रहे तू?
2: एगो गाना मैला अब से एगो लता के सुने। हम लोग के बचपन के याद होएगा
1: ना, खेलवार कर हम सोच के लता वो तो
2: ना उच गोरो मैला दे वो फिल्म का नाम है आशीर्वाद।
1: हां,
2: 1968 के और गीत हैगा एक था बचपन।
1: एक था
2: बचपन, लता गाय से
1: ईसाई तो हम ना हर कैन का इलावा की बीमार अब तो पाई आप।
2: हाँ, कोई बात नहींगा मां मोई गाना है, कभी कभी सब गोटम मोएगा सुने के वास्ते हम लोग बरका भाती। मैं कभी कभी सब नोरे को हम लोग छोटा रही ली, अब हम लोग बरका बोली तो हम लोग के बचपन के याद हो गए,
1: पुरानी याद ताजा।
2: हाँ,
1: वेल फिल्म सही इमरुल
2: आशीर्वाद।
1: अशोक कुमार की फिल्म वाना है,
2: हम सोचिला अशोक के, हम सोचिला।
1: हाँ, अशोक कुमार की फिल्म रहा आशीर्वाद, स्वार्थवेद या एक देंग दरत
2: मामा ये गनों का हम माकल के बाद पे ना सुनीला।
1: नहीं दत्कान मत, हम ईसाई थे हमारे मुड़ी में ना है।
2: अरे बाप रे बाप।
1: हाँ, अबे जब ईफ सुन तो जान जावे।
2: हाँ, तो तू खलाई खोश में ये।
1: हाँ, एना फल हम लिख ले लिए।
2: हाँ, सब सुनने वाले के लिए, सब सुनने वाले को नतीलक तुलक के भी लिए। अच्छा,
1: थैंक यू वेल।
2: ओके
1: एवरी वन के वेल फैन आफ थे
2: फिर सब सब राम राम और जय सियाराम
1: जय सियाराम भैया
2: फैन आफ
1: शुभ रात्रि
2: एक शुभ रात्रि
1: ये था जनाब मोहम्मद दनहा के रहने वाला इस वक्त लाइन फ्री है आप तार कर सकते हैं 07 3 5 6 तक 22 तक 7 4 तक तो जिस समय आप कोशिश कर रहे होंगे तार करने के लिए तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं ये प्यारा नंबर इस तरह से माइटी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस

0: आंखों में रंग क्यों लाया लता जी। और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत, और हमने पेश की ओ फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए देखते हैं कोई लाइन पर है या थोड़ा इंतज़ार कर लूँ। भैया यूसुफ थोड़ी इंतज़ार करें या ले लूँ। अच्छा एक मिनट, जहाँ तक मैं खैरा खैर कोई लाइन पर फ़ोन हिंदुस्तानी रेडियो खुदा हाफ़िज़। मैं गंगा
1: भाई। राम राम।
0: राम राम, जय सिया राम। दत इस मुफरो तेल मस स्टेल
1: तनी फरवारम रहे है तो
0: नहीं। क्लॉप क्लॉप क्लॉप
1: जे रेडियो वाद लटो अमर
0: है। ओ नहीं इंद्रदा, तो वंत दी रेडियो इस देन के 15 16 मिनट लेटर।
1: ओ
0: या ओए के तीन टेलीफोन में से बतियाए दन से मकलक माझे टेलीफोन वास बती है एंते खले करते है तलसे ना दिला दे रेडियो लाइसर दन 16 सेकंड ऑनवेयर लेटर। मा हु इज इट मैट मुफरो तेल मा
1: हमार या है दम
0: तब
1: मुझे साइड
0: यानी होंदर जगह बोले हैं सब।
1: अब इवेर में ना मोई जाए तब ना हो सके तो
0: वही तो नहीं प्रेसीज मुफरों तेल मा।
1: हाँ
0: कुछ कहा हो तो वो धल्ले हैं
1: वो बतिया ना पूछ मार।
0: अच्छा ठीक है। अच्छा सुन हम यूनी के बात पूछब न करे कि अनुमान देते तो दो तीन को धल्ले रहिए तो
1: अब हम बैठ के सोची ला कौन सी हम एकलक फुटसेन करी कि बाकी वेरकले के का वो पुराना वाला रहा आप खाली भूलल बाटी मा तू सच्चे बोले सोच अब।
0: हां जो तेरे से को का तेरे जरूर इन द पान फौरन काटत के गुनगुनाई है तुम देख के प्लस प्लस से लगा जाई
1: जाम जाम पकाए ले तो हमने सोच मारे कि बर्तनवा बेधरल तो वे की।
0: ओ अच्छा वो चाहे हो क्या। हां
1: सब होए भाई सब होए सब होए।
0: हाँ दैट इज वायर
1: उतने उतने मौज में जितना आगे आवे सब चले दे
0: प्रसीस मुवरो तेलमा मैं तो वेलक लीड कर भाई फनाफ दी
1: जा जा जा मेरे बचपन कहीं जाके छुप ना जा
0: जा जा मेरे बचपन।
1: हाँ
0: जा जा जा ग्रीमाल मेरे बचपन बचपन कहीं जाके छुप ना जा।
1: ठीक है
0: रिया प्रेसिस एंड व्हाट न्यूज व्हाट तुफालक ने व्हाट वे तुफालक ने वेट
1: एक्चुअली तो सब चीज जानल जा फनल कार
0: या दैट इज वेल वा
1: ना पॉलिटिक सुनीला ना टेफे ताकीला।
0: हां
1: हमार न्यूज वा बहुत छोटा है साइज।
0: ओ अच्छा अच्छा लम्मा हो जाए लम्मा हो जाए तो इन इन मान कि ऑन द लाइन है तो ए फॉर 10 सेकंड और पकड़ ले।
1: हां
0: मैं एक्स कोलेसा कोलेगा भैया प्रकाश रामधनी।
1: हां
0: दी एप में नेट एंड दी गिफ्ट ऑन दैट सुमन कल्याणपुर इज ओवरलीड वंदाग।
1: ओ ओ या मैं वाज बोल लका आउट है
0: 89 यार।
1: हां
0: अदर सम प्रैक्टिकल लिस्ट है
1: वेट इज दैट एक्चुअली नीट इज मेयर वेज दैट है के पुराना जे है के ना है अब
0: नहीं दैट इज वार
1: मादी ए साइड के एक्टर्स एंड एक्ट्रेस हम एक को ना नाम जान पाए रहे और ढाव कर पाए रहे।
0: ओ याद तो हो एक दत ले सक नेट या एक मतलब
1: माया है इस तो मोये ले स्टेट गehad
0: 89 यार
1: 89 is toch geweldig
0: het is een prachtige leeftijd
1: ja en Rafi en Mukesh
0: die zijn heel jong overleden 59 jaar 58 jaar
1: man nee, maar het is gewoon leuk hoor. Die mensen van vroeger. Ab dheer na rahege hum log ke tijd
0: waar. Volgens mij was zij de laatste Asha Bhosle raha ori.
1: Ah.
0: En dan zijn die ouder niet meer, denk ik.
1: Nee.
0: Joost, volgens mij zijn die ouder niet meer. Nee. Ah. Eeuw laatste raha. Ik denk ze begon ergens in 50 zoveel. Die is er ook niet meer.
1: Achcha, ek din hamulon ke aai
0: to. Maar ze heeft heel veel voor ons achtergelaten hoor.
1: Ja, man. हम जहाँ बैठे रहे पुराना गाना ना है तो हम बता दे ला रेडियो
0: मन जल लता मंगेशकर से और रफी से हम बीच दलित खुद खिंग से तुम को हम से इन इट फेल्ट
1: या
0: मा खुद मुफरो तेलमा दंक यू वेल
1: आलर बेस्ट है एंड फेल गसेलिगहेड
0: या एक वेंस यू ओक एन फाइन अवेंट हेल फील लुइस्टर प्लेजर एंड तो द फॉर खुद केयर
1: धन्यवाद भैया जी
0: धन्यवाद लाख ब्रोकर ये थी देन हाके रहने वाले तेलमा जी। तो शीला जी ने तार कर चुका है, भैया मोहम्मद ने तार की है और तेलमा जी ने भी तार की है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद पेश किया जा रहा है। चलिए एक नंबर हम चुला सुनाते हैं आपको रफ़ी साहब की। 5 मिनट बाकी है 8:30 बजने में, 5 मिनट 4 हल्फ नहीं, सुन लीजिए ये शानदार गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में, ज़बरदस्त गाना है।

0: रफ़ी साहब की आवाज़ में तकदीर के कलम से कोई बच न पाएगा, पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा। आपने सुने रफ़ी साहब की आवाज़ में, आपको हम सुनाए हैं, मालिक ने जो लिखा है वो बदल ना पाएगा। ये शानदार गीत फिल्म बेरहम से निकाल कर हम आपको सुनाएं, ओ फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए देखते हैं लाइन पर कोई है, एक मिनट। फोन हिंदुस्तानी रेडियो, खुद नाफंत
1: भैया
0: चांद
1: जा धीरे धीरे भाई
0: तब मोई कैसे फरोख इस्लाम मोई
1: हाँ जा है धीरे धीरे
0: प्रीमा। और कोई नवा हाल
1: इस हाल तो मोई है कैसे बोली क्या है धीरे धीरे
0: नहीं दन
1: वेर अभी मोई ईसाई तो है
0: हाँ बहुत गर्म भी ना बहुत ठंडा सोई फिर परफेक्ट
1: या मत स्मेदा गर्म रे मान
0: हाँ वो दोनों ताऊ के तो तनी से
1: या
0: दलाती अमेजिस स्पोर अख्तर एंड दा नवर कुल
1: या ना तो बताइनो में इने ना अंदर करीला
0: मोई मोई
1: चाहे कुछ कर एक मान
0: मोई तो
1: या
0: भैया चांद बताओ गाना से पहले कुछ धल्ले हैं
1: ना भाई
0: इसको हाँ तो बता रहे हैं अपन सितवार नहीं ये दो दुरुस्त खान या
1: ओ गनवा बताई ना
0: हाँ आप गनवा बता दे बरूर
1: हाँ देखिए तो ख्यालों में किसी के इस तरह होएगा उस फिल्म मुकेश के हैं अब फिल्म बटवारा नहीं घंटी फाइव तक
0: बटवारा अरे लिख ले बरूर
1: अच्छा भाई बहुत धन्यवाद आपके
0: या भैया चांद योग फनार्थ बदांत शुभ रात्रि और फ्रॉक इसला के खुरुता
1: अच्छा भाई
0: टिल नेक्स्ट टाइम
1: दो तक खुरुता तो जो भाई अच्छा राम राम
0: जय श्री राम भैया। ये था श्रीमान रघुनाथ चांद रघुनाथ अल्फानंद रेन के रहने वाला। तो 8:30 बज गया है, तो लीजिए पहला सिलेक्शन जो हमने रखे हैं या पहला गीत हम चलाने वाले हैं वो है इपन बेरुख। चलो माशुका इपन बेरुख में बैठी हुई है शीला जी। माशुका शीला जी ये गीत मांग रही है अपने माशुक के लिए जो मेरे सामने बैठा हुआ है भैया यूसुफ के लिए। शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए चाहे दिन है आँख मूंद लेना अंधियारा हो जाएगा तो रात ही में गिनती रहेगा। आप सबको एक शुभ रात्रि पेश करते हुए शीला जी की तरफ से यूसुफ के लिए इस तरह से प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ। और हमने निकाले हैं मेरे अरमान मेरे सपने निकतिंद्रिय शस्त्र 1963 का ये गीत नरेंद्र दत्ता के साज पर यानी एन दत्ता के साज पर। लीजिए रफ़ी साहब आशा जी।

दुनिया में जब तक चांद सितारे हो, और ये शानदार गीत मेरे अरमान मेरे सपने में से हमने निकाले हैं। निकित इंद्रिय शस्त्र का ये गीत एन दत्ता के साज पर, यानी 1963 का ये गीत, और आपको हम सुनाए हैं फान हिंदुस्तानी रेडियो के गीत गजल के कार्यक्रम में। और मांगने वाली थी माशूका सीला जी, अपन भी रख के रहने वाली है अपनी माशूक यूसुफ के लिए। शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए सीला जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय आप कोशिश कर रहे होंगे तार करने को, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं ये गीत। इस तरह से है गीता दत्त और मन्ना दे जी। ये गीत बहुत दिन हुए हमने भी नहीं सुने हैं, हो सकता है आप भी नहीं सुने होंगे, और अगर हाल ही में सुने होंगे तो मेरी बदनसीबी है। बहरहाल हम आपको सुनाते हैं फिल्म जग्गा डाकू में से निकाल कर, शायद फिल्म आपने देखे होंगे, बहुत पुरानी फिल्म, ब्लैक एंड वाइट है। गीता दत्त और मन्ना दे जी, गाना का बोल सुनिए।

गीता रॉय जी और मन्ना देवी जी मिलके आपको सुनाए फिल्म जग्गा डाकू में से निकाले हैं ये गीत, हमने पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अभी मैंने कहा कि सुमन कल्याण पूर्जा का स्वर्गवास हो गया है निकन तख्त साल की उम्र में, यानी 89 साल की उम्र में। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, दीराक्षी की तरफ से और सुमन कल्याणपुर जी के सभी चाहने वालों की तरफ से सुमन कल्याणपुर की परिवार जी को हम शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं। बहुत से गाने उन्होंने दिए हैं। सुमन कल्याणपुर का पहले नाम था सुमन हेमादी, ये ढाका के रहने वाली है। बहुत छोटी ही उम्र में ये चला आया बॉम्बे। बॉम्बे में यो स्टेज पर गाते थे और कहीं कोई पब्लिक में, तो इन्हें तलत महमूद साहब ने सुना। तलत महमूद साहब ने इन्हें सुना और उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो तलत साहब ने सुमन कल्याणपुर जी को बॉम्बे के फिल्म इंडस्ट्री में ले गए, म्यूजिक डायरेक्टर से मिलवाए और बहुत से सारे इन्होंने गाने गाए हैं। उनमें से एक हम निकाल रहे हैं निक दिन सचिन शस्त्र का, फिल्म बदतमीज से, शंकर जय किशन के साज पर सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में, जो हमें पता चला है किसी ने मेरे मित्र ऐप की है, तो उस मित्र को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ जो बताएं, क्योंकि मुझे नहीं पता था, आज ही हुआ ये हादसा, कैसे बाद में पता चलेगा। बहरहाल सुमन कल्याणपुर जी की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, उनके सभी सारे फैन की तरफ से, चलिए ये गीत हम आपको सुनाते हैं फिल्म बदतमीज़ में निकते हैं सुमन कल्याणपुर जी।

पहला पहला प्यार है पहला पहला प्यार, ये गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आज सुनने में आया है कि सुमन कल्याणपुर जी का स्वर्गवास हो गया निग्न तख्त साल की उम्र में, यानी 89 साल की उम्र में। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी फैन जो हैं और सभी कार्यकर्ताओं मुझे और सुमन कल्याणपुर जी के जितनी फैन हैं उनके तरफ से सुमन कल्याणपुर जी को आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गाने दिए हैं, हम तो यहाँ आकर बैठ के गीत गज़ल के कार्यक्रम में वरना अपना लिस्ट लेकर आते हैं तो उनके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो कुछ है आपको सुना देते हैं। बहरहाल हमारे सहयोगी जो कल आएंगे आपको अवश्य कुछ न कुछ बताएंगे या कुछ न कुछ सुनाएंगे। जो गीत जो हमने अभी चलाए हैं सुमन कल्याणपुर जी का, पहला पहला प्यार है पहला पहला प्यार, फिल्म बदतमीज़ में से निकाले हैं निगेटिव सस तक का। ये गीत दरअसल में हम उन दिनों बहुत पहली बार सुने थे, रेडियो पे चला होगा लेकिन हमने सुने नहीं थे। लेकिन जब रफ़ी साहब हॉलैंड सुरीनाम में जब आए तो द पारल में उनका शो हुआ और हम लोगों को टिकट नहीं मिला, लेकिन आपको शायद पता होगा द पारल के बगल में द पारल बार था, वहाँ पर बैठकर हम लोग ये शो सुन रहे थे, देख नहीं रहे थे सुन रहे थे गाने। तो उस समय रफ़ी साहब के साथ आई थी मीनू परसोत्तम ये गीत गाए रफ़ी साहब के शो में आकर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तभी से ये गीत मेरे जहन में बस गया। ये गीत हमें बहुत पसंद है, हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये वाक्य हम आपको बता दिए कि रफ़ी साहब के साथ मीनू परसोत्तम जी आए थे और उनका शो हुआ द पारल में, टिकट नहीं मिला, टिकट बाद में फिर मिला लेकिन पहला शो के लिए नहीं मिला था। बहरहाल ये गीत हम चलाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो सुमन कल्याणपुर के स्वर्गवास के उपलक्ष्य पर, जो हमारे मित्र श्रीमा प्रकाश रामधनी ने बताए हैं निघ्न तख्त साल की उम्र में। 12 मिनट 4 नहीं है, जी हाँ 12 मिनट 4 नहीं है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है भैया मोहम्मद के लिए। भैया मोहम्मद के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए ये गीत हम चला रहे हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो गीत गज़ल के कार्यक्रम में। और भैया मोहम्मद ये गीत मांगे सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और हम लोगों के लिए, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के लिए। तो सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से, डायरेक्ट सिलेत की तरफ से भैया मोहम्मद को धन्यवाद देते हुए चलिए ये गीत हम आपको सुना रहे हैं जो भैया मोहम्मद ने मांगे हैं इस तरह से।

0: एक था बचपन लता जी की आवाज़ में, फिल्म आशीर्वाद में से निकाले हैं। अब ये गीत हम लोगों ने पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के गीत गजल के कार्यक्रम में। और ये गीत को मांगने वाला था देनहाके रहने वाला जनाब मोहम्मद। जनाब मोहम्मद ये गीत मांगे हैं सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के लिए, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से। जी हाँ, और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, सुनने वाले की तरफ से जनाब मोहम्मद को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई पेश कर रहे हैं, एक शुभ रात्रि पेश कर रहे हैं। चलिए यहाँ से पेश करते हैं विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़, और फिर न्यूज़ के बाद हम लोग फिर वापस आते हैं। बस हम लोग यूँ गए और यूँ आए।
1: Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio. Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Hari kaam ke liye, har advertency ke liye, maut ke samachar, farmaish ya jo bhi khabar aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735322747। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
0: www.fahonfm.nl पर आप tune हैं या तो वीफी रेडियो या इंटरनेट रेडियो पर। जो लोग चून के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। गीत गजल के कार्यक्रम में आप भाग ले रहे हैं और जिस समय आप कोशिश कर रहे हैं तार करने को, तो लीजिए, देखता है लाइन पर कोई है। वो अभी नहीं, अच्छा हो गया। हाँ हाँ, अच्छा एक मिनट। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुद राहुल
4: बोल दिया।
0: हेलो
5: हेलो
0: हेलो, खुद राहुल
5: भैया
0: मुफरम भैया।
5: या
0: कौन भैया है? फन
5: वक्त हो
0: इधर है
5: फोन
0: फन हो ये। हेलो
5: या हो ये म
0: या एक हो रही हो।
5: ओ
0: मुफरम भैया फन इधर है।
5: या
0: मुफरम भैया का हाल है? हु इज इट?
5: अच्छा अच्छा,
0: यानी एक भैया और बेल करे तो दस दन
5: बच्ची बोले
0: हम बोले एक बेया और बैल कर रहे थे हमसे जी कौन वाला है
5: ओ ओ हां प्रोफेंसी
0: तरह फिर हम बेया आई थी तरह कैसे रहले
5: अच्छा अच्छा रेडी
0: आलस प्रीमा
5: सब सब प्रीमा
0: गटैया फंसे हैं
5: बाहर आ गईली अरे गटैया फंसे लगल
0: अच्छा तो एको कॉफी पी लिए सफा हो जाई
5: हां रात भर जगह अब कॉफी पी ली ना लाती के तब ना सुत पाई
0: ओ नहीं ये या दत प्रॉब्लम है को का फेंदु आज एक लात कॉफी
5: को ला ओके
0: हमार कॉफी में फाइव से सीरीज पी ले तो फिर ना पीला
5: क्लास फिर
0: या
5: नेक्स्ट मॉर्निंग हम खाली एगो पी ले ला क्लाइन
0: कॉफी कॉफी और कॉफी चाय
5: ओके बोले हां
0: मुवरो बेया
5: बेबी के वो बेबी के क्लास है मैं
0: या प्रेसिस
5: मारा या फ्रुकरवाल और मोक बरकवा बरकवा पेला ते मार
0: नी या या गुवेंती लास हो जा
5: हां हां तो या
0: अच्छा मुवरो बेया कुछ कहा हो तो धल्ले
5: अरे बोल तो
0: अच्छा खीर
5: नहीं बात बोल दे तो
0: ना
5: इतना ढेर जाने हम खत बोल दे रहे हो
0: कौन जी बोले
5: इतना ढेर जाने
0: हैं
5: हम खत को बोल दे ना मोई वाला
0: तेरे खत ने कहावत बोल दे बोले कटाड़ पेड़ में मुंह में तेल जाने हैं यानी कटाड़ पे पेड़वे में है सोचे अच्छा मुर्गी कटाड़ बंदी क्या ही बोले
5: हां कटहड़ जाने ला
0: हां जो बाकी जो ना जोन के तरकारियां बनावे जोन के जब खून मुल्की कटहड़ जोन मिटकना है
5: ओ ओ
0: तो ओके खाई खतिन ते इफ चाहिए हाथवा में तेल लगा लेवे के उठिया में नहीं प्लक रख रहे तो
5: ओ उ कटहड़ ना है तो उ कोवा है
0: हां हां कटहड़ कोवा हां तो ओके जे खाइए और कटहड़वा भी जे छिलिए ते चाहिए लगा दे
5: प्लक रख लगा हां
0: तो वे कटहड़ पेड़ में मुंह में तेल
5: या ओ
0: तो ओके खाई से पहले उठिया आप लगा लिए नहीं तो उठिया प्लक हो जाए
5: नहीं मुंह में बंद हो जाए
0: हां देखो ये वो एको कहावत नहीं करके रहा
5: मुंह में प्लक हो जाए
0: हां हां लिपोन प्लक हो जाए तो मुल्की कटे
5: या क्लॉक नहीं ओ मोई वाला
0: अच्छा भैया बताओ कौन गाना मांगत रहे सुने
5: एको जोसेफ के बोले
0: जोसेफ गए वक्त ओ वक्त यूसुफ बोले बचपन के
4: दिन
0: किया दिन थे तो पुराना बचपन के याद आ जाए तो क्यों फ्रॉग गया एंड दैट इज सो द बुदुलिंग से ही करे
5: अब यहां घाम निकल है और यो व्हाट फ्रॉग और तब कभी याद आ जाए तो
0: या दैट इज
5: व्हाई या या चाहे मोरिया में लेके चले के अंदर से खड़ी आउट आउट हो गया तब अगर होवे तो वही चीज वाली है तब तो उसी हो जाइए
0: हां बाकी जो पुराना याद याद करिए तो बहुत मोह लगे है
5: या तो या बचपन के दिन भी एगो गाना
0: है बचपन के दिन भुलाना देना वो भी है
5: हां
0: और ये बचपन के लिए
5: बचपन के दिन क्या दिन थे
0: क्या दिन थे
5: या
0: नाउ प्रस्त फ्रॉम बेया थैंक यू ऑल
5: या
0: और कुछ रहा भी सुंदर
5: ना ना ना ना
0: इसको ना ओके
5: थैंक यू वेल और फाइन आउटस्टैंडिंग
0: या
5: टॉट फॉर
0: हमें यू कैन फाइन आउटस्टैंडिंग हेल फील लाइस्टर प्लेजर एंड टिल नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक
5: यस गुड
0: थैंक यू वेल फ्रॉम बिया
5: या करखना
0: ये थी बिया जी उत्तराखंड बिया जी आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है देन आके रहने वाली तेलमा जी के लिए तेलमा जी शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए देन आके रहने वाली तेलमा जी के लिए और तेलमा जी भी अपने बचपन की कुछ यादें ताज़ा कर रही है और किस तरह से लता जी की ये गीत जी हाँ लता जी की ये गीत सुनकर फिल्म जंगली में से निकाले हैं देन आके रहने वाली तेलमा जी के लिए तेलमा जी ऑल्स टू बिलीव शंकर जय किशन के साथ पर

0: जा जा जा मेरे बचपन, शंकर जय किशन के साथ पर फिल्म जंगली में से निकाल कर लता जी आपको सुनाए और हमने पेश की ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो और ये गीत चला देनहाँ के रहने वाली तेलमा जी के लिए। देनहाँ के रहने वाली तेलमा जी के लिए शुभकामना के साथ तेलमा जी ये गीत पेश हुआ आपके नाम पर। तेलमा जी उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि जिस गीत के जिक्र आपने की वही गीत हम लोगों ने चलाए मिलकर। तेलमा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फाउन हिंदुस्तानी किया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुदनाफंत भैया
1: in het
0: kwadraat. Bea uit Den Haag.
1: Ham op een SB, ham juist elke zondag in India takila. Or tulonke taki, tulonke sunila, dan bula jij la takike. Als ham aankali, maar mijn aandacht is ook niet daar, maar zaterdag is herhaling, ga ik herhaling kijken.
0: No,
1: ik vind het zo mooi. Als je zo'n dag de kawe hè, dan toe kan je je India te wana pomoch bij je.
0: Na kilo, kahe na pomoch babe?
1: Omdat het heel, heel India sub fietsen kregen.
0: Oh, fietsen.
1: Ze zijn aan het fietsen toch? Er zijn een hele groep mensen, India, Nederlandse, hoe ze op wel maar fietsen kunnen.
0: Oh, fietsen kregen.
1: हाँ फिट करे हैं
0: ओ नट हम ना हम दुई बसी गिरी दुई व्हील पर ना फिट कर पावे
1: हाँ दुई व्हील पर तो देखिए कैसे फिट हो गए उस सब के चाहे अपने से अपन कमरा खोजे के ईसाई खाना पीना पाए हैं खाना पीना खाते हैं सब बैठ के खा नीचे जमीन पर बकरा दुई को बैठ के खाते हैं
0: ओके
1: अते सो लोग दी पोखरामा सातरा हम एनी रे सर हाले मुचे काई का
0: ओके सालिक दोन
1: हां सातरा एनी रे सर हाले मुचे काई
0: इसको भैया बताओ कोनो गीत गजल में कुछ रख ले फोरदा चेन ली दोर खेफ
1: वो ना एक हैप एन एन मोपिया
0: आई वन
1: लाफ ऑफ एन मोपिया
0: बोल बोल बोल
1: मवारिस द मोपिया इफ काई को हो
0: देखो पिछवा दर तो
1: करो हमने मोपिया ना मिले हैं ओ हां संस्कृत बोलना सिखा संस्कृत बोलना सीखिए और अपनी बीवी को भी सिखाइए दो पप्पा चस रहा तो वो दोनों अपने में से बतिया हैं
0: ओके
1: सम्मोप संस्कृत बोलना सीखिए और अपनी बीवी को भी सिखाइए ताकि आपस में झगड़े हो तो पड़ोसियों को लगे के घर में हवन चल रहा है
0: हाँ मुझे संस्कृत तो ना जानी है
1: तो सोचिए हवन थोड़ा सुनी का होवे हैं
0: या प्रसिस
1: तो इस तो
0: दैट इज ओके
1: एंड अ क्लाइंट टू हैप्पी किन
0: हां फिर मारफ
1: अपनी खुशी दूसरे में मत ढूंढो अपनी खुशी दूसरे में मत ढूंढो तुम्हारी खुशी आपके पास है या और हम लोग अपन खुशी दूसरे में खोजिला तो वेल सबके खुशी भगवान अपन दे से तो
0: सबके पठाई से कोई
1: हाँ, नसीब सब कोई के खुशी सब कुछ दे के सब कुछ दे के पठाई भगवान मगर फिर भी हम लोग भटकीला इधर उधर खोजिला तो वेल वे तो आलस बे ऑन से हैब
0: नहीं दर जिंदगी
1: एक लोग इसे सो मैं या खुद नहीं इधर इनका नत फेंडर दस दिखा सुकम तो इसे तो एक

0: या खूबसूरत कोई नहीं होता, खूबसूरत कोई नहीं होता, ये आंखें जिसे पसंद कर लेता है वही खूबसूरत लगने लगता है।
1: वाह क्या बात है,
0: आंखें दिब पाव
1: ऑफ
0: योर खूबसूरत बैन ऑफ नीड
1: en dan dringt het door aan je, in je hersenen.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Even kijken. En dan heb ik nog iets. Oké. Udaas ho kabhi to meri hasi maang lena.
1: Aha.
0: Udaas ho kabhi to meri hasi maang lena. Gam ho to khushi maang lena.
1: Ah, kya baat hai.
0: रब आपको लंबी उम्र दे, एक पल भी कम पड़े तो मेरी जिंदगी मांग लेना।
1: हाँ, शाबाश, हेल मोई।
0: और
1: धल्ले।
0: इस काय को और अपने नौ मेर हाथ, दिस इस एन मूलक। ना गवाही ना मांग मुझसे कि मोहब्बत में कितना चाहते हैं, अरे वो खुदा ही परेशान है हमसे कि हर दुआ में तुम्हें क्यों मांगते हैं।
1: हेल मोई
0: अजस मोईलक जस मोईलक तो
1: नहीं है, ये है आप तो खुद फरवर्ड नहीं प्रसी हम ना ना दे किलो में कि कुछ ना ठीक है हेल खुद
0: इंक्लाइना बचपन देखे कितनों के साथ खेले हो, कितनों के साथ खेले हो, अफसोस फिर भी अकेले हो, अब किसके साथ खेल खोई
1: वही तो
0: बचपन टाइट यंग टाइट मैं दीख स्पेल अरे उधर भी फुटबॉल बेतलक खेले हैं
1: या
0: Maar toch komt een dag dat je toch alleen bent. Heb je niemand om mee te spelen.
1: En dan heb je bepaalde herinneringen.
0: Kunt je bollen?
1: Dan heb je bepaalde herinneringen.
0: Ja, zo is het. Ja, nee, klopt, klopt.
1: Heel goed, Bea.
0: Ja, zo gaat het.
1: Bea, ab, betaal, kam aan het rillen zoenen aans.
0: Oh ja, mijn liedje, mijn liedje. En je weet, ik heb altijd...
1: Toen laatste je, kan je maar.
0: Liedje,
1: Ik pas op een gira zwak, pas maar.
0: Jol liedje, hem naar zoenen. Even kijken. Van film Samdil... Wie speelt erin? Dilip Kumar. Dilip Kumar ook kooi. Een liedje van Lata en Talat. Van 1952. Dil me sama gaye sajan. Dil me sama gaye
1: sajan.
0: Volgens mij was het goed. Lata en Talat. Oh, liedje vindt leuk. Daar gaan we ook door Sunila.
1: Nee, prima.
0: Ja.
1: Nee, goed dan. Film Sangdil 1952. Lata en Talat.
0: Ja.
1: Dil me sama gaye sajan.
0: Ja.
1: Regel. Oké, Bea, dank je wel.
0: Ja, en ik wens jullie ook een hele fijne avond. Oh ja, Thelma, ik heb er lang niet gesproken. Ik wil langs deze haar de groeten doen. Thelma, de groetjes.
1: Nou, Thelma heeft het zeker gehoord.
0: Ja, zeker, zeker. En ze weet dat ik Bea gedraaid ben. Ik heb er een paar keer gesproken.
1: Oh,
0: nou, iedereen de groeten nu, iedereen de groeten, iedereen veel luisterplezier.
1: Ja.
0: Tot de volgende keer weer.
1: Bea, dankjewel namens van Alimistani Radio. Heel veel luisterplezier en
0: ja,
1: tot
0: zeker,
1: de volgende keer.
0: Zeker.
1: Dag Bea.
0: Ja, is goed, dag, Bea, dag.
1: ये थी बेया जी देन हाँ के रहने वाली। तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, घड़ी पे देखो हाँ, चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। मेरे सामने बैठा हुआ एक माशूक तो इपन बेरो के रहने वाला है और वो माशूक एक गीत मांग रहा है अपने माशूका के लिए जो इपन बेरो में भी बैठी हुई है। तो लीजिए यूसुफ की तरफ से सीला के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए एक सांस में बोली ला माशुक यूसुफ की तरफ से माशुका सीला जी के लिए। चलो हम सुनाते हैं आपको तलत अजीज यानी तलत महमूद साहब का साहबजादा। सुनिए इस तरह से

0: खूबसूरत है तेरी आंखें तलत अजीज़ आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत हमने पेश किया फरफान हिंदुस्तानी रेडियो, और गीत के मांगने वाला था मेरे सामने बैठा हुआ है जनाब यूसुफ़। जनाब यूसुफ़ ये गीत मांगे हैं, यानी माशूक ने ये गीत मांगे हैं अपने माशूका के लिए जो इबन बेरह में बैठी हुई है सीला जी के लिए। माशूक की तरफ से माशूका के लिए शुभकामना के साथ एक शुभरात्रि पेश करते हुए यूसुफ़ जी ने मांगे सीला के लिए। सीला जी, यूसुफ़ जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फोन हिंदुस्तानी राजीव खुदरावंत
1: कोई ना हो तो इस पर एक
0: मतमीला
1: क्या चुतने
0: दख मुफरा मिला
1: उखातत में तू
0: चले चले हुजत में तू
1: क्या ओखूत हो
0: एन हुजत में भैया मंसूर
1: ओखूत
0: बैठ का उबे का बैठ का गोरत हो ये महीने से इवान इर बखिंत दियोस एलफ
1: या
0: वीगा के धुन में बैठा लो भैया मंसूर
1: मुफरमीला
0: हम सपना दिख लिए कि तू बैल कर ले है और कहावत बोल लेगा अच्छा कोई बात नहीं आंदर की अर्दन
1: या आंदर के
0: तो ओ तम फोरोइट में दिखली सपन हुआ बस आंदर की अर है
1: या एक कामन लीचे अनु दोर खे तो फिल्म आरती आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया
0: आपने याद दिलाया ये थी मिला जी सुतरमेर के रहने वाली। तो गीत गज़ल के कार्यक्रम में भैया यूसुफ़ के गीत के बाद हम पेश कर रहे हैं, देखते हैं अल्फन अंदर इनके रहने वाले श्रीमान चांद रघुनाथ और उनकी धर्मपत्नी खिसला। भैया चांद रघुनाथ और खिसला की तरफ से शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ ये पुराने गीत हम आपको सुना रहे हैं। अल्फा रेन के रहने वाला श्रीमान चांद रघुनाथ और खिसला के लिए इस तरह से आ रहा है।

के जी और गीता रॉय जी, गीता दत्त का ये या गीता रॉय कहीं बात है, ये दोनों मिलके ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं और गीत गजल के रात में फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा और पेश करवाने वाले थे अल्फानंदरइन के रहने वाला श्रीमान चांद्र गुनाथ और उनकी धर्मपत्नी खिसला जी, इन दोनों को फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद पेश किया जा रहा है। जो जिस गीत के जिक्र है भैया चांद आपने की, वही गीत हम लोगों ने मिट के चलाए। शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए चलिए प्लेयर में हमें गीत रखे हैं, वो है एवरग्रीन किशोर कुमार। एवरग्रीन किशोर कुमार आपको क्या सुना रहा है?

मेरी भीगी भीगी से एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाइए ये शानदार गीत। हमने पेश की अनाउंसर चॉइस फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के गीत गजल के कार्यक्रम में। तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है बेया जी, इतरा के रहने वाले बेया जी। बेया इतरा के रहने वाली, शुभकामना के साथ बेया जी के लिए ये गीत हम पेश कर रहे हैं। और चलिए बेया जी आपको भी धन्यवाद पेश कर रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, इतरा के रहने वाली बेया जी के लिए।

बचपन के दिन भी क्या दिन थे, आशा जी आपको सुनाए और गीता मिलकर, गीता दत्त जी मिलकर फिल्म सुजाता में से निकली निघ्न फैफ्त का ये गीत एस दे बर्मन के साज पर हमने पेश किए। और ये गीत चला देखते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड के रहने वाली बिया जी के लिए। बिया जी, उम्मीद गीत आपको अवश्य अच्छा लगा होगा, शुभकामना के साथ हम सब मिलकर ये गीत आपको सुनाएं। बिया जी उत्तराखंड के रहने वाली हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले और दूसरा बिया जो देना के रहने वाली है, तो देना के रहने वाली बिया गजराज जी के लिए शुभकामना के साथ। बिया जी, आपके मांगे हुए गीत हमने प्लेयर में रखे हैं, सिर्फ दबाना जरूरी है। फिल्म सक दिल में से निकाल रहे हैं, नई खन तीन तुवें फैफ्थ 1952 का ये गीत देना के रहने वाली बिया गजराज जी के लिए।

फिल्म संग दिल में से निकाले हैं। ये शानदार गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो और ये गीत को चलवाने वाली थी देखते हैं दनहाक, दनहाक के रहने वाली बेया गुजरात जी के लिए शुभकामना के साथ बेया जी एक शुभ रात्रि पेश करते हुए आपको धन्यवाद देते हुए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और भैया यूसेफ और मेरे तरफ से बेया गुजरात जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी गीत बचा है और वो है देखते हैं सूतरमेर, स्वीट लेक सिटी, सूतरमेर के रहने वाली मीला जी, मीला जी के लिए शुभकामना के साथ ये शानदार गीत हम चला रहे हैं। बस फिल्म आरती में से निकाल कर निगदी त्वीन शस्त्र का ये गीत रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में रोशन के साज पर चलिए। सूतरमेर के रहने वाली मीला जी के लिए शुभकामना के साथ और साथ ही साथ भैया मंसूर के लिए चलिए। रात्रि का वक्त है, गीत गज़ल के कार्यक्रम है, इस तरह से आ रहा है।

रोशन के साज पर फिल्म आरती में से निकाले हैं ये शानदार गीत अवचला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के गीत गजल के कार्यक्रम में रफ़ी साहेब और लता जी मिलकर आपको सुनाए। और गीत के मांगने वाले थे वो है सूत्रमेर सूत्रमेर के रहने वाली मीला जी। मीला जी उम्मीद गीत आपको अवश्य पसंद आया होगा और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है आपको। एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है।

0: आपने यूं ही दिल लगी थी, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए, फिल्म मेहंदी लगी है मेरे हाथ से निकाले हैं, निकनी ट्वेंस का ये फिल्म है और हमने पेश की। चलो यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो मैंने पेश की। भैया यूसुफ सभी को धन्यवाद दीजिए।
1: या एक विलाल दी मेंसे बदांक दी फनाफ के बे गबेल्ड दैट इज मेफ्रो सीला वे इपनबर्ग द हेर मोहम्मद uit Den Haag, mevrouw Telma uit Den Haag.
0: Oh, de heer Jozef.
1: De heer Jozef uit Ippenburg. De heer Tjan Ragunat uit Alfa aan de Rijn. Mevrouw Bea uit
0: Utrecht.
1: Mevrouw Bea Gedraat uit Den Haag. En mevrouw Mila uit Zoetermeer. Dat waren de bellers voor vanavond. Hartelijk dank namens mij en de heer Ganga.
0: Bea Joost, dankjewel. Jij ook. Ik wens jou een fijne vakantie en tot de volgende week. Heel veel plezier. Bij Jozef, dank je wel.
1: Dank je wel.
0: तो यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो हम लोगों ने पेश की इस तरह से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा।

फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है, और विशेष करके जो जो लोगों ने तार किए, भैया यूसुफ आप सबको भी धन्यवाद दे चुके हैं। मैं भी अपने तरफ से नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि भैया यूसुफ ने नाम ले चुके हैं। जिन लोगों ने तार किए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने बाद में तार किए हैं लेकिन लाइन पर नहीं आ सकता था क्योंकि कार्यक्रम तो हम अब समाप्त कर रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है अगर जब पहले तार करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों पूछते हैं कि कार्यक्रम अब बढ़ाओगे कैसे, अगर जब बैलर्स रहेगा और लोग तार करेंगे तो बढ़ा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा प्लानर भैया जॉनी नंबर वन तो हमेशा कह रहा है गंगा चाहे 11 बजे तक चलो चाहे 12 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ही लोग के कार्यक्रम है, आप ही लोग उसे बढ़ाइए या घटाइए, घटाइए मत बढ़ाइए। बहरहाल आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है, आप सबको एक शुभ वीकेंड जो आगे बाकी बचा है मनाइए, और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से आप सबके बाकी का वीकेंड जो है एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है। मेरे बाद आप सुनोगे विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़, और न्यूज़ के बाद है हमारे सहयोगी मिलकर आपकी सेवा करेंगे। मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला दोंदरदाख, जी हाँ आने वाला दोंदरदाख दिन 12 और 3 के दरमियान, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुदा हाफिज़, टिल थर्सडे।

फाहम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

जांचम आप लोग को ले चलेंगे पुराने यादे की ओर और लीचस नाम लग दी फन यार ने इखन दिन फिरन से इफन रख इन सुरी नाम द हिट सॉन्ग स्वास आओ सुना जाए ये कौन सा गीत है जो आप लोग शायद बहुत दिन हो गया होगा नहीं सुने होंगे तो आप यहां से सुन सकते हैं दिस इज लीफो ही हो

हर एक काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537232047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 073.

फन होम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 3 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और कुछ कन यानी कि गीतों की बहार प्रोग्राम यहां से हम शुरुआत करते हैं कि भरोसा इतना करो कि याद ऐसा करो कि हाथ ना हो, भरोसा इतना करो कि शक ना हो, इंतजार इतना करो कि कोई वक्त ना हो, प्यार ऐसा करो कि नफरत ना हो, कुछ अलग ही करना है तो वफा करना मेरे दोस्त, मजबूरी के नाम लेकर बेवफा तो हर कोई करता है। तो हम चलते हैं, हमको तुम तो हो गया है क्या नैतिक लता जी और मोहम्मद रफी जी परमा श्री मोहम्मद रफी जी और यानी कि करोड़ों का दिल चुराने वाला, और वो कौन है? हमारे मुकेश जी है।

और हमसे तो हमारे लेस्टरार से प्यार हो गया है, और अगर आपको भी प्यार होगा तो हमें जरूर बताना कि आपको क्या और किससे प्यार हुआ है। अगर यह हो सके तो हमसे बता देना कि कहते हैं काश वो मुझे सीने से लगाकर मेरी सारी शिकायत दूर कर देते, काश वो मुझे सीने से लगाकर मेरी सारी शिकायतें दूर कर दे, मैं सिर्फ उनका हो जाऊं, मुझे वो इतना मजबूर कर दे कि हकीकत कहो उनकी ख्वाब लगता हूँ, हकीकत कहो उन्हें ख्वाब लगता हूँ, शिकवा करूँ तो उन्हें मजाक लगता है, शिकवा करूँ तो उन्हें मजाक लगता है, कितने जिद्दत से हम उन्हें याद करते हैं, एक वो जिन्हें ये सब कुछ मजाक लगते हैं। अगर जब शादी करना है तो जॉनी को याद कर लेना और मेहनी लगा कर बढ़ देना, कल हो ना हो और कल हो ना हो लेकिन जॉनी को याद कर लेना। फिल्म के नाम है कल हो न हो और मेहनी लगा करे मेरा तलाश।

और माही कल हो ना, कल हो ना हो हमारे प्यारी जनता की कहते ही दर्द क्या होता है, ये जो दर्द जो है ना वो क्या होता है बताएंगे किसी रोज अपनी अपनी दिल के गजल जॉनी सुनाएंगे किसी रोज, दर्द क्या होता है जॉनी बताएंगे किसी रोज अपनी दिल के गजल सुनाएंगी किसी रोज, उन दिनों उन्हें दो परिंदों के खुली फिजाओं में हमारे होंगे तो लौट कर आएंगे एक रोज जरूर मेरी कब्र की मचान पर आईना लगा देना, मेरी कब्र के मचान पे और मेरी कब्र के मचान पर आईना लगा देना, उसे देखने के आखिरी उम्मीद अभी तक बाकी है हमारे दोस्त, तो हम चलते हैं मिलने के, तुम कोशिश जरूर करना, मूवी के नाम है दिल का क्या कसूर और कुमार शानू आशा जी का ये गाया हुआ बेमिसाल लवली प्यार भरी गीत है।

और वादा तो और जरूर टूट जाता है कभी कभी वादा, जो लोग करते हैं वो टूट डालता है कि कहते हैं कोई गलती हो जाए तो दांत लिया करो, कोई गलती हो जाए तो डांट लिया करो, मगर यो रूठा ना करो हमसे, क्यों रूठा न करो हमसे, पागल सा पागल सा बच्चा हूँ मगर दिल का सच्चा हूँ, थोड़ा सा आवारा हूँ मगर तेरे ही दीवाना हूँ, कि कल हो न हो लेकिन जोनी का प्यार

और बड़ी गुमान प्रति वोमन कहो ना कल हो ना हो, शाहरुख का ये फिल्म है। और उसके बाद हम और आगे को अपना प्रोग्राम को चलाते हैं, बनाते हैं, सुनाते हैं। हमारे यारो नोखमाल जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, और रेडियो के जरिए आपको हम और कुछ मिली जुली गीत से सेवा करते हैं कि कहते हैं सुनो तुम अपना ख्याल रखा करो, सुनो तुम अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि मेरे पास तुम जैसा और कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम जैसा और कोई नहीं है। बस इतनी सी है चाहत तुमसे, बस इतनी सी है चाहत तुमसे, कभी दूर जाओ तुम जोनी के नजरे से, तेरे बिना हो जीना ऐसा दिन कभी न आए मेरे यारो, न जाने मेरे ये दिल कहाँ खो गया, तुझे पहली दफा देखा और तेरी हो गया, और तेरे दर से दिल आबाद रहा। फिल्म के नाम है दीवाना, दीवाना मूवी का नाम है, जिसमें शाहरुख खान ऋषि कपूर देविया भारती ने काम किया है, और एक दर्द भरी प्यार का सॉन्ग जो कुमार शानू आपको यहां से सुनाते हैं।

और छम्मा ही छम्मा है, और छम्मा के बाद कौनची होता है, हम वो आशिक है जो स्कूल छोड़ सकते हैं, लेकिन स्कूल में हुआ आशिक तो को नहीं, लेकिन स्कूल में हुआ आशिक को नहीं, तो मेरे जिंदगी के वो खुशी है जिसे मैंने अपनी दुआ में मांगा है। हमारे यारो, तो प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम है। हम यही कहते हैं हमारे यारों कि प्यार करना कोई छोटा बात नहीं है। कैसे छोड़ दूँ तुम्हें, प्यार करता हूँ तुमसे बस चाहत ही नहीं, और ज़रूरत हो तो मेरी ज़रूरत हो तो मेरी, प्यार मोहब्बत आशिक ये सब बस अल्फाज ही थी, लेकिन जब तू मिली मुझे जिंदगी में इन अल्फाजों की मजा ही बदल गई। तो और है दोस्तों प्यार भरी नगमों का बहार प्रोग्राम, यहाँ से हम चलाते हैं कि दुख की शाम हो या हो सुख की सवारे, और सब कुछ अच्छा लगता है जब साथ हो तेरा। तो ये बात सच है कि तुझे मेरे प्यार पर यकीन नहीं होता, लेकिन मेरे ये दिल है जो तेरे सिवा कहीं और नहीं होता है। हमारे यारो, तो ये गीत है, फिल्म के नाम है अप्रैल फूल, और हम चलते हैं एक मस्त भरी प्यार भरी मोहब्बत भरी गीत की ओर।

और आ गली लग जा, फिल्म के नाम है अप्रैल फूल का ये, और ये प्यार भरी गीत फिल्म के नाम है याहूदी सॉन्ग। ये मेरा दीवाना है, दिलीप कुमार मीना कुमारी इस फिल्म में काम किए, द सिंगर इज माइती मुकेश।

फन होम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया।

सुनने वालों, मैं आप सबको स्वप्न विज्ञान में से कुछ वृत्तांत सुना रही हूँ, यानी सपने, कि जो लोगों ने सपने देखे और उनको सपने आए उनका क्या महत्व था। पिता द्वारा पुत्रों का कत्ल। मैनचेस्टर शहर में एक महिला ने स्वप्न में देखा कि उसका पति उसके दो बच्चों को चेस्टर सिटी के भयानक खंडहर में जान से मार रहा है। वह चिल्लाकर नींद से जाग गई और पुलिस को साथ लेकर खंडहर ढूंढ निकाला। तलाश के बाद वहां से बच्चों की हड्डियां प्राप्त होने पर पति को जेल हो गई।

अब मैं एक और वृत्तांत आपके लिए रखती हूँ। मृतक पुत्र के जलने की चेतावनी। एक दिन रात्रि में सिंह मान फ्राइड के एक मित्र के बेटे का देहांत हो गया। सुबह अंतिम संस्कार हेतु रखे शव के चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी और पहरेदार को वहां छोड़कर पिता दूसरे कमरे में सोने के लिए चले गए, जिसने एक स्वप्न में देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र उसके पास खड़ा हुआ कह रहा है, क्या मुझे ऐसे ही जलने दोगे? पिता ने जागकर बाहर आकर देखा तो एक मोमबत्ती गिरने से शव का कान जलने लगा था। थोड़ा विलंब होता तो शव के साथ वह मकान भी जल जाता।

सुनने वालों, अब मैं एक और आपको सपने के बारे में बताती हूँ जो टीपू सुल्तान को आया। टीपू सुल्तान मुग़ल बादशाह हुए हैं, एक सुल्तान हुए हैं बहुत बड़े, टीपू सुल्तान तथा कांच की खान। टीपू सुल्तान ने रात में देखा कि एक बूढ़ा कांच का एक पत्थर लेकर उसके पास आया और बोला, सेलन के पास जो पहाड़ है वहाँ कांच की खान है, यह कांच मैं वहीं से लाया हूँ। इस तरह सुनते ही उसकी नींद खुल गई और वहाँ कांच की खान मिल गई।

सुनने वालों, एक डॉक्टर फिशर हुए हैं, वो कहते हैं कि एक स्थान पर प्रेत आत्मा का होना, जब एक स्त्री एक विशेष स्थान पर सोती थी तो उसे एहसास होता था कि उस पर कोई झपटा रहा है। तलाश करने पर पता चला कि यह स्त्री जिस स्थान पर सोती थी उस स्थान पर एक मनुष्य ने एक नवयुवना का गला घोंटकर खून किया था। स्थान विशेष में मानवीय विद्युत कंपन लंबे समय तक रहते हैं। शमशान की भयानकता एवं देव मंदिर की पवित्रता उसकी साक्षी होती है।

सुनने वालों, अब मैं आपको सुनाती हूँ भगवान महावीर पर 14 स्वप्नों का प्रभाव। भगवान महावीर बहुत बड़े भगवान हुए हैं, उनको 14 सपने आए। भगवान महावीर के जन्म के पहले रानी त्रिशाला ने 14 स्वप्न देखे थे। पहले में ऐरावत हाथी, दूसरे में सफ़ेद बैल, तीसरे में शेर, चौथे में लक्ष्मी जी, पांचवे में फूलों की माला, छठे में पूरा चांद, सातवें में सूर्य दर्शन, आठवें में पानी से भरा कलश, नौवें में नील सरोवर, दसवें में बहता सागर, ग्यारहवें में सिंहासन, बारहवें में देवव्रत, तेरहवें में रतन राशि, चौदहवें में धुआं मुक्त अग्नि। भगवान महावीर का जीवन इन 14 स्वप्नों के अनुकूल स्वप्न के हर प्रतीक के अनुसार इस प्रकार था। हाथी धैर्य मर्यादा, एक बड़प्पन का प्रतीक, महान धर्मात्मा, अनंत शक्तियों का स्वामी, मोक्ष प्राप्त करने वाला, अनासक्त ज्ञानी, सुख शांति का उपदेशक, महान गुणवान, शांत गंभीर, त्रिकलाज्ञ एवं देवता। महावीर जी, भगवान महावीर बहुत अच्छे गुणवानी, संतोषी और एक अच्छे भगवान हुए हैं।

ये है फाहून हिंदुस्तानी रेडियो, आप सब सुन रहे हैं फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। सुनने वालों, पिछले बार मैंने आप सबको फड़कने के बारे में बताया था कि अंग फड़कते हैं तो उन सब का क्या मतलब है, जैसे सिर का फड़कना, नेत्रों का फड़कना आदि आदि। तो आज हम चलिए कंधों का फड़कना कि जब कंधे फड़कते हैं तो उसमें से क्या क्या लाभ होता है या हानि होती है। कंधों का फड़कना, जब दायां कंधा फड़कता है तो बहुत शुभ, शीघ्र ही धन, वैभव और सम्मान और बिछड़े भाई से मिलन होता है। और जब बायां कंधा फड़कता है तो रक्त या वात संबंधी रोग होते हैं। पीठ का फड़कना, जब दाईं तरफ पीठ फड़कती है तो राज सम्मान मिलता है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। और जब बाईं तरफ पीठ फड़कती है तो अशुभ है, मुकदमे में लड़ाई में हार होती है। जब ऊपरी भाग का कंधा फड़कता है तो धन की प्राप्ति होती है। अब निचला कंधा फड़कता है तो बहुत से अनुयायी काम होते हैं।

घुटनों का फड़कना। सुनने वालों, हमारे घुटने जो हैं वो भी कभी भी फड़कने लग जाते हैं। जब दायां घुटना फड़कता है तो स्वर्ण प्राप्ति होती है, जब दाएं का निचला भाग फड़कता है तो शत्रु का सामना करना पड़ता है, और बाएं का निचला भाग फड़कता है तो कार्य पूर्ण होते हैं। सुनने वालों,

गर्दन का फड़कना। सुनने वालों, हमारी जो गर्दन है जिसे आप लोग नेक कहते हैं, वो भी कभी कभी फड़कती है। तो गर्दन के फड़कने से विदेश यात्रा उपरांत धन कमाकर कुशलतापूर्वक लौट आता है। कान का फड़कना। सुनने वालों, हम सब के कान भी कभी कभी फड़कते हैं, तो उसका भी कोई ना कोई मतलब होता है। जब हम लोगों का दायां कान फड़कता है तो हम लोगों को शुभ समाचार मिलते हैं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जब हम लोगों का बायां कान फड़कता है तो प्रियजन से मिलन मेल होता है। जब हमारे कान का पिछला भाग फड़कता है तो मित्र शत्रुवाद व्यवहार करते हैं।

बोहों का फड़कना, सुनने वाले बोहें कहते हैं वैन ब्रो को, वो भी हमारी कभी भी फड़कती हैं लेकिन हम लोग जान नहीं पाते कि वो कब फड़कती हैं। जब हम लोगों की दाई वैन ब्रो फड़कती है तो हमें इज्जत शोहरत मिलती है, जब बाई फड़कती है तो मित्र मिलन, अपने मित्रों से मिलाप होता है। गाल का फड़कना, जब गाल भी फड़कते हैं सुनने वालों, जब हमारा दायां गाल फड़कता है तो विलंब से स्वास्थ्य लाभ की स्वास्थ्य में लाभ हमें देरी से मिलता है, और जब बायां गाल फड़कता है तो काम में विघ्न बाधा तथा चिंताजनक समाचार, कन्या का जन्म या कन्या से शुभ समाचार मिलते हैं। अब जो दोनों समान फड़कते हैं तो अतुल धन की प्राप्ति होती है, तो हम लोगों को ढेर सारा धन प्राप्त होता है सुनने वालों।

ये है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सब सुन रहे हैं स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि नाक का फड़कना, सुनने वालों जब हम लोगों का नाक फड़कता है तो हमें क्या क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते कि हम लोगों का नाक कब फड़कता है। व्यवसाय की वृद्धि होती है, किसी से झगड़ा होता है, आने वाले संकट रोग की सूचना मिलती है, अनेक प्रकार से सुख मिलते हैं।

सुनने वालों, अपने शरीर के सभी अंग फड़कते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो कब फड़कते हैं। अब मैं आपको सुनाती हूँ मुंह का फड़कना। हम लोग के मुंह भी फड़कते हैं सुनने वालों। समाचार मिलता है, सुखों की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है। होंठ का फड़कना, जब हम लोगों के होंठ फड़कते हैं तब हमें सुख समाचार मिलता है, शत्रुओं से समझौता होता है, हितेशी का आगमन होता है कि जो हमारा कोई अपना जानने पहचानने वाला है वो हमारे घर पर आते हैं।

सुनने वालों, अब मैं आपको सुनाती हूँ कि भोजन करते समय कौन कौन से शगुन होते हैं और उसमें से कौन से अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं। यदि भोजन करते समय सामने ही बिल्ली आ जाए तो शुभ नहीं होता, कुत्ते का रोना सुनाई दे तो अधिक अशुभ होता है। जब हम भोजन कर रहे हैं और कुत्ता रोता है तो वो शुभ नहीं होता सुनने वालों, अशुभ होता है। ग्रह क्लेश उपस्थित हो जाए, अन्न संकट है, रुदान का शब्द सुनाई दे, जब कोई रोता है तो स्वास्थ्य की हानि होती है सुनने वालों। उबकाई आने लगे, जब हमें खाना खाते खाते हम उबासी लेते हैं तो हमें अधिक नहीं खाना चाहिए, तो उसका मतलब है पेट भर गया हमारा। कुत्ता भौंकने लगे, अनाज की चोरी होती है, जब कुत्ता भौंकने लग जाता है तो अनाज चोरी होने का डर रहता है। काली चिड़िया शरीर पर बैठ जाए, सामान्य जब काली चिड़िया कभी शरीर पर बैठ जाए तो वो ना हानि है ना लाभ है सुनने वालों। पकती रोटी अधिक जल जाए, अन्न नष्ट हो, जब हमारी रोटी बनाते बनाते ज़्यादा जल जाती है तो हमारे अन्न का नाश होता है सुनने वालों।

सुनने वालों, जब हम लोग घर पर भोजन करते हैं तो क्या हमें जूते पहनकर भोजन करना चाहिए कि जूता खोलकर भोजन करना चाहिए कि जूते उतार के भोजन करना चाहिए? अब मैं थोड़ा सा वो आपको बताती हूँ सुनने वालों। जब व्यक्ति भोजन करता है तो अपने शरीर में एक विशेष ऊष्मा को संचित करता है। भोजन करते समय जो कैलोरी या ऊष्मा मुंह के द्वारा शरीर में जाती है तो उसमें एक विशेष विद्युत का निर्माण होता है। यदि इस विद्युत का पृथ्वी से संबंध हो जाता है तो उसे पूरा परिपथ मिल जाता है और वह जो भी भोजन करता है उससे पूरी शक्ति प्राप्त होती है। जब हम नंगे पांव बैठते हैं तो हमारे पैर पृथ्वी से स्पर्श करते हैं, फलस्वरूप हमें आर्थिक मिलती रहती है। परंतु जूते पहने होने पर चमड़ा विद्युत अवरोधक बन जाता है और भोजन करते समय जो ऊर्जा या विद्युत पैदा होती है उसे अर्थ ना मिलने के कारण उसका प्रवाह विपरीत हो जाता है और जो भोजन किया जाता है वह विषैला बनकर शरीर को हानि पहुंचाता है। इस प्रकार जूते पहनकर भोजन करने वालों को गैस, कब्ज आदि रोगों की शिकायत बनी रहती है।

सुनने वालों, ये स्वप्न विज्ञान है। मैं आप सबको सुना रही हूँ सपनों की दुनिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम रात को सोने जाते हैं तो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं या सुनाई देती हैं उन सब का क्या मतलब है, कि वो शुभ हैं कि अशुभ हैं। सुनने वालों, जब हम रात्रि में सोने जाते हैं तो जब हम लोगों को शंख ध्वनि सुनाई दे, बैल की हुंकार सुनाई दे, वीणा का शब्द सुनाई दे, तो उन सब का शुभ मतलब है कि वो सब अच्छी चीज़ें हैं। जब हम अपने बेड पर बैठते हैं या चारपाई पर बैठते हैं, अगर चूहा दिखाई दे तो वो भी शुभ है। सुनने वालों, घर में प्रसन्नता का वातावरण हो तो वो भी लाभकारी है। जब सब घर के सदस्य हंसते हैं और हमें लाभ मिलता है, हम लोगों को अच्छी नींद आती है। सुनने वालों, अगर पत्नी की आँख में आंसू हो तो वो अपशकुन है। गीदड़ बोले या कुत्ता भौंके तो चोरी का भय रहता है। रात को जब हम सोते हैं सुनने वालों, अगर कुत्ता भौंके तो उससे हमें चोरी का भय रहता है। बिल्ली या कुत्ता लेटा हो तो अच्छा नहीं होता। घर की पालतू गाय सहसा रो पड़े तो वो अपशकुन होता है। अगर घर में हमारे गाय हैं तो अगर वो रो पड़े तो वो अपशकुन कहलाता है। पलंग पर छिपकली पाँव की तरफ भाग जाए तो वो शुभ है। कोई पान या सुपारी लाकर दे तो वो भी शुभ है। सुनने वालों, कोई सामने छींक दे, अच्छा शकुन नहीं है।

यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

0: వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సంప్రభ నిర్విధినం కురు మే దేవ సర్వకార్యషు సర్వదా రుబ్రరు మిల్నే కా మౌకా నహీ మిల్ పా రహా అథ శబ్దో సే అప్నో కో నమన్ కర్ లేతా హూ ప్రత్యేక వ్యక్తి కిసి నా కిసి రూప్ మే శ్రేష్ఠ హోతా హై ఇసిలియే ఆప్కీ శ్రేష్ఠా కో హృదయ సే నమస్కార్ కర్తా హూ ఫావన్ రేడియో కే సభీ సుననే వాలో కో హార్దిక్ సే అభినందన్ కర్తే హువే ఖాస్ కర్కే హమారే బహన్ ఔర్ లక్ష్మణ్ జీ జో ఆజ్ యహాన్ మాలా మాల్ కర్ దియే డిబ్యా కే డిబ్యా మిఠాయీ కాఫీ ఔర్ ఫ్రాయిద్ కే సాథ్ తో ఉన్కో హార్దిక్ సే అభినందన్ కర్తే హువే జైసే కీ ఇచ్ఛా హే ఔర్ యహాన్ పర్ हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है शेर शायरी के साथ शांता जी और फिर उसके बाद में हमारे मास्टर जी भी उपस्थित हो गए हैं पैनल के पीछे तो शांता जी कुछ कहते हैं फिर आगे हम ले जाते हैं कार्यक्रम मास्टर जी के साथ
1: धन्यवाद संजय जी तो मैं कहूँगी कि जिंदगी जख्मों से भरी है जिंदगी जख्मों से भरी है वक्त को मरहम बनाना सीख लो हारना तो है एक दिन मौत से हारना तो है एक दिन मौत से फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो लिफ लो सरस आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतनी बार मुझे मौका मिली है आपको नमस्कार कहने को तो स्वीकार कीजिए एक बार फिर शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम नमस्कार ज्योति का प्रकाश
2: बहुत ही सुंदर शब्दों में शांता जी ने अपना परिचय अपने मुखारविंद से प्रस्तुत किया है फावन हिंदुस्तान रेडियो के सभी सुनने वाले श्रोताओं को यानी राजेंद्र सिंह का हार्दिक नमस्कार इस बार भी हम अपना कार्यक्रम लेके ज्योति का प्रकाश में इस बार लेके आए हैं गंगा में विसर्जित अस्थियां कहां जाती हैं इस बारे में बातचीत रहेगा और साथ ही साथ बीच बीच में बहुत ही शांता जी के पिटारे से सुंदर से नगमे और उनके साथ सब लोग इंजॉय करेंगे बढ़ते हैं आगे क्यों ना संजय जी जो लोग उदास बैठे हैं उनके लिए कुछ किया जाए
0: जरूर राजेंद्र जी जो उदास अभी बैठे हुए हैं घर से तो उनके लिए जो गीत हम सब हर सप्ताह चलाते हैं और वो गीत को हम सब प्लेयर पे इस समय पे रख चुके हैं और शांता जी कुछ आज और कुछ लेकर आए मेरे ख्याल से क्योंकि अभी हम सबको और आज काफी बातें हैं राजेंद्र जी ये मैं कह सकता हूँ आपके साथ तो क्यों ना हम तेरा राम जी करे बेड़ा पार की ओर बढ़ते हैं फिर उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा
2: जरूर

0: तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तो मन तो उदासी नहीं करना चाहिए, क्या कहते हैं संजय जी आप? जब राम जी बेड़ा पार कर ही रहे तो मन क्यों उदासी हो?
1: मन उदास
0: न चाहे हो, जब राम जी बेड़ा पार करेंगे तो मन उदास हो ही नहीं सकता।
1: हो ही नहीं सकता, इसमें कुछ पूछने के बात है ही नहीं राजेंद्र जी।
2: सिर्फ विश्वास करने
1: बस के पास विश्वास करना है।
2: हाँ।
1: और जैसे कि शांता जी भी कह रहे हैं कि विश्वास करना है। और राजेंद्र जी, जैसे आज हम सब का कार्यक्रम विषय है कि बता दो आप विषय, क्योंकि हमारे खोजी सेना जो है ना, जैसे आपने कहे थे
0: विषय है कि गंगा में विसर्जित अस्थियां जाती कहां है,
1: कहां जाती है,
0: कहां जाती,
1: तो ये इसके बारे में। तो
2: गंगा में विसर्जन अस्थियां,
0: हाँ,
2: विसर्जित अस्थियां।
1: राजेंद्र जी
2: अस्थियां का
1: मतलब, हाँ,
2: मतलब
1: थोड़ा थोड़ा
2: बोले
1: से
2: तो
1: बता दो राजेंद्र,
0: मतलब हड्डी,
1: हड्डी,
0: हड्डी की जो अस्थि हमारे मनुष्य की जो हड्डी है,
2: हाँ,
0: जब ये पूरा वो कर लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा बच जाती है तो वो विसर्जित करते हैं गंगा में।
2: अच्छा,
0: वो जाती कहाँ आखिरी, जब देखो तो गंगा तो एकदम निर्मल ही निर्मल।
2: देखो राजेंद्र जी,
0: जी
2: मैं सच कहूँ अस्थियां मैं सोच रही थी ये बॉडी,
0: हाँ,
2: मर जाने के बाद ये बॉडी अस्थि कहते हैं, पर आप तो इतने अच्छे से समझा दिया कि अस्थियां हड्डियों के कहते हैं, कि जलाने के बाद जो बचा है हड्डियां,
1: हाँ,
2: वो हड्डियां गंगा में विसर्जन करे तो उसका क्या होता है,
0: जाति कहाँ है,
2: और जाति कहाँ है, हाँ,
1: क्योंकि विसर्जन तो होता है ना,
0: विसर्जन तो होता है।
2: अच्छा,
1: पर राजेंद्र जी गंगा की ओर बढ़ने से पहले हमें तो ये जानना चाहिए, क्योंकि अब तो ये मालूम हो गया है कि अस्थियां के मतलब क्या है, अस्थियां के मतलब क्या है इसका मालूम हम सबको हो गया है।
0: हाँ।
1: और ये भी है कि हम लोग हॉलैंड में भी अस्थियां को विसर्जन करते हैं ना,
0: हाँ,
1: यहाँ पर स्कैफनिंग पे, कहीं रोटरडाम में, और अब तो ऑफिशियल भी बन गया है एक रोटरडाम में।
2: अच्छा,
1: अस्थियां विसर्जन करने के लिए, क्योंकि ऐसे ऑफिशियल नहीं था। और यहाँ पर खास करके लोग कहते हैं ना राजेंद्र जी कि कभी कभी कहते हैं कि हाँ, एक गोरे लोग करते हैं
0: जी,
1: कि पेड़ के किनारे जा करके और अपने अस्थियों को विसर्जन करते, कहते कि हाँ वो डरते थे और वो पानी से डरते थे और उसका इच्छा था और पेड़ के पास जाकर को विसर्जन करने को। तो यहाँ हॉलैंड में भी ऐसा होता है।
2: अच्छा,
1: पर राजेंद्र जी इंडिया में कैसे होता है गंगा के सिवाय?
0: हाँ, जहाँ जहाँ जहाँ गंगा, गंगा एकदम पतित पावनी देवी है, और जहाँ जहाँ गंगा है वहाँ वहाँ तो लोग पूरी बॉडी को गंगा के किनारे लेके ही वो जलाते हैं, लेकिन उसके बाद वहीं से वहीं विसर्जित कर देते हैं। लेकिन और जगह जहाँ दूर करके वहाँ पे जला के बॉडी को, फिर जो फूल है, फूल बोलते हैं उनको, जो राख और हड्डी बचती है उसको फूल बोला जाता है, उसको एक पोटली में बांध के और एक घड़े में रख के गंगा में ले जाते हैं
2: जी,
0: वहाँ से ले जाते हैं गंगा में,
1: वहाँ से,
0: हाँ, तो विसर्जन करते हैं गंगा।
1: तो एक पोटली में होता है, पोटली कहते हैं एक एक कपड़े के बना हुआ, जैसे आपका
0: बना हुआ, अरे एक घड़ा होता है मिट्टी का, तो उस पोटली में घड़े के अंदर रख के पोटली से बांध के फिर उसको लेके जाते हैं विसर्जन करने के लिए।
1: ऐसा, शांता जी आपको पता था एक बात?
2: हाँ, हमने देखी फिल्मों में तो पता है, तो जैसे राजेंद्र जी बताते हैं तो मुझे को ये नज़र आता है। और यहाँ पे सब लोग धरते हैं उरन, उरन,
1: उरन कहते हैं उसे,
2: उरन नेदरलैंड्स में उरन कहते हैं।
1: तो राजेंद्र जी हमें तो अभी चलना है, आज जो हम सब का विषय है,
0: हाँ,
1: कि गंगा में विसर्जित करने वाले और अस्थिया को क्या होता है, अभी उस ओर हम सबको बढ़ना है। क्यों ना पिटारा खोलते हैं?
0: हाँ, पिटारा पे जरूर चलते
1: हैं। और पिटारा खोलते, पिटारा से निकालते, देखते हैं शांता जी क्या तैयारी करके लाया है।
0: हाँ शांता जी, बहुत ही सुंदर जो गीत है, भजन है, खिलौना माटी का है।
1: खिलौना माटी का, तो चला देते हैं
0: जरूर।

0: खिलौना माटी का। राजेंद्र जी, किसी ने कहा कि किसने मिट्टी से पूछा कि तुम इतने ठंडी क्यों रहते हो, ना?
1: मिट्टी से?
0: किसी ने मिट्टी से पूछा कि तू मिट्टी तो है पर इतने ठंडे क्यों रहते हो? तो मिट्टी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जिसका भूत भविष्य और वर्तमान सब मिट्टी से बना है, उसे घमंड और गर्मी किस बात की है, बात कि ना?
1: बहुत बढ़िया।
0: तो राजेंद्र जी, आज का विषय कि गंगा में विसर्जित किए गए अस्थियां क्या होता है, उसके कहां जाते हैं। अभी तो आप चलाने वाले हैं वो, पर शांता जी भी कुछ लिख रहा है मेरे ख्याल से। शांता जी, ये प्रश्न होता है कि हम सब हॉलैंड में अस्थिया को विसर्जन भी करते हैं, रोटरडम जाते हैं और या अलग अलग जगहों पे, और जाकर के अस्थिया विसर्जन किया जाता है ना। आपको पता है सूरीनाम में कब से और पहला जो दाह संस्कार हुआ था, इसके बारे में आपको कुछ पता है?
2: पहला दाह संस्कार? हाँ, ये तो बड़ा अच्छा सवाल की आपने, मुझे पता नहीं।
0: नहीं पता? राजेंद्र जी, आपको पता? नहीं पता।
2: मैं तो खुद जानती हूँ, मैं एक छोटी बच्ची थी तो मेरी माँ बाप मेरी को लेकर गई थी वैखनार शाही। तो पहला बार जो हमने गई थी और देखी थी।
0: तो शांता जी, वैखनार शाही शायद ये ख्याल भी होगा आपका कि कैसे वहाँ पहुँचे होंगे, रास्ता कैसा था?
2: कच्चा रास्ता था।
0: एकदम शांति पासी। राजेंद्र जी, आपको पता है कहाँ वैखनार शाही बनाया गया सूरीनाम में?
1: नहीं, मैंने तो नहीं देखा अभी तक।
0: अभी नहीं देखा
1: ना।
0: तो क्वाटा के दाम आप नहीं जानते भी
1: ना?
0: क्वाटा के दाम से जाना पड़ता है। क्वाटा के बारे में तो सुने आपने ना?
1: क्वाटा भी नहीं सुनेला।
0: लिफोर्नो खाली। तो लिफोर्नो के सिवा और शहरों है सूरीनाम में, और एक होता है क्वाटा। तो क्वाटा के डाम से निकलते हैं बस दरदर है, जैसे पास होते हैं तो आ जाते हैं
1: भिंडी डाम।
0: तो मिस्टेक हो गया शांता जी। थोड़ा लाइव प्रोग्रामों में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता है राजेंद्र जी। वैसे तो कहने के देखा जाए राजेंद्र जी की भारत में, और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में सब नाम बदल दिया, तो ये तो मैं तो बस छोटा काम किया कि बस ट्रांसलेट कर दिया, क्योंकि अभी हम आपसे कहे ओकरो दाम तो ओकरो दाम का समझ आपके आएगा या नहीं, ये तो नहीं आएगा ना?
1: ना।
0: तो भिंडी तो ये तो आ जाएगा। तो बस मैंने ट्रांसलेट हो गया। तो दोस्तों, जैसे कि ये पता है कि नेखन शस्तक में और वहाँ बनाया गया समुन्द्र के किनारे, हाँ, एरस्त दाह संस्कार श्रीमान उदय सिंह वर्मा जी का, और वहाँ पर किया गया। बहुत तकलीफ से वहाँ पहुँचे लोग, और बहुत तकलीफ से वहाँ पहुँच करके, और अभी ये बात को वहाँ का और ज्ञान नहीं था कि कैसे और दाह संस्कार को, और यानी कि सब व्यवस्था जैसे आजकल होता है, आजकल 8 और दाह संस्कार एक ही दिन में वैखनार शाही पे कर दिया जा सकता है ना, उतना कैपेसिटी हो गया, उतना वहाँ का वातावरण बना दिया गया है वहाँ पर, उतना ज़्यादा और गाड़ी को पार्किंग के सुविधा हो गया सब कुछ। पर वो समय के बात है और नेखन शस्तक के बात है, जो वहाँ पहला बार ये बनाया गया सूरीनाम देश में दाह संस्कार किया गया, तो बड़ा मुसीबत से वो कार्य को किए गए थे,
2: इसलिए वो आज तक प्रसिद्ध है।
0: जरूर प्रसिद्ध है। हाँ। पर आपका बटन ऑन नहीं है शांता जी, तो आपने कहा कि वो आज तक प्रसिद्ध है।
2: हाँ, वो आज तक ही प्रसिद्ध है।
0: जरूर। हाँ। और आज हमारे देखा जाए कि सूरीनाम में और कितना दाह संस्कार होते हैं, और जा करके वैखनार शाही से, और वहाँ पर पहुँचने के लिए भी जो रास्ता आदि बना दिया गया है, तो अब बहुत सुपास हो गया हम सब के लिए।
2: जी, वो तो बात है। इस
0: और पर आज का विषय जो है कि गंगा में जो किया जाता है अस्थिया को, उसका होता है क्या? तो राजेंद्र जी,
1: जी
0: क्यों ना पहले हम एक गीत चला लेते हैं।
1: जरूर,
0: क्योंकि पिटारा तो फुल है।
1: हाँ, जो गीत के बोल है वो यही है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई।

0: देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो इंसान तो बहुत बदल गया है, आप संजय जी कुछ बोलना चाहेंगे, इंसान कितना बदल गया?
1: मुझे तो नहीं लगता बदला।
0: तो आप बताओ कुछ।
1: शांता जी आपको लगता है इंसान बदल गया?
2: इंसान तो बदला नहीं, क्योंकि अभी सभी को दो आंखें, दो कान है, दो नाक है, एक नाक है, एक मुंह है।
1: राजेंद्र जी के जैसे शांता कहते हैं ये तो बॉडी का और पहचान दे रहा है। पर देखो राजेंद्र जी ऐसे है कि त्रेता में था मंत्रा, मंत्रा था कि ना,
0: मंत्रा था।
1: और अब है मंत्रा कि नहीं?
2: आज भी है,
0: आज भी है।
1: और द्वापर में था सुकनी,
0: सकुनी मामा,
2: सकुनी
1: आज भी है कि नहीं?
0: आज ज्यादा हो गया।
1: तो क्या बदला? कुछ नहीं बदला।
0: हाँ नहीं, उस समय इंसानियत ज्यादा थी, उस समय एक सकुनी थे आज बहुत हो गए।
1: हाँ
0: उस समय एक मंथरा थी आज बहुत मंथराएं हो गई है। तो ये सब बदला है।
1: तो त्रेता में वही बात था और द्वापर में वही बात था, और देखो कलयुग में भी यही बात है कि हम जन्म लेते हैं ना, तो हम हमारा जन्म होते हैं, जबकि हमारा जन्म होते हैं कोई डेढ़ ढाई किलो के होते हैं ना, जब बेबी होता है। और हमारे मरने के बाद हमारे और अस्थिया, हमारा दाह संस्कार होता है, बस अस्थिया और पोटली में डाल के, यहाँ पर शांता जी ने कहा किस में डाल के देते हैं?
2: नीदरलैंड में एरन कहते हैं।
1: तो एरन में डाल के देते तो वो भी तो ढाई डेढ़ किलो के हो जाता है,
0: बस उतना।
1: तो हमारा जीवन है क्या?
0: हाँ जीवन
2: मुट्ठी भर राख,
1: मुट्ठी भर राख, वो जितना लेकर आए थे वजन उतने लेकर जा रहे। तो हमारे जीवन में हम चतुराई, हम यादा प्रकार के और अपने चलाकी किए, रंग बिरंगी कार्यों को किए और अंत में बस उतने बन के चले जाते हैं
0: बस।
1: तो राजेंद्र जी इसमें आपका संदेश क्या है? और क्योंकि अभी तो हम लोग के छलांग लगाना और राजेंद्र जी गलती से बटन ऑफ नहीं करना, पीछे देखो उंगली उठा दिया मैडम
0: जी।
2: क्योंकि अभी ने आपने सवाल की ना, तो उस पर मुझे ये बात आ गई है, तो जरूर से मैं कहूँगी कि ये जिंदगी और शरीर, जिंदगी और शरीर है संजय जी, दबी है मौत के एहसान में। ये जिंदगी और शरीर दबी है मौत के एहसान में, तू भुला बैठा है जीवन अपनी पहचान में।
1: वाह देखिए राजेंद्र जी अभी अभी इन्होंने लिख दिया और सुना भी दिया।
0: हाँ बहुत बढ़िया।
1: तो राजेंद्र जी क्यों ना हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और आपका संदेश इसमें क्या है राजेंद्र जी? क्योंकि आप जब कहीं जाइए ना
0: जी,
1: और सूरीनाम में जैसे होता है, तो सूरीनाम में और पहला वाला बड़ा मुसीबत से हुआ था ना, जो हमने कहा कि नेखती नेखना शस्त्र में,
0: और कौन से उस स्थान में हुआ था?
1: 1959
0: पहली बार दाह संस्कार हुआ
1: सूरीनाम, और जाकर के समुन्द्र किनारे, और कौन दाम से वहां जाए थे शांता जी?
2: ओकरो डाम
1: हमने तो गलती कह दिया था, बिना
0: भिंडी नाम बोल दिया।
1: पर वहां जाकर के राजेंद्र जी, और बहुत हमारे धन्य है हमारे पुरखों के जिन्होंने ऐसा और जा करके हमारे लिए सूरीनाम में बनाए और ऐसा व्यवस्था किया। और आज अब जा करके जैसे कि शांता जी भी कह रहे थे कि वहाँ हमारे अब एक और बन गया है सारा मक्का में।
2: हाँ एक पे वो शबीर इशाक,
1: हाँ
2: शबीर इशाक के दाह संस्कार जो वहाँ पे बना गया है, बनाया गया है। और निकेरी में भी है ना सही दैक पे,
1: निकेरी पे भी है
2: सही दैक पे,
1: और वहाँ पे भी है। सही बात राजेंद्र जी, जब देखा जाए जब उस समय पे धीरे धीरे लोग जानने लगे कि कैसे उसे और बनाया जाए, कैसे व्यवस्था किया जाए कि एक शरीर जो जा करके जल सके पूरा तौर से ना, तो वहाँ पर निकाला गया और हमारे जो पुरखों ने ये सोचे कि प्रयोग किया जाए वालाबा हौत। शांता जी आपको पता है क्या है वालाबा हौत? वहाँ एक लकड़ी होते है राजेंद्र जी, उसे कहते हैं वालाबा हौत, और उसको बनाया जाता था जो गाय आदि पोसते थे ना, तो उसके गाड़ करके और उसे तार लगा दिया जाता था।
0: ओ, समझ गए।
2: प्रिकल द्रात।
1: हाँ, तो गाय बाहर नहीं जाते थे। तो
0: प्लांटेशन।
1: ये क्या कहते हैं उसे?
0: प्लांट। बाड़ा, बाड़ा।
1: हाँ, बाड़ा। मुझे नहीं पता बाड़ा क्या। घेर दिया गया, घेरने।
0: घेरा।
1: हाँ, तो अब ऐसा हुआ कि वो ये लकड़ी लोग प्रयोग करने लगे, और ये लकड़ी में काफी तेल होता है। ये लकड़ी एक ऐसा लकड़ी है जो कभी नहीं सड़ता। लकड़ी जो आज लगा दिया जाए और जमीन से और घेर दिया जाए, तो उसका तार दो बार बदल देना पड़ता है। तार कुछ 20 साल चलता है, बदला जाता है। पर ये लकड़ी जमीन धंस जाता है, ये लकड़ी को लोग खोद करके निकाल के और ऊपर करके और फिर दोबारा इसे अवतार लगाते हैं।
2: तो वो लकड़ी वैसे ही ताजा रहता है?
1: तो ताजा नहीं, उसमें
2: सड़ता नहीं,
1: सड़ता नहीं,
0: मजबूत रहता है,
1: बड़ा मजबूत होता है। इसी लकड़ी के बारे में राजेंद्र जी, मुझे आज मैं एक व्हाट्सएप पे देख रहा था, और उसे देख करके मुझे ये ख्याल आया कि हमारे सूरीनाम देश में जितना इलेक्ट्रिस्पाल है ना, वो भी वालाबा हाउत को बनाया जाता है, क्योंकि वो भी सड़ता नहीं।
2: अच्छा।
1: और वही हाल है कि ऐसा देखा जाए, सुबह मैंने देख रहा था एक व्हाट्सएप बरेख में, जिसमें भारत में जैसे यहाँ हॉलैंड में ना सभी और इलेक्ट्रिस्पाल मेटल के होते हैं
2: यहाँ पे। हाँ,
1: तो भारत में कहीं कहीं भी जो इलेक्ट्रिस्पाल होते हैं ना, तो उसे पकड़ लो तो बस, और इलेक्ट्रिक मार देते हैं लोग, कितने शॉक मार देते, कितने लोग हर साल में गुजर जाते हैं
2: भारत में।
1: भारत में।
2: हाँ, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक अगर आप देखोगे तो आप भी वो लफड़े में पड़ जाओगे।
1: तो अनखवास्कूट मेंस स्टार्ट हो, तो ये तो आप ध्यान देना, क्योंकि हमने आज सुबह अभी देखे हैं व्हाट्सएप बरेख में, और देखा कि कैसे एक नौजवान और वो पॉल जो मेटल का था पकड़ लिया और उन्हें झटका मार दिया, और बस क्या हुआ उसके बारे में आज का विषय है ही नहीं। हमारा विषय ये है कि गंगा में विसर्जित किए गए अस्थियाँ, उसके बारे में हम सब अभी सुनने वाले हैं दोस्तों। और ये बात है शांता जी कि जब ये बात सबको जान गए कि कैसे और जा कर के वहाँ हमारे सूरीनाम में और अस्थि तथा दाह संस्कार किया जाता था, और हॉलैंड में भी, हॉलैंड एक देश है जहाँ पर एक अच्छा तरीका से और यहाँ पर दाह संस्कार किया जाता ना, ये बात ना है कि सूरीनाम में ठीक नहीं है, सूरीनाम वाला अपना जगह उससे बढ़िया नहीं है, और यहाँ हॉलैंड में जैसे कि हम सब क्रेमाटोरियम होते हैं।
2: हाँ।
1: तो ऐसा एक क्रेमाटोरियम सूरीनाम में भेजा गया
2: जी,
1: यहाँ हॉलैंड का, और यहाँ से गए सूरीनाम में नेगेटिव 5 में, और नेगेटिव 5 में वहाँ पर ले जाकर के लगाया गया। तो उसके बारे में अभी कुछ और हम सुनाने वाले हैं, क्योंकि वो भी बड़ा गंभीर और समस्या हो गए थे राजेंद्र जी सूरीनाम में।
0: जरूर, कर्म सेवा सत्कार का है, बहुत ही सुंदर

0: बहुत ही सुंदर जो कर लो सेवा सत्कार, सेवा सत्कार चाहे सब लोग करना ही चाहिए। जब भी कोई मरता है मैं उनके साथ मरघट जाता और मरघट पर जाकर दो हैरानी की बातें मुझे हमेशा दिखाई पड़ती। उधर आदमी जल रहा है और लोग बैठे संसार की गपशप कर रहे हैं। इनको याद भी नहीं आ रहा कि यह मौत तुम्हारी भी मौत है। यह घड़ी तो ध्यान की थी, यह तो बस कर सोचने की थी, यही तो विचार की थी, तो विचार करते रहो।
1: राजेंद्र जी, इस बात पे तो मुझे दिल है कुछ और कहने का।
0: जरूर
1: शांता जी, ऐसा हुआ कि आप कभी गए और वैखनर से ही पे गए?
2: हाँ।
1: तो देखे कि वहां पर अब दाह संस्कार हो रहा है, वो आग ही लगते हैं।
2: हाँ?
1: आग लगते हैं तो मुझे आपको ये ख्याल नहीं आया कि एक ना एक दिन तो हमें भी उस प्रकार से जलना है और हम ये संसार के जीवन में जी रहे, संसार के मेला में जी रहे हैं, और क्यों हम इस संसार के मेला में जीते जीते औरों से जल रहे हैं? राजेंद्र जी
2: वो भी होता है।
1: हाँ। कभी ऐसा नहीं है हुआ?
3: हाँ।
1: क्योंकि कभी कोई ऐसे यहाँ भी हमारे कार्यक्रम में भी फोन करके कहते हैं कि भाई हमारे भाई बहन मुझसे जल रहे,
2: वो अज्ञानता है।
1: और ऐसा ऐसा होता है क्योंकि हमें ऐसा रहना है, हमें ऐसा रहना है कि ये ख्याल रखना, इसे हम अपने रोज अपने जीवन में ना लेकर चले कि हमें एक ना एक दिन मरना, जो समय आएगा तो वो तो आएगा ही आएगा। वो हमारे लिए तो ब्रह्मा ने और हमारे जीवन यानी कि हमारा जन्म भोग और मृत्यु का वो तो कर दिए। जन्म भोग हमारे खुलक और हमारी मृत्यु का और निर्णय करने वाले ब्रह्मा जी कहा थे ना, तो वो तो निर्णय है, पर हम क्यों औरों से जलते हैं? हम इस पे ध्यान दे। और हमारे राजेंद्र जी की ओर हम सब बढ़ेंगे फिर कार्यक्रम। राजेंद्र जी पर अभी तो हम सब छलांग नहीं लगा पाए।
0: हाँ,
1: असली विषय के ओर
0: जरूर लगाएंगे, असली विषय की ओर। अभी हम पहले
1: न्यूज और कमर्शियल के बाद और सभी सुनने वालों के साथ हम सब फिर मिल जाएंगे, क्योंकि अभी हम सब जो आज का विषय है कि गंगा में विसर्जित किए गए अस्थियों को होता है क्या। तो राजेंद्र जी पहले न्यूज और कमर्शियल की ओर।
0: जरूर फाहून हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को विषय की ओर बढ़ते हुए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो की बात चल रही थी गंगा में विसर्जित अस्थियां आखिर जाती कहाँ हैं। तो बढ़ते हैं इसी विषय की तरफ। पतित पावनी गंगा को देव नदी कहा जाता है।
1: पतित पावनी गंगा को क्या कहा जाता है राजेंद्र जी?
0: देव नदी।
1: देव नदी,
0: देव नदी कहा जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गंगा स्वर्ग से धरती पर आई है और मान्यता है कि गंगा ही हरि विष्णु के चरणों से निकली है और भगवान शिव की जटाओं में आकर बसी है। श्री हरि और भगवान शिव से घनिष्ठ संबंध होने पर गंगा को पतित पावनी कहा जाता है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है।
1: ऐसा? गंगा में स्नान करने से सभी मनुष्य का पापों नाश हो जाता है?
0: सभी पापों का नाश हो जाता है, इसलिए तो बहुत पूरी दुनिया के लोग जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए, और गंगा केवल भारत में ही है।
1: वहां स्नान करने से सब पापों का नष्ट हो जाएगा?
0: सब पापों का नष्ट हो जाता है, ऐसी मान्यता है।
1: मान्यता है,
0: मान्यता है,
1: क्योंकि लोग अपने मनमानी करते रहते हैं। लोग सोचते हैं कि शायद गंगा में स्नान करने से और जाकर के पाप करो और जाकर के धो लो, तो ये तो नहीं हो सकता ना।
0: ऐसा नहीं हो सकता।
1: आपको वहां तक पहुंचने, वहां पहुंचने से पहले आप खुद ही सुधर जाएंगे तभी वहां पहुंच पाएंगे। तो शांता जी आपने गंगा में स्नान किया?
2: हमने तो की कई बार,
1: और जा करके खूब स्नान किया,
2: और वहाँ पर भी खुश नसीबी की बात है गौमुख यहाँ से गंगा के उत्तरीन होता है, शुरुआत होता है
1: जी
2: हिमालय में, वहाँ पे ऊंचा पे, वहाँ पर जाकर भी हमने स्नान की, बड़ा सौभाग्य की बात है।
1: ये जरूर सौभाग्य की बात होता है राजेंद्र जी, क्योंकि ऐसा है कि लोग चाहे या ना चाहे,
0: मानो तो गंगा और न मानो तो बहता पानी।
1: राजेंद्र जी ये बात है कि अभी तो हम सब वो वृतांत सुनाने वाले थे सूरीनाम के।
0: हाँ।
1: और सूरीनाम में जो बनाया गया नई खदिफैन नई खदक में वो दाग संस्कार के जो सौफी रत्नों सरात में ना, आपको तो नहीं पता सफ़ीर नुसरत का है ना?
0: नहीं, अभी तो मुझे नहीं पता।
1: अच्छा, तो उसे मैं अपना भाषा में नहीं कर पाऊँगा।
0: हाँ,
1: तो बस यही कह देता हूँ कि वहाँ बनाया गया 1995 में, और वहाँ जब बना करके सब तैयार कर दिया गया ना, अलखावा एक बदराइफ होता है, वो इलेक्ट्रिकल सब चीज़ वहाँ जा करके सब तैयारी हो गया
0: जी।
1: तो अब वो अगोर रहे थे कि कौन पहला और अपना आपको वहाँ दाह संस्कार करवाएंगे। लोग डरते थे क्योंकि उस समय मैं सूरीनाम देश में थे, और लोग डरते थे कि हाँ कहीं अभी और पूरा शरीर ना जरे तो इलेक्ट्रिकल वाला वो सूरीनाम में एक ही बना है ना, सफ़ीर मुसरत। तो ऐसा हुआ वहाँ पर 95 में श्रीमान गरीब जी का और पहला दाह संस्कार किया गया, पर वो दाह संस्कार ऐसा हुआ कि गाड़ी लेकर गए वहाँ ना, तो गाड़ी को कह दिया गया था कि भाई ठहरो, अभी जाना नहीं यहाँ से, क्योंकि अगर ये स्टार्ट नहीं हुआ तो हो जाएगा मुसीबत। तो गाड़ी वाला और वहाँ अगोर रहे थे, और सब अब पंडित जी आकर के सब कार्य को कर चुके, तो अब वो और यानी कि जो लाइक केस में होते हैं ना वो अंदर धरते हैं, तो रखा गया और अब उसे ऑन करने का, जैसे यहाँ पर बटन दबाते हैं, तो वहाँ पर ऑन करने को हुआ तो वो दबाते हैं बटन पर ऑन नहीं हो रहा। तो अब हुआ मुसीबत, अब उन्हों कोशिश किए, पर ऑपरेटर थे और उन्हें टेक्निकल के बारे में थोड़ा कम जानकारी थे, तो फ़ोन किया गया और जो फेरमा जो मिस्त्री वाला अलखावा था, तो उन्हें आते आते 1.5 घंटा और लग गया, और जब वो आकर के पहुँचे तो वो देखे और दबाए हमें, क्योंकि मैं वहाँ था, तो दबा कर उन्होंने देखा, तो देखा कि आग तो लगा पर इग्निशन के लाइट जो होता है ना, तो लाइट वो बल्ब जल गया था। तो उसके कारण बड़ा आशंका था, और हम सब वहाँ थे और बड़ा ये था कि अब क्या होगा, पर फिर भी नेहदी फैन नहीं हद तक से वहाँ पर और दाह संस्कार होने लगा, और यानी कि जो जैसे हॉलैंड में होते हैं, और फिर देखा जाए राजेंद्र जी कि ये इस समय एक चीज और हो गया है जो भारत में मैं गत दिनों देखे हैं, भोपाल शहर में ऐसा चीज बना दिया गया है कि लकड़ियों से दाह संस्कार नहीं किया जाता, अब बना दिया गया है गोबर के लकड़ी बनाया जाता है
0: कंडा।
1: हाँ, अब वहां मशीन बना दिया गया है, मशीन बना दिया गया है कि गोबर के लकड़ियों से, गोबर से बनाया जाता है लकड़ी, और उससे और जाकर के दाह संस्कार किया जाता है। जितना लकड़ी पहले कहा जाता है कि पहले लगता था उसका आधा गोबर से, और उसमें उतना शक्ति होता है कि दाह संस्कार हो जाता है। तो राजेंद्र जी, क्यों ना हम एक गीत की ओर बढ़ते, तो फिर हम अपने और विषय के आगे बढ़ाएंगे।
0: जरूर।

0: बंदी किस पर करे गुमान, तू है दो दिन का मेहमान। बहुत ही सुंदर जो मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया है उसकी कोई सराहना नहीं है। बढ़ते हैं अपने विषय की ओर आगे।
1: कैसे बढ़ूँ?
0: जरूर बताइए।
1: बढ़ना है, विषय को बढ़ाना है।
0: हाँ।
1: पर ज़्यादा मिठाई को खा लिया।
0: हाँ।
1: और हमारे बड़े बहन मिठाई डिब्बा के डिब्बा ला करके रख दिया। वैसे तो हमें इतना खाना नहीं था। बस राजेंद्र जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं,
2: इसलिए तुम्हारा शब्द जो है वो मीठे मीठे निकलता है राजेंद्र का भी।
0: जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक कथा है। एक दिन देवी गंगा श्री हरि से मिलने बैकुंठ धाम गई और उन्हें जाकर बोली, प्रभु मेरे जल में स्नान करने से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं इतने पापों का बोझ कैसे उठाऊंगी? मेरे में जो पाप समाएंगे उन्हें कैसे समाप्त करूंगी? इस पर श्री हरि बोले, गंगा जब साधु संत वैष्णव आकर आप में स्नान करेंगे तो आपके सभी पाप धुल जाएंगे।
1: राजेंद्र जी, ये अब समस्या ऐसा हो गया है कि इसे थोड़ा हमारे हिंदुस्तानी सरनामी में कुछ इसे और बताइए, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बात यही हो जाता है ना।
0: हाँ, महत्वपूर्ण बात है कि जब सब लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं, वो सब लोग चाहते हैं कि हमारे पाप धुल जाए, हमारे पाप धुल जाए, तो गंगा चिंतित हो गई कि ये सब लोग पाप धुलने के लिए आते, तो मैं कैसे ये सब
1: कैसे मैं पवित्र हूँ,
0: मैं कैसे इनको पापों को सब में पाप मेरे पे धुलते, लेकिन मैं इनसे कैसे वो रूबरू होंगी? तो फिर वो भगवान विष्णु के पास बैकुंठ में गई और उन्होंने पूछी ला वहाँ कि ये लोग सब आते पाप धोने के लिए और मैं कैसे इनका बोझ उठाएं। तो फिर विष्णु भगवान बोले कि जब साधु संत स्नान करने के लिए आएंगे तो तब स्वयं वो सब पाप नष्ट हो जाएंगे।
1: ये है, यानी कि सबसे मूल्य बात ये है कि जब साधु संत वहाँ पर स्नान करने को जाए,
0: साधु संत और वैष्णव लोग जब वहाँ पे
1: वैष्णव लोग
0: जाए तो अपना आप सब पाप धुल जाएंगे।
1: ऐसा है,
0: ऐसा
1: तो ये बात है आज का विषय का, ये एक मूल्य बात हुए ना,
0: मूल्य बात है।
1: और राजेंद्र जी, और क्या है इस वृतांत में?
0: गंगा नदी इतनी पवित्र नदी है कि प्रत्येक हिंदू की अंतिम इच्छा होती है कि इसकी अस्थियों का विसर्जन गंगा में ही किया जाए, लेकिन यह अस्थियां जाती कहाँ हैं? ये चीज बताएंगे आपको इस सुंदर से गीत के बाद।
2: मृत्यु के बारे में ये कहना चाहती हूँ, अभी जैसे हमने सुना, अभी हमारी प्रोग्राम जैसे चलती है।
0: हाँ।
2: तो मृत्यु के लिए बहुत रास्ता है ना, मरने के लिए बहुत रास्ता है, पर जन्म लेने का सिर्फ एक, वो माँ।
0: हाँ।
1: तो ये तो बड़ा गंभीरता बात बता दिया शांता जी ने।
2: हाँ, मुझे ऐसे लगा कि बताने चाहिए, तो इस पे हम भी, क्योंकि हम कई तरीका से मर सकते हैं।
1: हाँ, सही बात।
2: और जन्म लेना सिर्फ एक ही है, माँ के गर्भ से।
1: राजेंद्र जी, शांता जी ने अपना वृतांत को सुना ही चुके हैं और गीत जो आप धरने वाले हैं, देखते हैं कि कौन सा गीत रखने वाले आप।
0: मत बुरे कर्म कर गोरख धंधा, इसी अवशेष में हम क्यों ना एक सुंदर सा जो बुरे कर्म कर बुरे बंधी, उस गीत की ओर बढ़ते हैं और सब लोगों को पसंद आएगा।